कबीर दास जी की यह अमृतवाणी कहती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, छोटा हो चाहे बड़ा, अमीर हो अथवा गरीब, जीव हो जंतु हो, सबका अंत यही है कि एक दिन सब छोड़ छाड़ कर इस मिट्टी में वापस

कबीर दास जी ने फरमाया कि मनुष्य को चाहिए कि वो सदा कर्मठ बना रहे और अपने कर्म करने को सदा तत्पर रहे। यदि हम अपने कर्मों को कल पे टालने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि वो काज कभी पूर्ण ही नहीं हो, क्योंकि कल तो किसी ने भी नहीं देखा। इसीलिए कोई भी काज कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए और अपने कर्म को आज ही पूर्ण कर लेना चाहिए।

निर्गुण भक्ति की ज्योत प्रज्वलित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन सब जगह जाने से ईश्वर या खुदा कभी नहीं मिलते। यदि अपने आराध्य को प्राप्त करना है तो उन्हें अपने स्वयं के भीतर खोजना चाहिए।

कबीर दास जी कहते हैं कि हर प्राणी को अपनी वाणी इतनी मधुर रखनी चाहिए कि स्वयं तो उसका मन शीतल हो ही, जो उसकी बात सुन रहा है उसका हृदय भी शीतल हो जाए।

कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत अधिक धन होने से अथवा बहुत अधिक सत्ता बल होने से कोई बड़ा नहीं होता, मनुष्य बड़ा केवल अपने सद्गुणों से होता है।

संत कबीर दास जी कहते हैं कि दूसरों में सदा बुराई ढूंढने व देखने वाला मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्रिय नहीं होता। अतः मानव जाति का यह परम कर्तव्य है कि वो प्रभु द्वारा निर्मित हर वस्तु का, चाहे वो छोटी हो अथवा बड़ी, उसका सम्मान करे। और फिर भी यदि उसका मन नहीं मानता तो सबसे पहले स्वयं के भीतर झांके और अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करें।

बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready. Dil ready. मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।

आई डोंट नो, और इसी में तो कमाल है दोस्तों। आपको हर सवाल का जवाब पता होना चाहिए, ये किसने बोला आपको, किसने कंडीशनिंग की है आपकी। अगर कोई आपसे पूछे ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, जिंदगी का अगला मोड़ क्या है, तुम एग्जैक्टली चाहती क्या हो, तो क्या आप तुरंत जवाब दे देते हैं, या कभी कभी दिल करता है ये कहने का कि यार पता नहीं, नहीं पता, और अभी जवाब नहीं मालूम, नहीं देना। अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं पता, नहीं पता मतलब नहीं पता, कुछ चीजों का जवाब आज नहीं है मेरे पास, और इसमें कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी ताकत हो सकती है आपकी। आज की बातें इधर की उधर की इसी खूबसूरत सोच पे है दोस्तों। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पे। एक ऐसी कवित्री की सोच जिन्होंने कहा आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता, इंसान को छोटा नहीं करता बल्कि दुनिया को बड़ा करता है। नाम है विस्लावा सिम्बोर्स्का, एक पोलिश कवित्री और 1996 की नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित ये लेखिका। अब जरा सोचिए, जब हम बच्चे थे तो हम कितने सवाल पूछते थे, आसमान नीला क्यों है, चांद हमारे साथ साथ क्यों चलता है, बादल हमारे साथ साथ क्यों चलते हैं, चिड़िया उड़ती कैसे है, समुंदर का पानी नमकीन क्यों हुआ, और बड़े होते होते हम सारे सवाल पूछना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि या तो हमें सब पता है, और या फिर अगर हम पूछ लेंगे तो हम कितने बेवकूफ लगेंगे। अरे चांद साथ साथ थोड़ी चल रहा है, नदी का पानी मीठा और सागर का पानी नमकीन क्यों है। खैर, ऑफिस में सब पता होना चाहिए, रिश्तों में सब आंसर्स होने चाहिए, करियर का पूरा रोड मैप तैयार होना चाहिए, और जिंदगी में तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि अगला स्टेप क्या है। अगर आपको नहीं पता तो ओ माय गॉड, आप बहुत आउटडेटेड हैं। यही सब डर है हमारे दोस्तों, रोज इनका सामना करते हैं, रोज इनके साथ जीते हैं। लेकिन विस्लावा की सोच कुछ और ही कहती थी। उनके लिए जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा तब तक जिंदा रहती है जब तक हम ये मान पाते हैं कि मुझे अब भी नहीं पता। और देखिए कितनी अजीब बात है, हम आई डोंट नो बोलने से डरते हैं, जैसे सामने वाला सोचेगा इसको कुछ आता ही नहीं। लेकिन सोच के देखिए, अगर आपको लगा कि आपको सब कुछ पता है तो क्या आप कभी भी कुछ नया सीखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम कहते हैं मुझे नहीं पता, तब उसके बाद एक और सवाल पैदा होता है, तो फिर पता कैसे चलेगा, और वहीं से आपकी खोज शुरू होती है, नोइंग द अननोन।

विस्लावा के नोबल स्पीच में एक बहुत ही सुंदर बात सामने आती है। वो कहती हैं कि इंस्पिरेशन सिर्फ कवियों या कलाकारों की जागीर नहीं है, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक माली, कोई भी इंसान को अपने काम को दिल और कल्पना के साथ करने का पूरा अधिकार है और उसके अंदर भी वो सारी इंस्पिरेशन हो सकती है जो किसी कवि या किसी आर्टिस्ट में हो। लेकिन उस इंस्पिरेशन को जिंदा रखने के लिए एक चीज जरूरी है, नए सवाल। जी हाँ, नए सवाल। एक मुश्किल हल हुई तो उसके बाद एक और नया सवाल, एक बात समझ आई तो उसके पीछे एक और जिज्ञासा। यानी जब सवाल खत्म तो खोज भी खत्म, और खोज खत्म तो सीखना भी खत्म। अब जरा अपनी जिंदगी देखिए। आपने कभी किसी बच्चे को देखा है, वो किसी एक ही चीज के बारे में 10 सवाल पूछेगा, ये क्या है, पर क्यों, पर ऐसा क्यों नहीं, पर ऐसा क्यों, अच्छा तो फिर ये कैसे। और हम क्या कहते हैं, बस बस बहुत सवाल पूछ रहा है तू। लेकिन शायद वही बच्चा हमसे ज्यादा जिंदा है, क्योंकि उसके अंदर अब भी मुझे नहीं पता इस चीज की जगह है। विस्लावा एक और बहुत गहरी बात करती हैं। दुनिया को हम अक्सर साधारण समझ लेते हैं, रोज सुबह सूरज निकलता है, रात होती है, हम सांस लेते हैं, पेड़ खड़े हैं, बादल आते हैं, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, और धीरे धीरे ये सब हमें नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन अगर हम सच में रुक कर देखें, क्या इस दुनिया में अब भी कुछ सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं? क्या इस दुनिया में कुछ भी वाकई सामान्य है, ऑर्डिनरी है? एक पत्ता, एक बारिश की बूंद, आसमान का ये चांद, एक इंसान का जन्म लेना, आपका मेरा यहां मिलना, रोज मिलना, क्या ये सब इतना आम है? सोच कर देखिए। विस्लावा के नजरिए में दुनिया का हर पल हैरान कर देने वाला है, दुनिया का हर पल हैरान कर देने वाला है। और मुझे लगता है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है कि हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं, वो इंसान ऐसा है, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी जिंदगी तो ऐसी ही चलेगी, कभी कुछ नहीं बदलेगा, ये काम मेरे बस का है ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, कुछ नया हो ही नहीं सकता, और बस जीवन में लग जाता है एक पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। लेकिन अगर हम एक छोटा सा सवाल लगा दें, क्या पता, मे बी, हो सकता है, तो पूरी कहानी बदल सकती है। आज एक छोटा सा काम कीजिए, जिस चीज का जवाब आपको नहीं पता ना, उसे लेकर घबराइए मत, उसे अंडर द रग मत कीजिए, उसका एक सवाल बनाइए और खुद से कहिए, मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगी। करियर में क्या होगा मुझे नहीं पता, रिश्ते कैसे बदलेंगे या कैसे ठीक होंगे आज मुझे नहीं पता, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं क्या कर सकती हूं, ये सवाल आप सब पूछ सकते हैं। और शायद यही मुझे नहीं पता कि असली खूबसूरती है, ये दरवाजे बंद नहीं करता, दरवाजे खोलता है, ये कहता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और अगली बार जब आपसे कोई भी पूछे तुम्हें नहीं पता, तो शर्माइएगा मत, मुस्कुराइए, विस्लावा को याद कीजिए और कहिए नहीं पता, और इसीलिए तो जानने में मजा आएगा। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे आज की ये कहानी, बातें इधर की उधर की, मैं ओनली ऑन एस एन रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
इस कहानी की ये छोटी सी बात याद रखिए, हर जवाब एक नया सवाल दे सकता है, और कभी कभी मुझे नहीं पता सबसे खूबसूरत शुरुआत है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: कन्या को सुकन्या कहो तो कोई एतराज नहीं, पर खबरदार वर को सुअर कहने की गलती मत कर देना।

0: अब बातें इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे।
1: नमस्कार दोस्तों, बस कुछ ही दिन यानी 6 सितंबर की ही बात है जब अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने रूथ सोशल नाम के एक सोशल मीडिया पे ये लिख दिया कि द मून इज आर्स। जी हाँ, उन्होंने ऐलान कर दिया, घोषणा की कि चांद अब उनका है। ये बात बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी x.com, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कई सारे इंटरनेट सोर्सेस पे आ गए, मीम्स भी बनने लग गए हैं उनके बारे में। मैंने भी इस बात को x.com यानी ट्विटर पे ही देखा है और जो बातें हैं यही तक सच है। आगे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन आगे की बातें जो मैं आपसे कहने वाला हूं और करने वाला हूं वो सब मेरे कल्पना से बनी या बुनी हुई बातें हैं, तो वास्तविकता से परे और दूर की बातें हैं, केवल काल्पनिक है। तो इन बातों को सुनिए, हंसी आए तो मुस्कुराइए और भूल जाइए, ऐसे डिस्क्लेमर डाल देना अकलमंदी है शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ एक छोटा सा सफर कीजिए मेरी कल्पना की दुनिया में। जैसे ही अमेरिका के नासा के साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि उनके राष्ट्रपति ने चांद पर हक जताया है, तो उन्होंने एक छोटी सी तहकीकात की कि चांद पे आखिर क्या चीज है जो राष्ट्रपति जो है प्रेरित हो गए हैं। जो नासा वालों ने देखा वो लोग तो डर गए, सीधा ट्रंप साहब के पास दौड़ते हुए और बोले, सर आज के तारीख में आप चांद पे कब्जा करने की सोच रहे हैं, लेकिन चांद पे तो पिछले 80-90 सालों से इंडिया के बॉलीवुड के लोगों ने कब्जा कर रखा है। 20-25-30 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा और ट्रंप साहब बोले, हैं ये कैसे हो गया, रॉकेट के जरिए चांद पे पहुंचने वाले पहले हम लोग थे, तो ये इंडिया के बॉलीवुड के लोग वहां कैसे पहुंच गए, जरा ठीक से तो समझाओ बे। तब नासा वालों ने कहा, सर हमारे साथ काम करने वाले इंडिया से आए हुए कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर हम साथ में लेके आए हैं, गूगल ट्रांसलेट और यूट्यूब के जरिए आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि हम ऐसा आपसे बोल क्यों रहे हैं। तो यूट्यूब पर दोस्तों एक रैंडम सा गाना चुना गया, बजाया गया, तो ट्रंप साहब तो भाई हैरान रह गए। गाना था श्री जमिनी गणेशन साहब और मीना कुमारी जी पे फिल्माया गया, ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे,

ब्रह्म साहब के कान खड़े हो गए, बोले अरे आगे चला आगे चला। मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ये सुनते ही वो बोले जमाइला अब बताता है मैं, फैसला चाहिए रे तेरे को। हे ईरान पे जो मिसाइल ताना है ना, एक को इस पे छोड़ दे, बड़ा आया चांद से फैसला मांगने वाला, मैं करता है इसका फैसला। अगला गाना चना। ट्रंप तो अपने कुर्सी से उठ के खड़े हो गए। हरिहरन साहब की मधुर आवाज में गाना आया,

गुस्से से लाल पीले हुए ट्रंप भाई ने कहा, चांद जब हमारा है तो उसे चादर से ओढ़ के जमीन पे बुला के ऐसे ही कैसे बात कर सकता है बे कमजर्फ नामुराद। लगा उस पे टैरिफ पर टैरिफ, टैरिफ पर टैरिफ, टैरिफ पर टैरिफ, और ऐसे ही लग गया 300% टैरिफ हरिहरन साहब पे। अगला गाना चला, सैफ अली खान यानी हमारे टाइगर पटौड़ी साहब के बेटे गाते हुए नजर आए, मेरा

जरा थम थम के गुजर रहे, रात जरा थम थम के गुजर। ब्रह्म साहब सोच में पड़ गए और धीरे धीरे बोले, ज्यादा तो मांग नहीं रहा है लड़का, केवल रीड ओनली मोड में रेफर कर रहा है चांद को। एक काम करो, एक वार्निंग देके छोड़ दो और ये इंश्योर करना कि कड़ी निंदा करोगे इसकी, आगे बढ़ो। तो अगला गाना बजा, अलका याग्निक जी जो है बहुत ही मधुरता से गा रही हैं, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में या चांद निकला। बस इतना सुना ट्रंप भाई साहब ने, आया गुस्सा उन्हें और बोले, ये क्या हो रहा है, इंडिया वाले चांद को जमीन पर गली में यहां वहां बुला रहे हैं। एक मिसाइल इसके तरफ भी तानोब है, चांद जब हमारा है तो इसके गैस इसके गली में कैसे नजर आएगा, मैं भी तो देखूं। अगला गाना आया, टाइगर पटौड़ी साहब की बेगम यानी शर्मिला जी गा रही हैं, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। ये गाना खत्म हुआ, ट्रंप भाई अपने बालों को नोचते हुए माथा पीटते हुए हैरानी से बोलने लग गए, भाई ये हो क्या रहा है, बाकी तो चांद को मांग रहे थे, ये देवी जी तो पूरा ब्रह्मांड अपने बेटे में लेके आई हैं। मात्र एक मिनट उन्होंने सोचा, फिर बोला, आइडिया, एक काम करो, सीआईए वालों को भेजो और इसके बेटे को उठवा लो, अगवा कर लो और मेरे पास ले आओ, ताकि मैं कल सुबह ये लिख सकूं कि नाउ द होल वर्ल्ड इज आर्स। तो ये थी बातें मेरी कल्पना की। तो दोस्तों, ये थी बातें इधर की और उधर की, मेरी यानी राघवेंद्रा की जुबानी। अच्छा लगा हो तो गुरु ठोको ताली, नहीं लगा हो तो बिड़ो पकड़ लो पतली गली। जोक्स अपार्ट, थैंक यू वेरी मच।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पहले दुकानों पर लिखा होता था ग्राहक भगवान है, बढ़कर देवताओं जैसी फीलिंग आती थी, और अब लिखा होता है आप कैमरे की निगाह में हैं, कसम से चोरों जैसी फीलिंग आती है।

आज के जमाने में किसी को कभी लेटर लिखा है आपने? नहीं नहीं प्लीज, व्हाट्सएप मैसेज नहीं। मैं पूछ रही हूँ वो असली वाला खत, जिसमें कागज होता था, कलम होती थी, इंतजार होता था और सब्र होता था, और सबसे खास हर लव्स में वक्त लगता था। आज हम मैसेज भेजते हैं और दो ब्लू टिक्स का इंतजार करते हैं, और कभी अगर किसी की ब्लू टिक सेटिंग ऑफ हो तो तौबा, हमें एंग्जाइटी अटैक आ जाता है। पहले लोग खत भेजते थे और कभी कभी पूरी जिंदगी बदल जाती थी। आज की बातें इधर की उधर की में हम बात करेंगे कुछ ऐसे खतों की जो सिर्फ कागज पर लिखे हुए अल्फाज नहीं थे, वो हिंदुस्तान के इतिहास के गवाह बन गए। सोचिए, एक छोटा सा कागज पर किसी की लिखावट और उस लिखावट में छुपी हुई एक आवाज जो शायद लिखने वाले के जाने के बहुत बाद तक दुनिया में पहुंचती रही। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जैसे बड़े नामों के लेटर्स के साथ साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखे गए पत्र भी संभाल कर रखे गए हैं। सोच कर देखिए, क्या अजीब बात है ना। हम अक्सर इतिहास को किताबों में ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी इतिहास किसी के हाथ की लिखी हुई लिखावट में मिलता है। पहला खत, रामानुजन का कमाल। अब चलिए एक ऐसे खत की तरफ हम चलते हैं जिसमें ना कोई राजनीति थी, ना कोई हुक्म था, सिर्फ गणित थी। 1913 में श्रीनिवास रामानुजन ने कैम्ब्रिज के मशहूर गणितज्ञ जी एच हार्डी को एक लेटर भेजा। रामानुजन उस वक्त मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क थे। उन्होंने अपने खत के साथ मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे रिजल्ट्स भेजे जिनमें से कई हार्डी को पहली नजर में बहुत अजीब और आवश्यकजनक लगे। लेकिन हार्डी ने जब उन्हें देखा तो उन्हें समझ आ गया, ये आदमी आम नहीं है। और वही खत रामानुजन के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अब जरा सोचिए, अगर रामानुजन ने वो खत नहीं लिखा होता तो शायद दुनिया को उनकी प्रतिभा पहचानने का कभी मौका ही नहीं मिलता। एक खत और एक प्रतिभा आ गई दुनिया के सामने। दूसरा खत, गांधी और नेहरू। अब बात करते हैं उन पत्रों की जहां दो बड़े नाम एक दूसरे से बात कर रहे थे, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। उनके बीच के लेटर्स सिर्फ व्यक्तिगत बातें नहीं थे, उनमें देश, समाज, भाषा, स्वराज और आजादी के रास्ते पर विचार मिलते थे। नेहरू की किताब अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ने गांधी, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और कई अन्य लोगों

अधिकार से अलग करने की कोशिश का विरोध किया। उनके लेटर्स में सिर्फ शिकायतें नहीं थी, अपने अधिकार के लिए एक मजबूत आवाज थी। नेशनल आर्काइव्स में उनके लॉर्ड डलहौजी को लिखे गए पत्र भी संरक्षित हैं। सोचिए, आज हम हिस्ट्री बुक्स में रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ते हैं, लेकिन उनके खत हमें उनकी आवाज के करीब ले जा सकते हैं। और यही तो खत की खूबसूरती है। किताब हमें बताती है कि क्या हुआ, लेकिन एक असली खत कभी कभी हमें महसूस करवाता है उस वक्त किसी के दिल में क्या चल रहा था। और फिर आते हैं वो खत जो सिर्फ कागज नहीं, रिश्तों की निशानी है। गांधी जी के लेटर्स में कभी राजनीति मिलती है, कभी दोस्ती, कभी एक क्वाइट सलाह, कभी प्यार। एक लेटर में गांधी जी अपने किसी करीबी को लिखते हैं कि शरीर का ख्याल रखो, और उनकी बातों में एक अपनेपन का एहसास मिलता है। यानी महात्मा गांधी भी सिर्फ ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, वो भी किसी को खत लिखते थे, किसी की फिक्र करते थे, किसी से असहमत होते थे। और इसीलिए लेटर्स हमें महान लोगों को इंसान की तरह देखना सिखाते हैं। अब एक सवाल आपसे, अगर आपको आज से 100 साल बाद के लोगों के लिए सिर्फ एक लेटर छोड़ना हो तो आप क्या लिखेंगे? अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में, या बस इतना, मैंने अपनी जिंदगी पूरी ईमानदारी से जीने की कोशिश की है। सोचिए, क्योंकि हम जो आज लिखते हैं ना, शायद कल किसी और के लिए हमारी आवाज बन जाए, हमारा परिचय बन जाए, हमारा आईना बन जाए। आज हमारे पास मैसेज है, वॉइस नोट है, वीडियो कॉल है, एक इमोजी है, और टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग, बस इतना भर करना भी एक कम्युनिकेशन का मोड बन चुका है। लेकिन एक बात तो है, लेटर में जो इंतजार था वो अब कहाँ है? खत लिखने वाले को पता नहीं होता था कि जवाब आएगा या नहीं, ये खत मिलेगा या नहीं, फिर भी वो लिखता था, दिल खोल के लिखता था और कागज पर अपनी बात रख देता था। शायद इसीलिए पुराने खतों में लफ्ज कम, एहसास ज्यादा मिलते हैं। जैसे आरती मैम कहती हैं, अल्फाज से एहसास तक, उसी तरह हमारे खत थे। अब वो खत तो नहीं है, बस एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स रह गए हैं। जबकि कम्युनिकेशन बहुत क्विक हो गया है तो हमारी जिंदगी थोड़ी और आसान होनी चाहिए थी, बट मुझे लगता है उसका बिल्कुल उलट हो गया। आपकी क्या सोच है इस पे, बताइएगा ज़रूर। आज जब घर जाए ना, और अगर आपका कोई पुराना पुराना खत पड़ा हो, उसे ड्रॉअर खोल के एक बार निकालिएगा मेरे कहने से, और सिर्फ एक पुराना कागज समझ कर मत फेंकिएगा। हो सकता है उसमें किसी अपने की आवाज हो सकता है किसी दिन वही छोटा सा कागज आपके परिवार का सबसे बड़ा खजाना बन जाए। सोच के देखिए। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। आज की इस कहानी की आखिरी बात, खत लिखने वाले चले जाते हैं, कागज पुराना हो जाता है, स्याही फीकी पड़ जाती है, लेकिन सच्चे लफ्ज कभी पुराने नहीं होते। वो गजल है ना, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, बस
वैसा ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: आज के जमाने में नए नए संस्कार हम लोगों को अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। क्या घर में कोई मेहमान आए, बच्चा लपक के जाए, कहिए अंकल नमस्ते, लाइए आपका मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दूं। यकीन मानिए, मेहमान गदगद हो जाएगा, दिल से दुआएं देगा। उसके बाद मिठाई बिस्कुट वगैरह पूछने के बजाय ये पूछें, आपको वाईफाई का पासवर्ड चाहिए? गारंटी है मेहमान खुशी के मारे पागल हो जाएगा।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ। और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदल जाता है, और तब आप जीतते ही जीतते हैं। दोस्तों,

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबरा

प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।

0: में छाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडवा भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो टांडवा भील 90.8 FM छाबुआ की आवाज।
2: हमारे जल संसाधन,
3: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
4: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
3: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर, जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
4: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
3: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
4: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है, और उसके नीचे भूमिगत जल।
3: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
4: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
3: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मानसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, दो कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
4: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
3: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
4: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है,

किसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है। या कई मौतें जल प्रदूषण से हो जाती हैं।

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: रेडियो 10 के अभी 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: वन में मेरा मन है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों को

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: सोनू दीदी
1: बोलो।
0: ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
0: अरे हाँ सुनो दीदी।
1: हाँ
0: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
1: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, शेर, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है, है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा।
2: समझे? हाँ, ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई, अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ, और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा, पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब कुछ। अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा, वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: और बेटे, अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
2: सुनो, वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा।
2: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें, जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी। वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
2: अरे बेटे, इसके बहुत से कारण हैं। जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
2: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काट कर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
2: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी। दादाजी, ये झूम खेती क्या है?
2: देखो बेटा, झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा, ऐसा करते हैं?
2: हाँ, इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
1: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
2: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
2: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
0: दादाजी,
2: बोलो बेटे।
0: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
2: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
2: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: रेंजर चाचा आप? आइए नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर, आओ आओ भाई, और सुनाओ कैसे हो? आओ आओ इधर आओ, इधर
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा, और सुनाओ बच्चों, दादाजी से क्या बातें हो रही थी?
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा, आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए।
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर,
3: बिल्कुल,
1: और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी, वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा।
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों?
0: हाँ जी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा।
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा?
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर, ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन से कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा।
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा।
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा।
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा।
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटा।
0: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं।
1: शाबाश।
0: हाँ, और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
0: चलो चलो। मैं भी पेड़ लगाऊंगा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैयां सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई।
3: पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं?
4: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
3: अच्छा,
4: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
3: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
2: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गोरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
4: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
5: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ाते थे तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
4: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे है। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
5: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
4: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है?
5: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
4: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
5: ठीक है,
4: चल चल चल, हट हट, उड़।
5: ये अब नहीं निकलेंगी।
4: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
2: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को चिठोली सूझती।
5: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
4: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
3: जी?
4: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
3: जी।
4: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
3: जी। अच्छा पिताजी।
2: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
5: अरे अरे,
4: अरे
5: क्या करते हो जी?
4: गलती से लग गया।
5: आराम से।
2: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
5: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
2: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
4: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
2: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
4: अरे
5: वो देखो,
4: हाँ
5: फिर से आ गई घर में।
2: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
6: देखता हूँ मैं तो।
5: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
4: बाहर मत निकालो, तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
5: सुनो तो। रुक जाओ।
2: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
4: गई।
2: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
6: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अभी चूर कर ये।
2: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
5: तुम्हारे बस की नहीं है।
6: फिर कोशिश करता।
2: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
4: अब देखो
2: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
6: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
5: हाँ।
6: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे
5: सारे।
2: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। चींची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे माँ बाप? माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
5: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
2: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
4: अरे
2: वो उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
4: सच में
7: छोटे और बड़े।
8: अरे छोटे बड़े।
9: जी दादाजी।
8: मैंने तुम्हारे लिए जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
9: जी दादाजी।
8: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो।
9: हम छुपाई खेलेंगे।
8: हाँ जाओ बेटा
9: खेलेंगे।
10: ओ भाई छोटे।
11: हाँ भाई बड़े।
10: आज हम पार्टी करते हैं।
11: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
10: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
11: हाँ भाई बड़े ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
10: सही कहा भाई तुमने। अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
11: हाँ भाई बड़े मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
10: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
11: हाँ हाँ हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
12: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो सोचो। नहीं समझ आया तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे। और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी। इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: को तो चॉकलेट और मिठाई मिली,
1: स्वादिष्ट
0: छोटे।
2: हाँ भाई बड़े,
0: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
2: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
3: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है, और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
4: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
5: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, रोजाना ब्रश किया करो।
4: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
5: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब किया था ब्रश?
4: नहीं मम्मी।
5: देखा, अब दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है दर्द। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
3: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
5: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
5: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
6: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
4: चीनू।
6: लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुंह खोलो मुंह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो, बस। अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे, क्यों है ना कमला जी?
5: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
6: देखो बेटा, कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है ना, कितने अच्छे लगते हैं दांत। तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए, और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या पता है? ऊपर नीचे, ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ, समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
5: जी बिल्कुल,
6: है ना?
4: डॉक्टर साहब क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
5: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
6: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश, समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर

0: रह जाएंगे।
1: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
0: हाँ चलो चलो दादाजी, दादाजी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है,
1: भूख लगी है।
2: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहाँ जगह बनाते हैं। चलो
0: चलो
1: चलो चलो चलो
3: इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडवा भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
3: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
4: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
3: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
4: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
3: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
4: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
3: जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
4: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
3: जी, डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
4: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
3: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे, वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
4: जी, ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
5: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
3: जी बताइए डॉक्टर।
4: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
4: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
3: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
4: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
3: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
4: जी,
3: और डॉक्टर साहब,
6: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
3: बताइए।
4: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
3: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
4: ये जब अभियान चलता है, हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
3: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए, कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
4: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता, इसके जो कीटाणु है वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
3: जी, रात की 10 बजे से 2 बजे तक दबा जाता
4: है, वह सबसे ज्यादा दिखते हैं।
3: जी,
6: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
3: जी बताइए।
4: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
3: जी
2: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडवा भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।
7: हूँ से आरजे राकेश,
8: अने हूँ से आरजे कमता डामोर,
7: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाल आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
2: नमस्कार, किसान भाइयों स्वागत है तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबवानी आवाज पर हूँ से आरजे राकेश अने रोज नी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से अने किसान भाइयों हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तीना समाधान नी वातियों लीने रोज इना समय पर हाजिर थातो रहूं से ने किसान भाइयों आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपू वातियों हमलवाना से कड़कनाथ मुर्गी पालन ने ये बड़ी वातियों आपून बता रहे कड़कनाथ मुर्गी पालन ना विशेषज्ञ अने एवा किसान भाई त्या कड़कनाथ मुर्गी पालन करीने असल अने मोटो मुनाफो कमाई रहा से हाथे हाथ बड़ी जानकारी आपून बता रहे मारो सहयोगी भाई कमता डामोर कृषि विज्ञान केंद्र झाबवाना सहयोग देखी तो किसान भाइयों आज नो कार्यक्रम घणो महत्वपूर्ण से आज ना समय हारू अने कृषि ना क्षेत्र मा स्टार्टअप हारू तो किसान भाइयों हा वार नी करी शुरुआत करी आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम नी। कड़कनाथ मुर्गे की एक नस्ल है जिसे काली मासी भी कहा जाता है। ये मुर्गे पूरी तरह काले होते हैं। कड़कनाथ मुर्गे का मांस भी काले रंग का ही होता है तथा इनके अंडे सुनहरे रंग के होते हैं। इनकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ जिले से हुई है। इन पक्षियों को ज्यादातर गरीबों आदिवासियों द्वारा पाला जाता है। इसके स्वास्थ्य से जुड़े फायदों को देखते हुए इसकी मार्केट में मांग अधिक रहती है और इसकी गुणवत्ता के कारण ये काफी महंगा भी बिकता है। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने भी इन मुर्गों को पाल रखा है और कड़कनाथ मुर्गे से वे कड़क कमाई करते हैं।
9: हमारे साथ में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एएस दिवाकर साहब जी और ये प्रबंधक है कड़कनाथ फार्म झाबुआ मध्य प्रदेश में। सर जी ये बताइए कि कड़कनाथ फार्म जैसे इसकी स्थापना कैसे हुई और इनको जीआई टैग मिला है वो किस तरह से इसका पालन किसान भाई करते हैं?
10: नमस्कार किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एएस दिवाकर यहाँ प्रबंधक हूँ कड़कनाथ फार्म झाबुआ में।
9: जी सर।
10: किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा शासकीय कड़कनाथ फार्म है ये 1985 में प्रारंभ किया गया था।
9: जी जी सर।
10: तो सबसे पहले किसी न किसी माध्यम से ये कड़कनाथ के बारे में जानकारी मिली कि ये कट्ठीवाड़ा के जंगलों में अलीराजपुर झाबुआ उस समय एक था वहाँ ये पाए जाते थे। हमारे गांव के जो ग्रामीण अंचल आदिवासी भाई बहन है इसका पालन करते थे और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते थे।
9: जी
10: तो
9: जी
10: इसकी क्या कुछ विशेषताएं थी जिन जब ये शासन तक पहुंची इसकी विशेष जानकारी तथा ये भी मालूम पड़ा कि ये विलुप्त होने वाला है।
9: जी जी।
10: तो शासन ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया क्यों ना इस प्रजाति का हम संरक्षण किया करके इसकी संख्या बढ़ाई जाए और भविष्य में कभी योजनाएं लागू करेंगे तो योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
9: जी सर ये बताइए कि वैसे तो यहाँ पर देसी मुर्गियाँ पाली जाती है लेकिन कड़कनाथ और देसी में क्या अंतर है?
10: अंतर तो बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं कि जो कड़कनाथ है कड़कनाथ मूलतः तीन प्रजाति में पाया जाता है। एक होता है गोल्डन ब्लैक स्ट्रेन, एक होता है पेल्सिन ब्लैक स्ट्रेन, एक होता है आपका जेट ब्लैक। अब ये जो कड़कनाथ है इसके अगर अपन लक्षण देखें शारीरिक विशेषताएं देखें तो सभी अंग इसके काले होते हैं।
9: जी।
10: और नॉर्मल जो देसी मुर्गा मुर्गी रहते हैं उसके कई प्रकार के कलर होते हैं, लाल पीला हरा व्हाइट ये सब देसी होते हैं।
9: जी जी।
10: अब इसमें अगर हम अंतर करके देखें किसान भाइयों कि आखिर कड़कनाथ ऊपर क्यों माना जाता है, कुछ तो इसके विशेष गुण हैं जिसके कारण लोग कड़कनाथ के प्रति आकर्षक होते हैं।
9: जी जी।
10: तो इसका कारण क्या है कि ये काले रंग का होता है।
9: जी जी।
10: अब काला रंग जो होता है काला रंग नॉर्मली ऐसे ही नहीं आता है।
9: जी जी।
10: ये सब कुदरती होता है।
9: जी सर।
10: तो कुदरती मतलब ये होता है सूर्य की किरणों से।
9: जी।
10: तो सूर्य की किरणें ही इसके काला रंग बनाने में मदद करती है।
9: जी जी।
10: और वो किरणें से क्या मिलता है इसकी चमड़ी में मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस होता है।
9: जी सर।
10: उस मेलानिन पिगमेंट के कारण ये काला होता है तथा साथ में इसके खाने पीने की जो प्रवृत्ति है।
9: जी सर।
10: अगर ये फार्मिंग करते हैं तो वो एक अलग तरीका होता है लेकिन अगर हम कुदरती और नेचुरल पद्धति में पालते हैं जंगल में खुले में, तो उसके खाना पीना, इसका जो खाने का तरीका है, ये कीड़े मकोड़े खाएगा, मिट्टी खाएगा, हरी पत्ती खाएगा, ऐसे ऐसे चीज खाएगा जिससे कि इसमें लोह तत्व ज्यादा बढ़े।
9: जी,
10: तो लोह तत्व बढ़ने के कारण तथा मेलानिन पिगमेंट बढ़ने के कारण ये काला रंग होता है।
9: जी,
10: अब अगर दोनों में अंतर करते हैं कि देसी तथा कड़कनाथ की विशेषताएं तथा इसमें अंतर क्या है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोटीन का प्रतिशत रहता है वो करीब 25-26% रहता है, जबकि दूसरे पक्षी जो देसी रहते हैं उनमें करीब 18-20% रहता है, तो हम अंतर देखते हैं 5-6% ज्यादा ही रहता है।
9: जी सर,
10: अब देखें कि कोलेस्ट्रॉल जो कि कोलेस्ट्रॉल और फैट ना के बराबर रहता है। आजकल का समय है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट फ्री चीजों का उपयोग खाने में करें, तो बीमार पेशेंटों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
9: जी जी,
10: और लेनोइक एसिड एक तत्व और होता है, वो भी इसमें मात्र 0.1% होता है। अगर ये चीजें दूसरे पक्षी में ज्यादा रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक रहती हैं, लेकिन कड़कनाथ एक जैविक औषधि है इसलिए ये जैविक औषधि के रूप में इसका उपयोग करते हैं।
9: जी सर, इसको अधिकतर इसको देखा गया कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जैसे विटामिन B1 रहता है, B2 रहता है, तो सर ये हमारे रोगों के उपचार के लिए भी काफी फायदेमंद होता है।
10: देखिए सर, कड़कनाथ एक तरह से, सबसे पहले तो बता दूं, मिनरल इसमें
9: जी जी
10: आयरन
9: जी,
10: लोहा
9: जी,
10: लोह तत्व से भरपूर है।
9: जी जी,
10: अब ऐसा कोई व्यक्ति या महिला या बच्चे जिनमें खून की कमी है,
9: जी जी,
10: अरक्तता बोलते हैं, खून की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, हिंदी में अरक्तता, खून की कमी से होने वाली बीमारी।
9: जी सर,
10: तो ऐसे समय में अगर हम कड़कनाथ के मास का सेवन हफ्ते में 2 बार भी करते हैं
9: जी,
10: तो निश्चित है उसकी खून की कमी की दूरी पूर्ति हो जाएगी।
9: जी सर,
10: दूसरी विटामिन्स की बात आती है, तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में, B1, B2, B12, फोलिक एसिड, ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि ये जैसे किसी में लकवा की बीमारी हो उससे वो भी इसको ठीक कर देगा, किसी में अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी ठीक कर देगा, किसी में माइग्रेन की है वो भी ठीक कर देगा, तथा साथ में अगर इसके अंडे का उपयोग करते हैं तो अगर किसी की किडनी खराब होती है तो वो हम अंडे खाने से किडनी भी ठीक हो जाती है, किसी में अगर शुगर पेशेंट है अंडे खाने से शुगर पेशेंट भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है।
9: जी सर, अधिकतर देखा गया है कि जो फार्मों में किसान भाइयों के यहाँ कड़कनाथ अगर किसान भाई पालना चाहे तो उसे किस तरह से, उसको पालने के लिए उसे कहाँ से इसके चूजे मिलेंगे?
10: किसान भाइयों, बहुत अच्छे प्रश्न किया। हमारा जो मध्य प्रदेश शासन है किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं समय समय पर लाता रहता है
9: जी।
10: और कड़कनाथ के लिए विशेष योजना कड़कनाथ के नाम से ही बनाई है, 80% अनुदान पर कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना
9: जी सर।
10: ये है योजना करीब 4400 रुपए की है
9: जी सर,
10: इसमें हम किसान भाइयों से 1100 रुपए लेते हैं
9: जी सर,
10: और बाकी का जो 75% जो रहता है राशि 3300 वो सब्सिडी रहती है
9: जी सर,
10: अनुदान रहता है। हम इसके बदले किसान भाइयों को 40 बच्चे 28 दिवसीय उपलब्ध कराते हैं
9: जी,
10: साथ में 1390 रुपए का उनको खिलाने के लिए दाना उपलब्ध कराते हैं, साथ में 200 रुपए के आसपास की उनको औषधि उपलब्ध कराते हैं
9: जी,
10: और ये सब योजना के अंतर्गत होता है।

0: इसके अलावा अगर योजना से लोगों की, हमारे किसान भाइयों की पूर्ति नहीं होती है, अगर वो बड़े मात्रा में पालना चाहते हैं तो बड़ा मात्रा में अगर पालना है तो प्राइवेट भी आकर चूजे मुर्गी फार्म से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी वर्तमान में जो तथा साथ में अगर कोई अच्छी संख्या में कड़कनाथ का बिजनेस करना चाहता है और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे कड़कनाथ फार्म में आके वो प्रशिक्षण ले सकते हैं।
1: जी जी,
0: प्रशिक्षण ले उपरांत ही अगर वो कड़कनाथ चीजों की देखभाल करेंगे, बड़े करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा।
1: जी जी सर। सर जी ये बताइए कि जैसे अपन जो यहाँ से जो किसान भाई चूजे ले जाता है और वो पालता है तो उसमें सर वैक्सीन या टीकाकरण का किस तरह से क्या होता है?
0: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने किसान भाइयों, आज का समय बड़ा ही बलवान है, बड़ा ही ऐसा हो गया है कि बगैर टीकाकरण के आप किसी चीज का पालन कर नहीं सकते। तो टीकाकरण तो बहुत जरूरी है। टीकाकरण होने से जो विषाणु जनक, बैक्टीरिया जनक जो जितनी बीमारी है उसके खिलाफ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है।
1: जी सर।
0: तो हम कोशिश करें हमारे फार्म पे हम जैसे ही बच्चा मशीन से निकलता है उसको पहले दिन ही टीका लगा दिया जाता है।
1: जी जी सर।
0: उसके उपरांत फिर छठवें सातवें दिन रानीखेत का टीका लगाया जाता है।
1: जी सर।
0: उसके पश्चात करीब जब वो 12 से 14 दिन का होता है तो गुम्बारो बीमारी का टीका लगाया जाता है।
1: जी जी।
0: उसके पश्चात जब वो 21 दिन का होता है तो उसे रानीखेत लासोटा का टीका लगाया जाता है।
1: जी जी।
0: जब वो 28 दिन का होता है तो गुम्बारो का बूस्टर डोज कराया जाता है।
1: जी।
0: और अगर हम जैसे पालन करना चाहते हैं तो टीकाकरण के बगैर मुर्गी पालन संभव नहीं है।
1: जी सर।
0: तो ये टीके तो यह होते हैं, इसके अलावा हम 35 से 40 दिन की उम्र में चिकन पॉक्स, फाउल पॉक्स बीमारी आती है जो हमारे ट्राइबल एरिया में काफी देखने को मिलती है।
1: जी जी।
0: जिसमें पक्षियों की शक्ल सूरत खराब हो जाती है, दाने दाने निकल आते हैं, उस बीमारी का भी टीका लगवाना चाहिए।
1: जी जी।
0: इसके पश्चात फिर 2 महीने की उम्र में रानीखेत का भी, आरसीबी का भी टीका लगता है।
1: जी
0: तो टीकाकरण तो बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: टीकाकरण कैसे किया जाता है, कब कब किया जाता है, इसका हम ट्रेनिंग के जरिए किसान भाइयों को जानकारी दे सकते
1: हैं। सर जी बताइए कि हमारे किसान भाई अगर यहाँ से चूजे ले जाएंगे और जिनको पालेंगे तो उनको पोल्ट्री फार्म में किस प्रकार की देखरेख करना पड़ती है, जिनके लिए ज्यादातर सावधानियां रखना है?
0: देखिए किसान भाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कोई भी प्लानिंग करने से पहले, फार्मिंग करने से पहले उसकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण जरूर ले लें।
1: जी जी सर।
0: अगर हम प्रशिक्षण ले लेते हैं तो हमको कुछ उसकी जानकारी उसकी मैनेजमेंट के संबंध में प्राप्त हो जाती है।
1: जी जी।
0: तो फिर हमको क्या परेशानी नहीं आती, हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा।
1: जी सर।
0: तो सबसे पहले कोशिश करें शासन द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध बड़े आसान तरीके से कराया जाता है।
1: जी जी।
0: और उसके पश्चात हम अगर ट्रेनिंग अच्छी प्राप्त कर लेते हैं,
1: जी जी,
0: उसके बाद हम प्लानिंग करें कि हमको कड़कनाथ का पालन किस प्रकार का करना है, छोटी संख्या में करना है कि बड़ी संख्या में करना है, हमारी क्षमता कैसी है, उस क्षमता के ऊपर हम किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट पैसा लगा सकते हैं, कैसे उसमें, क्योंकि जब उसका पालन करेंगे तो निश्चित उसमें पैसा बहुत खर्च होता है।
1: जी जी।
0: और हम उस पैसे को 3 गुना 4 गुना कैसे करें?
1: जी सर।
0: तो एक अच्छे प्रशिक्षण उपरांत ही हम उनका अच्छा पालन कर सकते हैं और अच्छा हम पैसा कमा सकते हैं।
1: हाँ सर, देखा गया है कि अधिकतर कड़कनाथ जैसे छोटे चूजे होते हैं जिसमें प्रकाश की जरूरत होती है और इसको पानी भी समय समय पर देना पड़ता है और बड़े चूजों को भी अलग रखना पड़ता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है सर?
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया किसान भाइयों के लिए। देखिए साहब, जब भी किसी चूजे का जन्म होता है, अंडे से बाहर निकलता है, चूजा करीब 21 दिन में बाहर निकलता है।
1: जी जी।
0: तो बच्चों के विकास के लिए, चूजों के विकास के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है।
1: जी जी सर।
0: और वो गर्मी हम कैसे देते हैं? सबसे पहले उन चूजों को हम एक कमरे में रखते हैं, उस कमरे को बोलते हैं ब्रूडर हाउस।
1: जी सर।
0: मुर्गी पालन में हर उम्र के लिए अलग अलग कमरे होते हैं।
1: जी जी।
0: और सबसे पहले बच्चों का कमरा जो उसको ब्रूडर हाउस बोलते हैं।
1: जी।
0: जब वो 2 महीने के हो जाते हैं दूसरा उसको शिफ्ट कर देते हैं उसको ग्रोवर हाउस बोलते हैं।
1: जी।
0: हिंदी में हम उसको पठोर बोलते हैं।
1: जी।
0: जब वो अंडे देने लगे हो जाती हैं तो हम उनको लेयर हाउस में शिफ्ट कर देते हैं, तो लेयर हाउस कहलाता है।
1: जी जी।
0: तो ब्रूडर हाउस जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें हम चूजों का पालन पोषण करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें क्या है निर्भर ये करता है कि वो पैदावारी किस समय हो रही है चूजों की, क्या गर्मी के मौसम में हो रही है, क्या बारिश के मौसम में हो रही है, क्या सर्दी के मौसम में हो रही है।
1: जी।
0: तीनों मौसम में चूजों की देखभाल करने के तरीके अलग अलग है।
1: जी जी।
0: अगर गर्मी का मौसम है जैसे मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, यहाँ देखेंगे कि पहले से ही गर्मी बहुत होती है।
1: जी जी।
0: नॉर्मली चूजे के विकास के लिए 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है
1: तापमान,
0: तो इसमें तो काफी पर्याप्त मात्रा में बाहर का टेम्परेचर रहता है, करीब 42-45 तक पहुंच जाता है, और कमरे का टेम्परेचर आराम से 37-38 के आसपास रहता है। तो मेरे ख्याल से ये गर्मी के मौसम में अगर हम चूजा पालते हैं तो ब्रूडिंग प्रकृति के द्वारा ही हो जाती है, प्रकृति की लाइट गर्मी से ही हो जाती है।
1: जी जी।
0: उसमें देखभाल कम करनी पड़ती है।
1: जी जी।
0: लेकिन अगर यही हम बारिश के मौसम में करते हैं तो उसमें देखते हैं कि बरसात हो रही है तो निश्चित है टेम्परेचर गिरेगा।
1: जी जी।
0: तो सर्दी पैदा होगी और मालूम पड़े कि 8 घंटे की सर्दी हो गई, अगले 8 घंटे में थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, तो ये वेरिएशन चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा देखभाल ज्यादा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या है उसमें लाइट जो रहती है बिजली,
1: जी
0: तो 200 वाट का बल्ब यूज करते हैं। अगर हम जैसे 100 बच्चे पालते हैं
1: जी,
0: तो कम से कम 200 वाट के 2 बल्ब उसके ऊपर लगाए जाते हैं, जिससे क्या है उजाला तो मिलता ही है उसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको एक गर्मी भी पैदा करते हैं। और अगर यही हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अगर चूजों का पालन करते हैं
1: जी,
0: तो ऐसी स्थिति में कभी कभार बहुत ज्यादा सर्दी गिरती है, शीत लहर चलती है, तो उस समय चूजों का नुकसान होने की संभावना रहती है।
1: जी जी।
0: तो लेकिन हमको क्या गर्मी 35-37 डिग्री मेंटेन करना है, तो उसमें आजकल हीटर आते हैं और हम हीटर लगा देते हैं।
1: जी जी।
0: तो आजकल हीटर क्या बड़ा ही
1: एक संतुलित मात्रा में जो उसको
0: अच्छे तकनीकी के बनाए जा रहे हैं, जो ऑटोमेटिक रहते हैं
1: जी,
0: वो 37 डिग्री तक जाएंगे कट हो जाएंगे।
1: जी जी।
0: और नीचे जब वो वापस आएगा 32-33 फिर चालू हो
1: जाएगा, फिर चालू ऑटोमेटिक
0: ऑटोमेटिक कट ऑफ होते हैं, तो कमरे का तापमान मेंटेन रखते हैं।
1: जी,
0: इसके कारण क्या है चूजों में कोई समस्या नहीं होती और उनका गर्मी से विकास होता रहता है।
1: जी जी।
0: तो सर्दियों में थोड़ा अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है।
1: जी जी
0: जी
1: जी। सर हमारे किसान भाई क्या है कि कम मात्रा में अगर पालते हैं तो किसान भाइयों को अधिकतर देखा गया है कि जो पोल्ट्री हाउस में प्रवेश के लिए किसी एक व्यक्ति को जाना पड़ता है, तो इसका क्या कारण है?
0: हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये फर्स्ट स्टेप है पोल्ट्री फार्म को अच्छा चलाने के लिए। अगर हमारी ये शुरुआत अच्छी रहती है, हमारा ये देखभाल अच्छा रहता है, तो इसमें शुरुआत का मतलब ये हो गया बायो सिक्योरिटी।
1: जी जी।
0: तो बायो सिक्योरिटी जो मेजर रहते हैं
1: जी,
0: बगैर उसके मुर्गी फार्म चलाना बड़ा ही मुश्किल है, अन्यथा कोई ना कोई बीमारी बाहर से आएगी।
1: जी जी।
0: और वो हमको परेशान करेगी और नुकसान करेगी।
1: जी जी।
0: तो बायो सिक्योरिटी मेजर अपनाना बहुत जरूरी है। अगर हम छोटा पोल्ट्री फार्म हो या बड़ा पोल्ट्री फार्म हो, किसी भी व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें।
1: जी जी।
0: उसको बाहर ही रखें।
1: हाँ।
0: मुर्गी के कमरे में अंदर तो कभी भी प्रवेश ना करने दें।
1: जी जी।
0: हम अगर वो आप भी हाँ। खुद पालन करते हैं।
1: जी जी।
0: आपके भी जूते चप्पल अलग होना चाहिए।
1: जी जी।
0: आप बाहर से आते हैं तो बाहर के जूते चप्पल बाहर रखें।
1: जी।
0: मुर्गी पालन करने वाले कमरे के जूते चप्पल के कमरे में ही रखें।
1: जी जी।
0: जब उसको अंदर काम करेंगे तो आप उसमें उसका उपयोग कर रहे।
1: जी जी।
0: और कपड़े भी हम समय समय पर बदलते रहें।
1: जी जी।
0: हम हर 2 दिन में नए कपड़े मतलब धो लें, फिर उनका यूज करें।
1: और बर्तन भी सर पानी भी बदलते।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है।
1: जी।
0: हम डेली प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में उनके बर्तन बाहर निकालें, उनको सर्फ साबुन से बर्तन धोएं अच्छी तरह से।
1: जी जी।
0: इससे क्या रहता है उसमें कोई भी गंदगी कीटाणु सब खत्म हो जाता
1: है।
0: डेली उसको स्वच्छ पानी, स्वच्छ दाना और स्वच्छ बर्तन, अगर हम इसका मापदंड अपनाएंगे तो हमको एक अच्छा मुर्गा मुर्गी तैयार हो
1: जाए। तो सर जी ये बताइए कि हमारे किसान भाई अगर ज्यादा मात्रा में अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो शासन उन्हें कितना अनुदान दे सकती है?
0: हमारी मध्य प्रदेश शासन की एक 40-25 की स्कीम है।
1: जी जी।
0: तो वो तो बहुत छोटी यूनिट है।
1: हाँ सर।
0: लेकिन हम अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं
1: जी जी,
0: तो हम स्वयं का पैसा खर्च करके 200-500 हजार बच्चे हम प्राइवेट लेके उनको पाल सकते हैं,
1: पाल सकते हैं।
0: और वो पालने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था
1: प्रशिक्षण जी जी,
0: मुर्गी का शेड कैसे बनना है
1: जी,
0: मुर्गी का दाना कैसे खिलाना है, मुर्गी का वैक्सीनेशन कैसे करना है, मुर्गी का सभी प्रकार का जो मैनेजमेंट देखभाल स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो हम सब सिखाते हैं
1: जी जी।
0: तो अगर आप तरीके से काम करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी।
1: सर जी, अधिकतर देखा गया है कि मीनार है और देसी मुर्गे मुर्गियां पालते हैं, इसके अलावा कड़कनाथ जो बिकता है 3 गुनी कीमत में बिकता है, तो किसान भाइयों को इसके लिए और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि कड़कनाथ एक यूनिक नस्ल है
1: जी जी,
0: उसके अलग ही लक्षण है, काले रंग का होता है, तो एक जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है
1: जी जी,
0: आपके झाबुआ जिले में कोई व्यक्ति इंदौर से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, महाराष्ट्र से, तो जिनके रिश्तेदार है, मित्र हैं, वो सीधा यही बोलता है कि भाई कड़कनाथ खाऊंगा मैं
1: जी,
0: जी, जी। तो एक अलग ही उसकी मांग रहती है मेहमानों की
1: जी,
0: तो प्राइवेट लोग उसको अच्छा कीमत पे बेचते हैं, करीब मेरे ख्याल से देसी मुर्गा 500 का बिकता होगा, तो ये करीब 1000-1200 रुपए के आसपास तो इसकी दाम रखता है प्राइवेट मार्केट में। और अगर हमारे शासन के कड़कनाथ फार्म से लेना चाहते हैं तो 540 रुपए के जी हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है
1: जी जी,
0: 3600 रुपए उपलब्ध है हमारे यहाँ
1: जी जी।
0: मैं अनुरोध करूंगा कि शासन की रेट पे लें तो ज्यादा फायदा मिलेगा किसान भाइयों को
1: जी जी। तो किसान भाइयों, हमारे सर जी दिवाकर साहब ने बहुत ही अच्छी अहम जानकारी दी, और कड़कनाथ के बारे में किसान भाइयों को और अधिक जानकारी लेना हो सर जी तो आपसे कहाँ संपर्क करेंगे?
0: किसान भाइयों, मैं अपना मोबाइल नंबर आपको नोट करा देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8319050715
1: जी,
0: मेरा नंबर है
1: जी सर।
0: आपको कभी भी मुर्गी पालन के संबंध में प्रशिक्षण लेना हो, पालन करना हो, और किसी प्रकार की कोई मुर्गी पालन के क्षेत्र में कोई किसी कोई समस्या आती है
1: जी जी,
0: कहीं कोई बीमारी आती है, तो मैं जरूर मेरे से सुझाव लें, मैं मदद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका मुर्गी पालन में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो
1: जी जी,
0: सफलता प्राप्त करें
1: जी। तो किसान भाइयों, अभी हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर एस दिवाकर साहब, जो कि प्रबंधक है कड़कनाथ फार्म झाबुआ में, और इन्होंने बहुत अहम जानकारी दी। और किसान भाइयों, हमें लगता है कि आप इन कड़कनाथ की जानकारी सुनकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सर जी जाते जाते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहते हैं?
0: मेरी सलाह यही है कि क्योंकि अपना जो कड़कनाथ है, मैं मुख्य बात तो बताना ही भूल गया आपको
1: जी जी सर,
0: हमारा कड़कनाथ को हमारा जो केंद्र सरकार है, उन्होंने एक जिला एक उत्पाद एक योजना है
1: जी जी,
0: जिले में ऐसा कौन सा यूनिक उत्पाद है जिसको जिले का मुख्य उत्पाद बनाया जाए
1: जी जी,
0: तो हमारा जो कड़कनाथ है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चयन किया गया
1: जी जी सर।
0: तो हम एक जिला एक उत्पाद से अगर जुड़ते हैं और हम 1500 बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो शासन ने इसकी एक वेबसाइट भी खोल रखी है
1: जी जी सर,
0: jhabuakadaknath.com
1: जी सर।
0: आप अपना पर्सनल पालन करें, मुर्गों को तैयार करें
1: जी जी,
0: और इसमें रजिस्टर्ड पंजीयन करवा लें इसमें
1: जी जी सर,
0: और आप ऑनलाइन बिक्री भी कर सकते हैं आजकल, आपके पास जितने ऑर्डर आएंगे आप अपना सामान वहाँ भेजना है, आप अच्छी आमदनी प्राप्त करेंगे
1: जी जी। धन्यवाद किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, और सर जी और हमारे मैं कमता डामोर और हमारे सर जी AS दिवाकर साहब जी को लेते हैं विदा। नमस्कार,
0: धन्यवाद।
2: हूँ से RJ राकेश
3: अने हूँ से RJ कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
4: તો સાલો કિસાન ભાઈઓ, હાવલી એક નાનો બ્રેક અને હાવલી આપણા ઝાબવા જિલ્લામાં ભીલ સમુદાયમાં જબ લાડો પૈણે અને જાન જાય તીનમાં જો ગાવે તું ઘણું મજાનું અને અસલ ગીત હામલીને પાછા ભેળા થા હું કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં જાજો મતી કહી થા હામલતા રહેજો ઝાબવાની આવાજ સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ પર.

0: 70 ग्राम के आसपास एक बर्ड जो एडल्ट बर्ड होता है 70 ग्राम के आसपास फीड लेता है एक दिन में।
1: अच्छा भाई सर ये बताइए आपने कड़कनाथ से ही शुरुआत क्यों की और क्या विशेषता है इस बर्ड की?
0: जी बेसिकली कड़कनाथ हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि इसमें ना बीमारियां बहुत कम होती हैं।
1: अच्छा
0: तो जो नया मतलब जो नया काम स्टार्ट कर रहा होता है मेन नुकसान है पोल्ट्री में वो मोर्टलिटी की है
1: जी।
0: आप ये सोच नहीं पाते कि जब तक किसान मतलब किसान ही समझ पाता है कि मैं किस वेस पे काम कर रहा हूँ तब तक काफी मोर्टलिटी हो चुकी होती है और फिर किसान थक जाता है।
1: कड़कनाथ एक टब ब्रीड है,
0: टब ब्रीड है, बीमारी कम आती है, झेल जाता है। छोटी मोटी बीमारी हुई तो ये झेल जाता है।
1: यही वजह थी कड़कनाथ,
0: यही वजह थी कड़कनाथ स्टार्ट करने की
1: जी। और अभी अंडे आ रहे हैं?
0: हाँ लेइंग चल रही है, आगे लेइंग, आगे लेइंग बर्ड है
1: दिखाइए।
0: हाँ।
1: अच्छा जो लेइंग वाला बर्ड है अभी कितना बर्ड है आपके पास में?
0: अभी 400 बर्ड है।
1: 400 बर्ड है।
0: हाँ।
1: अंडे कितने आ रहे हैं उनसे?
0: 200 अंडे के आसपास डेली की
1: 200 के आसपास अंडे रोज आ रहे हैं।
0: हाँ।
1: तो जो अंडे हैं वो कहाँ सेल कर रहे हैं आप?
0: सोसाइटीज में जाते हैं
1: जी।
0: तो मैंने मार्केटिंग भी सोसाइटी में स्टार्ट की थी और चिकन भी जा रहा है पैक होके यहाँ से, ऑनलाइन डिलीवरी है चिकन की भी।
1: आप चिकन भी जो है
0: डिलीवर कर देते हैं,
1: ऑनलाइन भेजते हैं
0: और एग भी ऑनलाइन डिलीवरी कर देते हैं।
1: एग क्या रेट जाता है आपका?
0: एग अगर हम ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें तो 800 रुपए की ट्रे जाती है।
1: 800 रुपए की।
0: और कोई फार्म से लेके जाता है तो 600 रुपए की ट्रे है।
1: 600 रुपए। सोशल मीडिया मार्केटिंग का बड़ा अच्छा फायदा उठा रहे हैं। बेशक इनका फार्म गांव में है लेकिन ये ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू अपना चिकन और एग सेल करते हैं। कितने कितने बड़े सेक्शन बनाए और लंबाई चौड़ाई क्या है इस फार्म की?
0: इसकी जो चौड़ाई है पूरे फार्म की और लंबाई 30 फुट चौड़ा है ये
1: जी
0: और 300 फीट लंबा है ये
1: जी।
0: 30x300 का साइज है ये।
1: बाहर भी ओपन के लिए आप फ्री रेंज के लिए भी?
0: फ्री रेंज के लिए।
1: और मुर्गियां चर भी रही हैं?
0: जी जी फ्री रेंज में भी खोलते हैं इनको
1: जी।
0: सुबह मॉर्निंग टाइम का फ्री रेंज का होता है और इवनिंग टाइम फ्री रेंज का होता है।
1: ये खर्चा कितना है आपका? लीज का है या अपना?
0: नहीं ये अपना लीज का है।
1: लीज का है?
0: हाँ जी।
1: क्या लीज जाती है?
0: 20,000 रुपए रेंट जाता है इसका।
1: 20,000 रुपए जाता है। और यहाँ पे वर्कर कितने रखे हुए?
0: 2 वर्कर है।
1: 2 वर्कर है और संभाल लेते हैं
0: बिल्कुल।
1: आप इसके अलावा क्या करते हैं? एजुकेशन बैकग्राउंड क्या?
0: जी जी
1: इस बारे में बताइए।
0: मैं MBA हूँ
1: जी
0: ऑपरेशन से। मेन काम मेरा प्रॉपर्टी का है,
1: प्रॉपर्टी में डील करते हैं। और उसके बाद ये आपने?
0: ये मैंने अभी स्टार्टअप किया 8-9 महीने पहले।
1: 8-9 महीने से किया?
0: हाँ जी।
1: आप इतने अच्छे धंधे में, आप क्यों आए मुर्गी पालन में?
0: एक्चुअली है क्या सर, धंधा आदमी हर कोई चाहता है एक्सपेंड करना अपना
1: जी।
0: तो वो तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है।
1: अच्छा
0: ये साइड बिजनेस के लिए एक बिजनेस और स्टार्ट
1: मतलब समथिंग मोर?
0: हाँ जी समथिंग मोर
1: जी, मतलब कुछ और कर ले हट
0: बिल्कुल।
1: प्रेरणा कैसे मिली?
0: एक्चुअली है क्या, आप अगर मेरा बैकग्राउंड पीछे से देखेंगे तो मैं किसान हूँ।
1: अच्छा कहाँ से हैं?
0: मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ।
1: अमरोहा से?
0: हाँ जी। तो बाप दादा ये किसानी की है सबने, तो किसान सी से थोड़ा जुड़ाव भी है, लगाव भी है और हमने गाय भैंस पाली है मतलब बचपन से ये देखा है चीजों करते हुए। तो एक मन भी था कि कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए, अभी तो ये स्टार्ट फेस है। इसके अलावा गोट फार्मिंग और अदर बर्ड भी रखने का प्लान है इसमें।
1: मतलब अभी आपने कड़कनाथ से शुरुआत की है, आगे आपने गोट फार्मिंग करनी है और पोल्ट्री की दूसरी ब्रीड भी आप रखने का इरादा है?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: जी।
1: इतने शानदार बर्ड है आपके
0: जी
1: जो चिकन है,
0: एडल्ट चिकन है। हाँ जी
1: चिकन पर्पस से आपने ये अलग
0: चिकन पर्पस से अलग रखे?
1: बेसिकली जो सर्दियां चल रही हैं
0: जी जी,
1: सर्दियों के लिए कोई खास इंतजाम किया?
0: वैसे तो जो एडल्ट बर्ड होता है सर्दी में इसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अच्छा। मैंने पिछली सर्दी में भी देखा हुआ है इसको,
1: क्योंकि अच्छे खासे
0: बर्ड है। मेन जो दिक्कत रहती है वो बच्चों को रहती है, तो बच्चों के लिए हमने भट्टियां रखी हुई है। अगर हम बच्चे पालते हैं तो हम ये जो स्टार्ट होगा कि लेइंग पे जब आ जाएगा तो वो वाला सेक्शन खाली हो जाएगा,
1: मतलब ब्रूडिंग का भी आपने ऑप्शन रखा?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप इतने दिन से कर रहे हैं, 8-9 महीने हो गए आप
0: जी,
1: कैसा लगा आपको ये काम?
0: बहुत बढ़िया काम है
1: जी।
0: बस मेन काम है मार्केटिंग।
1: अच्छा
0: अगर आपकी मार्केट नहीं है
1: जी
0: तो आप कुछ भी नहीं है, फिर तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा। तो
1: यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ आपने
0: ये एक्चुअली है क्या, खाली इसने छोड़ा हुआ है कि जैसे ही वो लेइंग बर्ड स्टार्ट होगा
1: अच्छा।
0: सेक्शन बढ़ेगा
1: तो इसमें आ जाएगा,
0: तो इसमें आ जाएगा उतर फिर बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे।
1: स्पेस ज्यादा चाहिए?
0: स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। हाँ जी।
1: यहाँ पे आपने अंडे की ट्रे रखी हुई है
0: जी,
1: मतलब स्टोर आपने यहाँ?
0: स्टोर यहाँ पे क्या हुआ है, रोज 2-4 दिन का माल स्टॉक होता है क्योंकि दूर जाता है प्रोडक्शन ये।
1: हाँ।
0: जो मार्केटिंग ऑनलाइन होती है वो अलग, यहीं से डिलीवरी जाती है। जो बड़ा स्टॉक होता है वो एक साथ होकर जाता है।
1: मैं देख रहा हूँ आपने ट्रे बांधी हुई है
0: जी, जी
1: मतलब
0: पैकिंग में जाता है,
1: रेडी
0: टू मूव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: कड़कनाथ बहुत अच्छी ब्रीड है और लेकिन लोग बीच में तैयार करने के बाद बेच नहीं पाए
0: जी,
1: आपने कड़कनाथ ही क्यों चुना?
0: बेसिकली है क्या, सारा गेम मार्केटिंग का था
1: जी।
0: और जिस जगह ये कड़कनाथ स्टार्ट किया वो विलेज स्टाइल में था।
1: अच्छा।
0: और विलेज में इसकी मार्केट नहीं है क्योंकि महंगा बर्ड है
1: जी,
0: अंडा भी महंगा है और चिकन भी महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता
1: जी।
0: इसलिए मैंने नोएडा और दिल्ली के जो पॉश एरिया है उनको मार्केटिंग चुनी है,
1: उनको टारगेट
0: किया और फ्लैट वाले क्लाइंट को टारगेट किया, कोठी वाले क्लाइंट को टारगेट किया है, जो जो अच्छी चीज खाना पसंद करते हैं उनके लिए फिर रेट मायने नहीं रखता, वो 1000 और 2000 कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए।
2: तो तैयार चिकन आप किस रेट बेचते हैं?
0: तैयार चिकन अगर यहाँ से जाता है ड्रेसिंग होके तो 1200 रुपए का जाता है।
2: डिमांड कैसी है और जो रेवेन्यू आपको आ रहा है वो कैसे आ रहा है?
0: देखिए डिमांड ठीक आने लगी है क्योंकि सर्दी बढ़ने लगी है तो अब डिमांड और बढ़ रही है, मतलब रोज अब ऑर्डर आ रहे हैं। पहले शुरू में दिक्कत हुई, मार्केटिंग लोगों से लेवल तक स्टार्ट नहीं हुई थी, लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, अब धीरे धीरे काफी लोगों तक हम पहुंच लगे हैं, माउथ टू माउथ पहुंच लगे हैं, लोगों को हम माल दे चुके हैं, उनकी भी दोबारा रिपीट ऑर्डर आने लगे हैं
2: जी।
0: तो अब जाके बेस तैयार होने लगा है माल का।
2: मैंने देखा है जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलते नहीं है
0: जी,
2: और जिन्हें देना है वो वहाँ पहुंच नहीं पाते। कहीं ना कहीं ये मार्केट का ही खेल है,
0: बिल्कुल,
2: के रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं हो पा रही है और जहाँ तैयार हो रहा
0: वहाँ माल बिक नहीं रहा,
2: पहुंच नहीं पा रहे,
0: बिल्कुल।
2: ये एक बहुत बड़ा गैप है इसमें।
0: जी जी जी जी
2: जी। और आपने अपना ये सोशल मीडिया के थ्रू आपने अपनी मार्केटिंग को एनरिच किया,
0: बिल्कुल
2: जी।
0: सोशल मीडिया से क्या होता है कि आप कम टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं।
3: હું છે આરજે રાકેશ
4: અને હું છે આરજે કંતા ડામોર,
3: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાઝ પર। કડકનાથ મુર્ગોં કી પ્રજાતિ મે આને વાલા સબસે મહંગા મુર્ગા હૈ, ઇસકા રંગ ખૂન પંજે ઓર આંખે આદિ સબ કુછ કાલે રંગ કે હી હૈ, इसलिए इसे काले चिकन या काले मांस के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में इस मुर्गे की कीमत लगभग 1200 रुपये प्रति किलो से 1800 रुपये प्रति किलो तक है। अन्य मुर्गों के मुकाबले यह केवल 5 से 6 महीने के भीतर ही तैयार हो जाता है। कड़कनाथ मुर्गे चारे में बरसीम और चरी आदि खाते हैं, अतः इन्हें पालने में लागत कम लगती है और मुनाफा काफी ज्यादा होता है। अपनी कई खूबियों के कारण इस मुर्गे की सबसे अधिक मांग है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह अन्य मुर्गों की तुलना में इनमें वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिसे खाने से शरीर को नुकसान नहीं होता। कड़कनाथ मुर्गा मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है और इसकी कीमत सामान्य मुर्गों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बेहद ही ज्यादा पाई जाती है। साथ ही इसकी हड्डियां और मांस का कलर भी काला होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हूँ से आरजे राकेश
4: अने हूँ से आरजे कमता डामोर,
3: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी, आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
5: તો કિસાન ભાઈઓ, એક વખત હજુ લઈ બ્રેક અને સાંભળી લઈએ આપણા ઝાબવા જિલ્લામાં ભીલ સમુદાયમાં જબ લાડ લાડિયા પૈણે અને તીન વાજો ગાવે ત્યુ ઘણું મજાનું અને અસલ ગીત સાંભળીને પાછા ભેળા થા હું કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં। જાજોમતી કિસાન ભાઈઓ, સાંભળતા રહેજો ઝાબવાની આવાજ સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ પર।

से कड़कनाथ माहना सेवन थी केवल शरीर में बढ़ोतरी बल्कि रोग प्रतिरोधकता क्षमता भी इनकी बढ़े से अने अनेक बीमारियों थी इन्होंने खावा थी वसी सके। पाकिस्तान साथियों कड़कनाथ माहनी मांग देह ने अलावा विदेशों में घणो ज्यादा रेवाने कारण एक असल व्यवसाय अने व्यापार युवाओं हारू उपलब्ध थाय से। कड़कनाथ होम्योपैथी चिकित्सा अने तंत्रिका विकार में विशेष औषधिनो काम करे से अने आदिवासी लोग इनाने खून थी पूरा तन अने चीरकालीन गंभीर रोगों ना इलाज भी इनमा या करे से। मनुष्य इनमा इनथी माहनो उपयोग काम उत्तेजक ना रूप में लैंगिक ताकत बढ़ावा हारू भी प्रयोग करे से। आर्थिक अने सामाजिक प्रभाव तो किसान साथियों कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ने द्वारा गांवों में किसानों ने हाथे बातचीत ना टाइम पर जो जानकारी केंद्र ना विशेषज्ञों ने भेड़ी करी कि इनमा कड़कनाथ में ज्यादा मांग अने कम वृद्धि पर ज्यादातर मृत्यु दर मुख्य रूप थी हामी आवी से। इनी प्रजाति नी विकास अने गति अवरुद्ध कर्या जाय से कि वैज्ञानिक ने द्वारा किसानों ने हाथे विचार विमर्श नी बाद मा एक समान विचारधारा अने मुर्गी पालन ना इच्छुक किसानों नो एक समूह श्री कड़कनाथ समूह बनायो से अने कृषि विज्ञान केंद्र ना सहयोग थी कड़कनाथ प्रजाति ना विकास हारू वैज्ञानिक ने द्वारा कड़कनाथ पालकों ने आहार प्रबंधन जल प्रबंधन टीकाकरण रोग प्रबंधन अने विपणन आदि नी पूरी जानकारी प्रशिक्षण सैद्धांतिक रूप थो वताड़े गए से। कड़कनाथ पालन ने पूरी तकनीकी जानकारी हामजी करीने किसान स्वेच्छाथी हाव इनो पालन करी रहा से अने कम लागत नी मुर्गी आहार ना प्रयोग भी करवा लाग्या से। आदिवासी किसान भाई इनी समूह थी काफी प्रभावित से अने कड़कनाथ पालन करीने आत्मनिर्भर बनी रहा से। तीन थी तीना फल स्वरूप इना गांवों थी आदिवासी भाइयों नो पलायन कम थाई रहा से अने एवी तरह थी व्यापार मा भी इन्हें रुचि बढ़ी रही से। वर्ष 2019-20 मा कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ने तरफ थी कड़कनाथ ने अजोला खवाड़ी ने इहुनो प्रभाव वैज्ञानिक ने द्वारा देखे जाय रो से तिहुनो सकारात्मक प्रभाव देखवा मळी रो से। कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ने द्वारा आर्या परियोजना निकरा परियोजना अने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ना अंतर्गत ग्रामीण युवाओं ने प्रशिक्षण आलीन तिहुन स्वावलंबी बढ़ावानु काम भी करी जाय रो से। हमने परिस्थितियों अने बाजार आकलन ना आधार पर आवा समय में कड़कनाथ नी बाजार में मांग ज्यादातर बढ़वानी संभावना से अने शिक्षित बेरोजगार युवाओं हारू कड़कनाथ पालन में रोजगार ने भी अपार संभावनाओं बनी रही से। तो किसान साथियों कड़कनाथ प्रजाति ना माहनी खास खास विशेषताएं तो माहनी रचना नमी नमी इनमें 17.5 थी लगाड़ी ने 73.5% तक रहे से अने प्रोटीन ने जो मात्रा 21 थी लगाड़े 24% रहे से अने वसा 1.94% तक रहे से अने राख 1.1 थी लगाड़ी ने 2.6% तक रहे से। ब्रायलर अने अन्य देसी मुर्गियों की तुलना तो किसान साथियों विशेषताओं रहे से इनमें प्रोटीन कड़कनाथ में 24% अने बीजी अन्य कुकड़ियों में 18 થી લગાડીને 20% અને કડકનાથમાં વસાની માત્રા 1.94 થી લગાડીને 2.6% અને અન્ય બીજી મુર્ગીઓમાં 13 થી લગાડીને 25% લિનોલિક એસિડ તો કિસાન સાથીઓ એ કડકનાથમાં 24% અને અન્ય બીજા કુકડીઓમાં 21%। કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા કડકનાથમાં 59 થી લગાડીને 60 મિલીગ્રામ અને 100 ગ્રામ અને અન્ય બીજી કુકડીઓમાં 200

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आज तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आज के मेहमान की कहानी सक्सेस की चमक से ज्यादा फेलियर्स, सेटबैक्स और लाइफ के उन मोड़ों की कहानी है जहां इंसान टूट भी सकता है, रुक भी सकता है, ठहर भी सकता है, बट उठ के आगे बढ़ भी सकता है। और इन्होंने एग्जैक्टली उसे ही चुना। स्कूल में इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, साइंस और मैथ्स में फेलियर्स, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हो पाना मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद, अमेरिका में जॉब जाना, मंथ्स तक जॉबलेस रहना, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, पर्सनल चैलेंजेस और फिर IT करियर को पूरी तरह से अलविदा कहकर अपनी असली कॉलिंग, जी हाँ अपनी असली कॉलिंग यानी टीचिंग और एजुकेशन को पा लेना। आज वही डॉक्टर अरबिंदो एक टीचर हैं, एक ट्रेनर हैं, अवार्ड विनिंग पब्लिक स्पीकर हैं, ऑथर हैं जो 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर चुके हैं और अपनी लाइफ टाइम में 1,00,000 स्टूडेंट्स तक पहुंचने का एक खूबसूरत सा सपना रखते हैं। भगवद गीता से सेल्फ मैनेजमेंट सीखने से लेकर AI के दौर में लीडरशिप पर लिखने तक और 9 लैंग्वेजेस में गाने से लेकर हिमालयस की पूरी रेंज देखने तक उनकी जर्नी में जिंदगी के कई रंग हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सभी मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर अरबिंदो का आज के हमारे जिंदगी अनप्लग्ड के एक और खास स्पेशल में। कैसा महसूस कर रहे हैं अरबिंदो सर आप?
2: बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच तनुषा जी एंड द होल रेडियो SN फैमिली एंड सभी सुनने वालों को जहां से भी आप सुन रहे हैं। वेरी एक्साइटेड टू बी हियर।
1: सेम हियर सर, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी इंट्रीग्ड बाय योर जर्नी, क्योंकि आज तक जितने आई थिंक मैंने ओवर 100 इंटरव्यूज कर लिए हैं अभी तक, और हमारा जो पहला इंटरेक्शन था आपको और मेरा वो भी गानों से ही रिलेटेड था, बट उसमें मैंने इतनी इन डेप्थ में आपको जाना नहीं था। तो अब जब मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी और आपको समझा, तो ये पहली प्रोफाइल है मेरे पास जिसमें इतना अबैंडन है, इतनी ऑनेस्टी है, इतना ट्रूथ है और इतनी इंस्पिरेशन है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे लिए कितना इंस्पायरिंग था इसका इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना और आपसे इस कॉन्वर्जेशन के लिए कनेक्ट करना। तो आई थिंक यू आर अ वेरी ब्रेव पर्सन। सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करना चाहूंगी, डॉक्टर अरबिंदो, यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट पीपल दैट आई हैव मेट, क्योंकि अपनी सक्सेसेस के बारे में सब लोग लिखते हैं, सब बताते हैं, बट आपने अपने फेलियर्स के बारे में इतना खुल के, इतने अबैंडन से बात की है, विच इज हैट्स ऑफ टू यू। कहां से लाते हैं ये स्ट्रेंथ आप?
2: नहीं, स्ट्रेंथ की बात नहीं है, द थिंग इज सक्सेस तो सभी लिखते हैं, बट वो सक्सेस को पाने के लिए हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कौन से फेल्यूर्स देखने पड़ते हैं, ये कोई बताना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि सक्सेस फॉर नाइट सक्सेस हो जाते हैं ना, तो बताना नहीं चाहता। तो मैं ये बताना चाहता था कि कपल ऑफ इयर्स बैक व्हेन आई क्रॉस 50, आई सेड चलो फॉर अ चेंज आई विल राइट ऑल माय फेल्योर रिज्यूमे, not a success resume. And I wrote from my childhood till the age of 50, I wrote all my failures. And trust me, Tanusha ji, it went viral on LinkedIn. बहुत लोगों ने बोला कि सर आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पीछे इतना कुछ है। बोला यार सबके पीछे होता है, आपको उसको पहचानना है, उसको बाहर लाना है।
1: यस yes, और वो करेज ढूंढना है कि आप उसको बोल सकें. लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म में जहाँ यू टॉक ओनली अबाउट योर सक्सेसेस, हैट्स ऑफ टू यू. और ये आपने अपने 50th बर्थडे पे किया जैसे कि आपने हमें बताया. अब मुझे ये बताइए कि ये जब आपने कदम लिया तो इसको लेने से पहले आपको ज्यादा मुश्किल क्या लगा? इसको एक्चुअली टू लेट दिस आउट टू द वर्ल्ड, इसको बाहर लाना आपके लिए ज्यादा मुश्किल था, उसमें ज्यादा करेज लगा, या जब आप एक्चुअली इस सबसे गो थ्रू कर रहे थे तो वो समय आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट था, जब आप बार बार फेल हो रहे थे और अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहे थे? क्या किस तरह का ये एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा बताएं.
2: जी देखिए, इन सबको अक्नॉलेज करके बाहर लाना वॉज नॉट ए बिग डील. द ओनली करेज दैट आई नीडेड वॉज टू अक्नॉलेज इट. यस, मेरे साथ हुआ है, यहाँ यहाँ यहाँ इस फेज में मेरे लाइफ में मैं फेल हुआ हूँ, और उसमें शर्म की क्या बात, ये भी मेरी जिंदगी है. अगर कोई कहे कि मैंने फेल्यूर देखा ही नहीं है, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी.
1: यस यस.
2: तो इसके बाद मुझे खुद की नजरों में दोबारा खड़ा होना ये थोड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि कई बार ऐसा लगा कि यू नो, बचपन से लेके जवानी में, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, यू नो, यू वेंट थ्रू माई प्रोफाइल, कई बार लगा कि भाई अभी कुछ हो नहीं रहा तो क्या करते हैं, चलो छोड़ देते हैं. इट्स वेरी इजी टू क्विट, राइट? तो मैं सोचा चलो और थोड़ा पुश करते हैं, चलो और थोड़ा पुश करते हैं, आज के लिए इतना ही, चलो कल देखते हैं. नो, आई टुक वन डे एट अ टाइम, एंड वो थोड़ा ड्रैगिंग था, बट जरूरी था.
1: करेक्ट करेक्ट. तो कई बार ये जो स्ट्रेंथ होती है ये कहीं ना कहीं डिवाइन आपको देता है, कि क्योंकि उनको पता होता है, आपको नहीं पता होता कि उसके वूम में क्या है, उसकी डेस्टिनी के वूम में क्या है, आपको नहीं पता, बट वो कैरी करता है आपको, और वो स्ट्रेंथ भी देता है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर पाए. क्योंकि बहुत लोग, सब लोग नहीं कर पाते सर, सिर्फ कुछ चोजन वंस होते हैं जो इतने स्ट्रगल के बाद भी अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और इतना कुछ फिर अचीव कर लेते हैं. आई थिंक योर रियल लाइफ स्टार्टेड आफ्टर 45 इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड. तो अब इसी से मेरा नेक्स्ट सवाल है. आपने बताया कि स्कूल में जब आप कन्नड़ा मीडियम में पढ़ रहे थे तब आपको थोड़ी इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था और बहुत सारी यू नो एक झिझक रहती थी कि आप इंग्लिश बहुत कोहरेंटली नहीं बोल पाते. और एट दी एज ऑफ 17 आपने मुझे बताया कि आपका फर्स्ट इंग्लिश कोहरेंट सेंटेंस आप बनाने की कोशिश कर पाए और बना पाए एक्चुअली. तो अब एज ऑफ नाउ जब आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं, एक पब्लिक स्पीकर हैं जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ एड्रेस करते हैं, तो क्या आप उस छोटे बच्चे से जाकर कभी बात करते हैं, आपके उस 12 साल के यू नो दैट स्मॉल चाइल्ड जो स्कूल में था, और उससे कुछ कहना चाहते हैं कि आज अगर वो आपको मिल जाए तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ अगर शब्द हों आपके पास?
2: दैट वाज अ वेरी यू नो टफ टाइम तनुषा जी. अगर वो आठवीं क्लास का 12 साल का बच्चा अगर वो उस जमाने में, उस उम्र में अगर क्विट कर जाता कि इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, हालांकि इंग्लिश पढ़ना लिखना तो जानता था मैं, बोल नहीं पाता था. मेकिंग अ लॉजिकल कोहेरेंट सेंटेंस इन इंग्लिश वॉज अ चैलेंज फॉर मी टिल अबाउट 17-18 ऑफ माई एज. तो अगर वो बच्चा उस जमाने में, उस उम्र में ये सोच के मायूस हो जाता कि चलो मेरे से नहीं हो रहा, पूरी आठवीं कक्षा गुजार दी, नवीं में आया, यस मैन, गो मैन, कम मैन, नो मैन करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बात करते थे, मैं कुछ मुंह नहीं खोल पाता था, और एक दो कन्नड़ा मीडियम के जो बच्चे थे सिर्फ हम दोनों ही साथ में खाते थे, साथ में खेलते थे, बाकी सब तो कोई खेलता नहीं था हमारे साथ, क्योंकि हम लोग यस मैन, नो मैन, कम मैन, गो मैन तो नहीं आता मेरे को जमाने में. वो बच्चे ने ये सब देखते हुए भी उसने क्विट नहीं करा, और उसके पहले, उसके पीछे सबसे बड़ी यू नो रीजन क्या है मैं बताता हूँ. इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है मेरे पिताजी. पिताजी ने देखा आठवीं में ये बच्चा बहुत डल लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है. पूछा एक बार कि क्या हुआ, मतलब मैं बोला कि इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूं मैं, मेरे को इंफीरियरिटी हो रहा है. तो ठीक है सोचे, और मेरे पिताजी जिन्होंने इंग्लिश सीखी थी, एक मल्लिकार्जुन शास्त्री करके एक हमारे फैमिली फ्रेंड जैसे थे, उनके पास मुझे पिताजी ने भेजा ईद के समर हॉलीडेज में. ईद के समर हॉलीडेज में जब उनके पास भेजा तो लाल रंग की एक रेन एंड मार्टिन करके एक इंग्लिश की बुक आई,
1: रेन एंड मार्टिन. ओह माय गॉड,
2: रेन एंड मार्टिन को मैंने, रेन एंड मार्टिन को मैंने निचोड़ के नींबू मिला के ईद के समर हॉलीडेज में मैंने वो पूरा घटाघट पी लिया.
1: क्या बात है.
2: और नौवीं कक्षा में जैसे कदम रखा इंग्लिश में, मैंने 21 लाया 25 पे. खुद इंग्लिश के लेक्चर परेशान है, बोले कि बेटा तुम तो कन्नड़ा मीडियम से आए हो, 21 कैसे आए. तुम्हारे नंबर, बोला रगड़ रगड़ के पिताजी ने भेजा तो ट्यूशन को मेरे को रेंजर मार्टिन का, पूरा निचोड़ के पी लिया मैंने। अभी आप बोलो एक्टिव बोलो पैसिव बोलो डायरेक्ट बोलो इनडायरेक्ट बोलो एडजेक्टिव बोलो प्रीपोजिशन बोलो वर्ब बोलो एडवर्ब बोलो, मैं पूरा का पूरा कर दूंगा। दैट ट्वेल्थ दैट गेव मी ट्रेमेंडस बूस्ट टू माई कॉन्फिडेंस, ट्रेमेंडस बूस्ट।
1: क्या बात है, सल्यूट है आपके टीचर्स को, मल्लिका अर्जुन सर को, आपके फादर को, जिन्होंने करेक्ट टाइम पे एकदम करेक्ट बुक हाथ में उठाई और आपको घुट्टी पिला दी उसकी।
2: जी जी जी बिल्कुल,
1: और आई एम श्योर आपका जो मेरा सवाल यही था कि वो बच्चे को आप क्या कहेंगे, तो वो बच्चा तो ऑलरेडी इतना समझदार था कि आई थिंक
2: वो बच्चे को मैं यही कहता कि भाई बेटा डोंट क्विट,
1: Don't quit. I'm sure just don't quit pushing. And I'm keep so pushing. Glad. Yes, I'm so glad that that child didn't quit. I mean, amazing, sir.
2: Yeah,
1: चलिए
2: yeah.
1: इन्हीं अमेजिंग बातों के बीच, इन्हीं पॉजिटिव बातों के बीच, ब्रूइंग विद पॉजिटिविटी आज हम बात कर रहे हैं। हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत जो मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है और बहुत ही सुंदर तरीके से अरबिंदो सर ने इसको गाया है और हम उन्हीं की आवाज में सुनेंगे दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, फिल्म है परदेश।

0: आगे चलते हैं सर, मुझे बताएं जब आप अमेरिका में थे, पहली बात तो आप अमेरिका किस तरह से आपका जाना हुआ, क्या आप हमेशा जॉब के परस्यूट में थे या बाहर लाइक ओवरसीज, या ये किस तरह से आपका पूरा ये स्टिंट था इन अमेरिका एंड ओवरसीज, और जब आप वहां पे 6 मंथ्स के लिए जॉबलेस रहे तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था, बोरोड मनी पर आपको रहना पड़ता था जैसे आपने हमें बताया, ऐसे समय में क्या आपको टिक करता था, आपकी फेथ आपको यू नो ग्राउंडेड रखती थी या सिर्फ आपके एफर्ट्स या एक ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स, योर फेथ एंड योर एक्शंस एंड दैट बिलीव कि सब ठीक होगा, किस तरह से आपने 6 महीने और उसके बाद का वक्त गुजारा जब आप वापस इंडिया आए और खाली जेब वापस आए एंड शुरू से शुरुआत की?
1: जी दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि फेथ तो होना ही चाहिए मगर फेथ से पेट नहीं भरता, एक्शन भी होना चाहिए। तो जब मैं वापस आया अपने आप को कोसता रहा, एक कमरे में पड़ा रहा, सिर्फ खाने के लिए बाहर आता था, खा के फिर अंदर जाके सो जाता था। एक महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, पिताजी तब भी बैंक की नौकरी थी और रिटायर नहीं हुए थे, तो पिताजी ने बोले कि क्या ये उम्र में तुमको घर पे बिठा के खाना खाने के लिए तुमको इंजीनियरिंग MBA कराया, कर कुछ अपनी जिंदगी का ढंग का कुछ। तो अमेरिका नहीं जा पाए तो क्या हुआ, इंडिया में तो भी अपॉर्चुनिटीज है, जाके कुछ कर ढूंढ, और वैसे भी अब तुम्हारी शादी भी हो गई, अब मेरी सर्विस और 4-5 साल बची है, अब तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारी बीवी को भी घर पे बिठा के खिलाऊं क्या? वो बात मुझे बहुत खटकी, बोला अकेला तो ठीक था, अब तुम्हारी बीवी भी है, अब दोनों को घर पे बिठा के खाना खिलाए हम, तो ये मुझे बहुत खटकी। मैं बोला तुरंत मैं बैग लेके मेरे ईगो को बहुत हर्ट हुआ, मैं सीधा बैग लेके बैंगलोर चला गया। थे मेरे दोस्त, कुछ रहा रहने को कोई प्रॉब्लम नहीं था, जाके दोस्त के यहाँ रुका और ट्रस्ट मी एक दो हफ्ते में एक 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी लग गई, उससे और एक 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट लग गई, और फिर वहां से मुझे एक बड़ी कंपनी में बॉम्बे में ऑफर मिली, तो मैं पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर बॉम्बे चला गया 2000 में।
0: क्या बात।
1: तो फेथ रखना जरूरी है और खुद से एक्शन लेना भी जरूरी है, क्योंकि फेथ दिखाता है कि आगे अच्छे दिन आएंगे, पर फेथ से पेट नहीं भरता, एक्शन से पेट भरता है।
0: करेक्ट सर, करेक्ट। और होता है आई थिंक ये जो पेरेंट्स चीजें बोलते हैं बहुत आश हो जाती है, बट ठीक है वो नहीं बोली तो हम शायद हिले नहीं, है ना?
1: आई नो इट वॉज आई सी द थिंग इज, जो पिताजी ने बोला वो मुझे उकसा के एक्शन लेने पे मजबूर करने के लिए बोला, ऐसा नहीं कि बुरे इंटेंशन से बोले,
0: है ना?
1: तो उनका इरादा था कि भाई मैंने तुमको इंजीनियरिंग पढ़ाया, मैंने तुमको MBA कराया, शादी भी कराई, तू US से वापस आया बिना नौकरी के, नो प्रॉब्लम, बिना पैसे के आया नो प्रॉब्लम, बट कुछ तो कर, ढंग का कर, ये क्या घर पे बैठ के पढ़ा रह रहा है, रूम में जाके खाना खाता फिर सो जाता रूम में जाके, इसके लिए पढ़ाई की तूने इतना सारा?
0: करेक्ट।
1: ये मुझे बहुत खटकी, सही बोल गया पिताजी।
0: करेक्ट। और वो एक्चुअली यही चाहते थे कि आप थोड़ा सा यू नो आपको हर्ट हो ईगो पे और आप करें कुछ, क्योंकि पेरेंट्स एक्चुअली उनका इंटेंशन हमेशा सही होता है,
1: बस
0: उस समय समझ नहीं आता, बाद में समझ आता है।
1: जी।
0: बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही ऑनेस्टी से आपने ये सब चीजें साझा की। आगे भी मुझे बताइए, जब आपका पेरेंटिंग की जर्नी थी, काफी इमोशनल फेज रहा 8 ईयर्स की आपके जीवन में, तो उस सिचुएशन में जब आप यू वर नॉट एबल टू, योर वाइफ इज नॉट एबल टू कंसीव अ चाइल्ड, तो सोशल प्रेशर्स भी होते हैं फैमिलीज के ऊपर, डायरेक्ट फैमिली से नहीं बट जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपने अगेन पेशेंस, एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो को कैसे अपनाया आपकी वाइफ ने, आपने, और इन सब ट्रेट्स ने आपको क्या क्या सिखाया कि कैसे पेशेंस आपको कुछ सिखा के जाता है, एक्सेप्टेंस, लेटिंग गो, ये सब चीजें आपको कुछ ना कुछ दे के जाती हैं, और जीवन हर तरह से टेस्ट करता है बट अल्टीमेटली आप यू नो यू कम आउट, आपने कैसे ये सब किया सर?
1: जी ये दैट वाज अ वेरी टेस्टिंग पीरियड ऑफ आवर लाइफ बोथ आई मस्ट से। ऐसा था, मतलब बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि अगर किसी की शादी है, एंगेजमेंट है, गृह प्रवेश है, हम एक दूसरे का चेहरा देख के सोचते थे कि जाएं कि ना जाएं, क्योंकि सबसे पहली बात तो अच्छा तुम दोनों आए हो, 5 साल हो गए, 4-6 साल हो गए, 4 साल हो गए, गुड न्यूज कहाँ है, कब है, अभी डॉक्टर के पास तो दोनों दिखा चुके थे, दोनों दोनों की टेस्टिंग हो चुकी थी, डॉक्टर ने बोला कि बोथ आर नॉर्मल, नथिंग रॉन्ग विद बोथ ऑफ यू। तो मैं बोला यार नथिंग रॉन्ग विद बोथ ऑफ यू मतलब हो क्यों नहीं रहा। तो डॉक्टर आसमान की तरफ आंख उठा के देखते थे कि उसकी मर्जी है। बोला सर आसमान तो मैं भी देख सकता हूँ एज ए डॉक्टर, एज एन एमबीबीएस, एज एन एमडी, एज एन एमएस, आप बताओ ना कुछ उपाय
0: करेक्ट
1: और क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो लोग बोलते थे कि ये पूजा करो 21 दिन का, 45 दिन का वो करो, 16 सोमवार का ये करो, ये मंदिर जाओ, वो मस्जिद जाओ, यहाँ चादर चढ़ा के आओ, है ना। कोई बोले कि ये चर्च में जाओ, मैं बोला ठीक है भाई सब कर लिए, सब कर लिए। हम कर्नाटका में से लेके तमिलनाडु के चर्च में से लेके राजस्थान के अजमेर शरीफ तक लेके सब कर लिए, सब कर लिए 6-7 साल में। तो जाना बंद कर दिया। तो मुझे एक ही बात खटकती थी कि अगर कोई कोई बता दे, मतलब कोई मतलब ऊपर से कोई जवाब आए कि भाई तुम्हें संतान होगा या तुम्हें संतान नहीं होगा, तीसरा तो ऑप्शन है नहीं।
0: करेक्ट।
1: अगर होगा तो मैं पॉजिटिव मान के चलूं, अगर नहीं होगा तो अपना लाइफ का रुख बदल दूं कि जिस दिशा में भगवान ले जाना चाहे उस दिशा में चले जाए।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे ऐसे लटका के मत रखो यार।
0: बिल्कुल।
1: हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो, लटका के मत रखो। ये मेरी समस्या थी। गीता, माय वाइफ गीता वाज ऑलवेज हैज ओपिनियन, हौसला रखो सब ठीक होगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा, जब भी हम लड़ते थे तुम्हें कैसे पता सब ठीक होगा, अरे मुझे पता, अरे कैसे पता, तो हम लड़ते थे। तो इट्स ओके, लेट इट गो, एक्सेप्ट द सिचुएशन। अभी इस बार नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, विल ट्राई अगेन। एंड फाइनली व्हेन इट हैपेंड, when she took the pregnancy test and she said दो लाइन आए एंड शी सेड आई कंसीव्ड, मतलब मायूसी इतनी हो गई थी। मैंने बोला कि मैं यकीन नहीं करूंगा, लैब जाना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट में फिजिकल खुद के प्रत्यक्ष प्रमाण में मैं देख के मैं यकीन करूंगा कि ये सच का न्यूज है कि भगवान ऐसे खेल रहा है। तो मतलब मायूसी वहां तक छाई हुई थी। बट फाइनली माय मदर इन लॉ वाज लाइक, अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, दोनों पढ़े लिखे हो, क्या है बच्चों की तरह बात कर रहे हो, बता तो रही है कि कंफर्म डायबोलर नहीं, आप बुरा ना माने, लैब चलते हैं। तो अब तीनों लैब गए, फिर कंफर्म करा तो बोले कि कंफर्म्ड है। तब मैंने जाके गणपति के सामने नारियल फोड़ा कि भाई थैंक यू वेरी मच।
0: क्या बात है सर, अमेजिंग। चलिए इन्हीं इंस्पायरिंग बातों के बीच, इन्हीं खुशनुमा बातों के बीच, इन्हीं होपफुल बातों के बीच हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, वो भी डॉक्टर अरबिंदो की खूबसूरत आवाज में। बहुत ही सुंदर गाना है ये, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। आई डोंट नो मेरे कितने फेवरेट्स हैं, बट वेरी वेरी फेवरेट सॉन्ग ऑफ मुकेश साहब। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है फिल्म, कभी कभी।

0: बहुत ही खूबसूरत रेंडिशन अरबिंदो सर।
1: थैंक यू।
0: आगे चलूंगी और पूछूंगी, आई थिंक ये सबसे टफ सवाल है बट ये जानना जरूरी है मेरे लिए और आई एम श्योर हमारे श्रोताओं के लिए भी, कि आपने 45 की एज में जब आईटी इंडस्ट्री को फाइनली गुड बाय किया तो कितनी स्ट्रेंथ लगी आपको, और जब आपको ये पता चला कि आपकी असली जो कॉलिंग है जो आपको टिक करता है एक्चुअली दैट इज टीचिंग एंड एजुकेशन की फील्ड, तो ये किस तरह से आपने ढूंढा, और क्या आपको लगता है कि हमारी कॉलिंग हमें हमेशा पता होती है बट हम उसे पहचानने में हिचकते हैं सोसाइटी की वजह से, प्रेशर्स की वजह से कि अब बहुत लेट हो गया और हम कैसे परस्यू करेंगे? किस तरह का ये एक्सपीरियंस था आपके लिए? वॉज इट ऑलवेज दैट यू न्यू कि आईटी से ज्यादा आपको टीचिंग में बेंड है, या इवेंचुअली आपने फाइंड आउट किया? व्हाट वाज द डिस्कवरी लाइक?
1: ओके, ये जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ बिगिंस एट 40 करके, मुझे मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुई। माय लाइफ बिगन एट 40 इन 2012। By that what I mean, मुझे 2012 में ये पता चल गया कि आईटी में ज्यादा मैं टिकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आईटी में क्या हो रहा था वो टाइम पे कि आप जितने जितने एज होते जाओगे, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपका पेचेक उतना ज्यादा होता जाएगा, तो कंपनी ये सोचेंगी कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख एक बंदे को देने के बजाय हम 40-50 हजार में 4 बंदों को हायर कर सकते हैं। सिंपल है ना, तो कंपनी तो यही सोचेगी बॉटम लाइन के लिए। ये जब मुझे दिखने लगा और मैं जिन जिन बच्चों को ट्रेन करता रहा, आई कॉल देम किड्स अगेन बिकॉज दे आर फ्रेश बीटेक, दे डोंट नो हाउ टू राइट एन ईमेल, दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स टू वेयर, दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू अ क्लाइंट, मैं ट्रेन करता रहा 3 महीने में 6 महीने में वो बच्चा बढ़ के मैंने पाल पोस के जो बड़ा किया वो दूसरी कंपनी में चला जाता था अच्छे पैकेज के लिए, और वापस से मुझे फिर 4 बच्चे थमा देते थे कि मैं यही मेरा काम रहा। मैं बोला यार माय इंजीनियरिंग माय एमबीए एंड 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शुड नॉट बी यूज फॉर दिस।
0: करेक्ट,
1: दिस इज नॉट व्हाट आई एम सपोज टू डू, बट द कंपनी वाज ऑलवेज लाइक भाई तेरे को 1.5 लाख तो मिल रहा है ना, तो करो। मैं बोला यार मुझे 1.5 लाख की बात नहीं है, जिससे मुझे संतुष्टि हो, मेरी भी आत्मतृप्ति हो, है ना। 4 बच्चों को ट्रेन कर दिया, 3 महीने बाद वो भाग गए, फिर 4 बच्चे लाए, फिर 3 महीने बाद ट्रेन किया, ये कब तक चलता रहेगा?
0: करेक्ट,
1: ये मैंने सोचा मेरी 40 की उम्र में। और 40 की उम्र के बाद आई स्टार्टेड गेटिंग रेस्टलेस, आई स्टार्टेड गेटिंग अनकंफर्टेबल। ओके, एंड वहां से लेके आपने जब बोला कि मैं 45 की उम्र में आईटी को गुड बाय किया, इट वॉज नॉट एन ओवरनाइट डिसीजन, इट टुक अबाउट 5 इयर्स, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आई हैड टू डिवोर्स माई थॉट फॉर कंफर्ट एंड मनी।
0: करेक्ट,
1: बिकॉज वेन यू आर कंफर्टेबल इन योर कंफर्ट जोन एंड द मनी दैट यू आर गेटिंग, अरे चलो यार क्या फर्क पड़ता है, बच्चों को सिखाने तो है। नो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। पैसे अच्छे थे, ईएमआई भर रहा था, बिल्स वाज देयर, माय फिजिकल डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स वर गेटिंग फुलफिल्ड, बट अंदर जो मायूसी थी, अंदर जो खालीपन था, मैंने यार ये कब तक चलेगा? दिस इज नॉट व्हाट एन 18-year-old एक्सपीरियंस गाय विद एन इंजीनियरिंग एंड एन एमबीए एंड यूएस रिटर्न शुड बी डूइंग। बट मैं तो पब्लिक के लिए तो मैं आईबीएम में मैनेजर था।
0: Wow, you were in IBM. Wow.
1: Yeah, I was in IBM for 9 years. And this is what I was doing 12 years back. I said, I didn't like it. Then I told my wife. My wife said, tumko jo karna hai karo, we are with you. Then I told my mom. Then I told my son. My son was 7. My, whatever you want to do. But then I realized taking so much pressure and the fear of layoff and that was not worth it. I felt it was not worth it. मैं बोला ठीक है भाई ये नहीं हो रहा है। तो आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स आई टुक अ बिग लीप ऑफ फेथ कि मुझे अब आईटी में नहीं करनी जॉब। एक छोटे से कंपनी में था, 2 लाख की सैलरी भी थी, एंड यू वोंट बिलीव तनुषा जी, यू हैव टू बिलीव व्हेन आई से, एक रात को मैंने लैपटॉप ड्रॉअर में रख के एक लेटर लिख दिया और बोला कि मेरे फाइल, मेरे फोल्डर्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, बैड भी छोड़ के मैं घर आ गया।
0: ओ माय गॉड,
1: और घर आने के बाद मैंने मेल लिख दिया सीईओ को कि भाई मैं कल से नहीं आ रहा।
0: ओ माय,
1: वो हैरान परेशान हो गया, अरविंद ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो तुम, 2 महीना नोटिस, ये वो, अरे जो करना कर लो सर, मैं नहीं आ रहा। अब मेरा दिल बैठ गया। और 1 महीना घर बैठ के मैं सिर्फ 2017 की बात है, ये 18 की बात है, 1 महीना घर बैठ के मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स देखता रहा। 2-3 महीने के पहले सैलरी में 2-3 महीने जिंदा तो रह सकता था, घर बैठ के नेटफ्लिक्स, कुछ अभी करना क्या, मैं सोचता नहीं। फाइनली इन द मीन टाइम इन 2014 आई गॉट इनटू टोस्ट मास्टर्स, देन आई रियलाइज्ड आई एम वेरी गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, सो मच सो दैट व्हेन आई स्पोक ऑन स्टेज पीपल यूज्ड टू सिट ऑन द ऑडियंस एंड मेक नोट्स, आई डिडंट नो दैट आई हैव दिस टैलेंट। तो व्हाई नॉट आई गेट इनटू समथिंग व्हिच पेस मी टू टॉक.
0: करेक्ट.
1: तो आई गॉट थ्रू अ टोस्टमास्टर्स फ्रेंड ऑफ माइन हु सेड आई एम लुकिंग फॉर अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर इन L&D डिपार्टमेंट. आएगा यूनिवर्सिटी में. बोला भागो.
0: वाओ.
1: तो बोले कि यूनिवर्सिटी बोली कि पैसा तो नहीं देंगे भाई तुमको, आईटी वाले हो तुम. मतलब कोई बात नहीं सर, मैं पैसे के लिए नहीं आ रहा. आई एम नॉट हियर फॉर इनकम, आई एम हियर फॉर द आउटकम. मैं बच्चों को सिखाऊंगा कॉर्पोरेट में बिहेव कैसे करते हैं. मैं बच्चों को दिखाऊंगा बच्चे ईमेल कैसे लिखते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, ये बताऊंगा मैं.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: तो यूनिवर्सिटी खुश कि भाई ऐसा बंदा मिल गया जो ये सब बताएगा मेरे हमारे इंजीनियरिंग बच्चों को. मैं भी खुश. और आप यकीन नहीं करोगे, फ्रॉम 1.8 लाख पर मंथ टेक होम सैलरी, माय सैलरी केम डाउन टू 60,000 रुपीज पर मंथ.
0: ओह माय.
1: ओके, 60,000 रुपीज पर मंथ. नाउ नाउ इन द लास्ट 8 इयर्स माय सैलरी हैज मोर देन डबल्ड.
0: ओह वाओ वाओ.
1: ओके, सो द थिंग इज माय वाइफ वाज लाइक 1.8 से 60 मतलब एक तिहाई. एक तिहाई कर पाओगे? बोला करना पड़ेगा, करेंगे. तो मैं आई यूज टू ड्राइव 42 किलोमीटर वन वे इन बैंगलोर.
0: 42 वन वे.
1: One day.
0: My, my.
1: In Bangalore. And Bangalore, you know, world's top 10 traffic congested cities.
0: Yes, yes.
1: I drove famous for the traffic. Such was my belief. Such was my faith. Something good is going to come out of this 42 kilometers one way. I drove
0: famous for the traffic.
1: Such was my belief. Such was my faith. Something good is going to come out of this 42 kilometers one way.
0: My God, sir.
1: I did that for 6 months. I did that for 8 months.
0: Oh, my.
1: Then I realized, भाई यहाँ तो टिकेगा. तो मैं क्या किया, I was living in a city, apartment which was my own in the city. अब लग रहा है कि ये आईटी में मतलब अकेडेमिया में टीचिंग में लंबा जाएगा मेरा. तो मैंने वो मेरा खुद का घर भाड़े पे देके, मैं भाड़े के घर में जाके सो दैट आई कैन बी क्लोजर टू यूनिवर्सिटी, मैंने घर शिफ्ट कर लिया. बच्चे का स्कूल भी शिफ्ट कर लिया. अम्मा के भी दोस्त थे, वाइफ की भी दोस्तें थी, सब क्लब्स वगैरह थे, सब बंद करा दिया. दे ऑल कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रिफाइस बिकॉज ऑफ मी. आई एम ग्रेटफुल टू दैट फॉर माय मॉम, फॉर माय वाइफ, फॉर माय सन. जहां तू वहां हम. तो आ गए. सो देन द मोमेंट आई गॉट इन टू यूनिवर्सिटी टीचिंग सॉफ्ट स्किल्स, आई एनरोल माई सेल्फ फॉर ए PhD. फिर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, अरे इस उम्र में तू कॉलेज में बैठेगा, बच्चों के साथ बैठ के एग्जाम देगा, मिड टर्म लिखेगा, इंटर्म लिखेगा. बोले तुम जो समझना है समझ लो भाई.
0: करेक्ट.
1: मुझे अकेडमिया में लॉन्ग टर्म टिकना है तो मुझे PhD चाहिए ही चाहिए.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो मैं 3 साल तक मैं सबको अवॉइड किया. मिलना जुलना सोशलाइजिंग सब किया. सिर्फ 3 साल आई एक्सक्लूसिव 3.5 ईयर्स आई फोकस ऑन माई PhD.
0: वाओ.
1: एंड आई गॉट माई PhD. आप यकीन नहीं करोगे, जस्ट अबाउट 10 मिनट्स अगो आई वाज टॉकिंग टू एक्स कोलीग ऑफ माइन जो अभी भी IBM में है. जिस टाइम मैंने IBM में छोड़ा था उसको बता के छोड़ा था मैं जा रहा हूं करके, अभी मेरे को पिंग किया 10 मिनट पहले, आई एम इन द सेम सिचुएशन एज यू वर अ डेकेड अगो अरविंदो, हेल्प मी.
0: ओह माय.
1: अभी चल रहा है उसके साथ.
0: जस्ट बताइए, व्हाट अ कोइंसिडेंस. यस. और आज हम
1: यस.
0: और मैं अब देखती हूँ कि आप इतने अच्छे टीचर हैं, क्योंकि अभी हाल ही में टीचर्स डे गया था 5th को, और मैंने आपके कई सारे मैसेजेस बच्चों के पढ़े थे. वाह सर, कितने फेमस टीचर हैं. एंड यू रियली लाइक योर चिल्ड्रन, रियली योर किड्स रियली यू नो लुक अप टू यू. सो यू आर एन एक्सलेंट टीचर. आई एम सो हैप्पी दैट यू टुक योर कॉलिंग और आपने टीचिंग की तरफ रुख किया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है टीचर्स के लिए. आई ऑलवेज हैव दैट इन माई हार्ट एंड माइंड बिकॉज माई मदर इज वन. एंड आई थिंक टीचर्स आर रियली फ्यूचर बिल्डर्स एंड दे आर रियली द की फैसिलिटेटर्स फॉर चेंज. वो कैटलाइज जो चेंज करते हैं वो बहुत लंबा जाता है, सिर्फ आजकल की बात नहीं है. तो वेरी नाइस सर. इसी थॉट पे मैं अगेन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द गीता वे ऑफ लाइफ, और वो भगवत गीता के लेसन्स को सेल्फ मैनेजमेंट से जोड़ती है. बट जिस लाइफ में हम अभी जी रहे हैं, जहां हम कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड हैं, एंग्शियस हैं, कंपैरिजन ड्रिवन हैं, वैलिडेशन सीक करते हैं, इसमें गीता को कहां जगह मिलेगी, और गीता का ऐसा कौन सा एक श्लोक है जो

0: आप कहना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जिस तरह की हम लाइफ अभी लीड कर रहे हैं उसमें एक यूनिवर्सल श्लोक जो सभी को फायदा करे तो वो कौन सा होगा, और थोड़ा सा आपकी बुक के बारे में भी बताएं प्लीज।
1: जी जी वैसे तो उसका नाम ही है भगवत गीता है, भगवत वाणी है, खुद भगवान श्री कृष्ण ने कही है तो भगवत की वाणी होगी, बट उसमें से एक निकालना मुश्किल का काम है, बट फिर भी मैं एक श्लोक अगर निकालना है तो आई विल कोट वर्स 5 फ्रॉम चैप्टर 6, इसमें जिसमें कृष्णा जी कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मान न आत्मान अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, मतलब लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है, तो डू नॉट डिग्रेड योरसेल्फ, योर माइंड अलोन इज योर फ्रेंड एंड योर माइंड अलोन इज योर एनिमी। अगर उन्नति भी चाहते हो तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, अगर तुम्हारी अवनति भी होगी तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो।
0: True.
1: तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को उभार के ऊपर उठाओगे या अपने आप को नीचे पाताल में धकेलोगे। तो यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड एंड फॉर द माइंड दैट इज नॉट कंट्रोल्ड यू नो यू विल बी रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिकॉज द माइंड हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन एंड इट विल टेक इन दिस ओन डायरेक्शन वेयर एवर इट वॉन्ट्स टू गो।
0: करेक्ट।
1: एंड यू आर नॉट दैट, सो यू शुड ऑब्जर्व योर सेल्फ, यू शुड take care of yourself, you should take charge of yourself or else your mind will take charge of you.
0: Absolutely.
1: ये मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए ध्यान करना है, सेवा करनी है, सर्वेंट लीडरशिप करना है, दूसरों को समाज सुधार के लिए अपने आप को खो देना है, अपने अहम को मिटाना है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स से इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन, सिखिज्म बोलो, बुद्धिज्म बोलो, इस्लाम बोलो, क्रिश्चियनिटी बोलो, अलग अलग यही बोलते, बातें यही बोलते हैं।
0: अल्टीमेट सार यही है।
1: इस्लाम में आप ज़कात की बात करते हैं, सिखिज्म में लंगर की बात करते हैं, दूसरों को खाना खिलाते हैं और हमें लगाते हैं, क्रिश्चियनिटी बोलते हैं ब्रदरहुड के हिसाब से दूसरों की सेवा करो, खड़ा हो दूसरों के सामने, जो वन हु इज वीक, वन हु कैनॉट डिफेंड हिमसेल्फ, यू फाइट फॉर देम, यू स्टैंड फॉर देम, तो यही तो बोलते हैं, बुद्धिज्म यही बोलता है, इस्लाम यही बोलता है, क्रिश्चियनिटी यही बोलता है, भगवद गीता भी यही बोलता है।
0: एब्सोल्युटली, वेरी ब्यूटीफुल सर। अगर इसी से आप अपनी बुक के बारे में थोड़ा सा बता सकें कि किस तरह से आपने बुक लिखी, कैसे कंसीव की, और गीता से आप कनेक्ट अगर इसको किया है तो आपकी वाइफ कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन थी या इट वॉज सोली द भगवद गीता, और उनको हमारी तरफ से बहुत कंग्रेचुलेशन पूरी एस एन रीडिंग टीम की तरफ से। गीता मैम, आप एक ब्यूटिफुल पार्टनर है, यू स्टूड बाय अरबिंदो सर, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते तो आज शायद हम ये बात नहीं कर रहे होते, तो यू प्ले एन इक्वली वाइटल रोल इन हिज लाइफ, सो थैंक यू गीता मैम।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली ये जोक भी करता हूँ कि तो 27 साल हो गए, तो लोगों को यही बोल के जोक करता हूँ कि गीता का उपदेश सुन सुन के इतना आदि हो गया हूँ कि किताब लिख डाली मैंने।
0: हाँ, तो है ना? I'm sure. तो,
1: या एक्चुअली क्या है ना कि ये प्रोडक्टिविटी के बारे में या फिर पावर ऑफ हैबिट्स के बारे में अगर कहा जाए तो बात ये कहते हैं कि 15 मिनट्स इन अ डे और 17 मिनट्स इन अ डे यू लर्न समथिंग न्यू एंड इन वन ईयर यू वुड हैव बीन इन द टॉप 5% इन द वर्ल्ड। ऐसा मैंने जब पढ़ा तो मुझे एक इंस्पिरेशन आया कि 2017 में मैं बोला इसको क्यों ना मैं सीरियसली लूं, क्योंकि इसके पहले जो मेरे मामा जी थे, माय मदर्स एल्डर ब्रदर, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर, उन्होंने कहा था कि कैच होल्ड ऑफ वन थिंग अरबिंदो, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर जॉब, दैट यू डोंट वॉन्ट टू अर्न एनी मनी फ्रॉम, बट यू वॉन्ट टू बी ए मास्टर ऑफ द डोमेन, आई डोंट नो वॉट इट इज, कैच होल्ड ऑफ वन थिंग। ये बात उन्होंने कही थी 2005 में। 2017 तक मैं ढूंढता रहा मैं किसको पकड़ू, क्या पकड़ू, म्यूजिक पकड़ू, साइकोलॉजी पकड़ू, क्या पकड़ू मैं, क्योंकि उन्होंने कहा था, मामा जी ने कहा था कि पैसा नहीं कमाना इससे, कि पैसा कमाने से क्या होगा, लालच आ जाएगा, तुम अपनी विद्या को, अपनी स्किल को बेचना शुरू करोगे, ये मत करो। तो मैं क्या पकड़ू, फाइनली 12 साल बाद मुझे एक क्या बोलते हैं ना, दिमाग की बत्ती जली, ज्ञानोदय बोलिए, जो
0: मेंटर्स खाएगी,
1: हाँ मेंटर्स खाके दिमाग की बत्ती जली, तो मैंने बोला 15 मिनट हर रोज मैं भगवत गीता को दूंगा, तो एक साल में मैं आई वुड हैव बीन इन द टॉप 5% इन द वर्ल्ड। तो मैं 2018 से लेके 17 के एंड से लेके आज तक आई रीड गीता 15 to 20 मिनट्स एवरी डे विदाउट ब्रेक। भले मैं जर्नी कर रहा हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, मैं फ्लाइट में हूँ, मैं हिमाचल में हूँ, मैं कश्मीर में हूँ, मोबाइल खोलो 15 मिनट पढ़ो.
0: वाओ सर.
1: घर पे है तो किताबें तो है ही. तो आई स्टार्टेड रीडिंग गीता एंड गीता का सार इन कन्नड़ा, इन तेलुगु, इन हिंदी एंड इन इंग्लिश. देन टू पुश माई सेल्फ 3 इयर्स एगो वॉट आई डिड, आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस एंड आई डिड चैप्टर 12 इन कन्नड़ा ऑन मंडे, इन तेलुगु इन ऑन ट्यूजडे, इन हिंदी ऑन वेंसडे एंड इंग्लिश ऑन थर्सडे. सो नाउ आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई कैन एंगेज एन ऑडियंस इन 4 ऑफ दीज लैंग्वेजेस फॉर 1 फुल डे.
0: वाओ वाओ अमेजिंग अमेजिंग सर.
1: तो ये जब,
0: और हिंदी भी आपकी बहुत अच्छी है, जैसे अभी आपने श्लोक रिसाइट किया तो इतना क्लैरिटी से था, तो आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट यू देन आल्सो, बट आई थिंक आई जस्ट लेट गो ऑफ इट फॉर दिस मोमेंट. यस यस.
1: तो जब कोविड शुरू हुआ तो मैंने गीता का किताब लिया, 2-3 किताबें, एंड उन सबसे सिंथेसाइज करके. वैसे ये 2020 में AI के आने से पहले मेरी खुद की हाथ से लिखी हुई किताबें हैं.
0: Congratulations, I'm sure. ये एक special mention deserve करता है.
1: Yes, special mention deserve करता है.
0: Yes.
1: So 18 chapters of Gita are broken down into 3 parts. Bhakti Yoga 6, Karma Yoga 6 and Jnana Yoga 6. इनमें से मैंने 2-2-2 को लिया, 6 chapters को simplify करके the Gita way of life मैंने लिखी. 2 bhakti ke, 2 karma ke, 2 jnan ke. 6 chapters को 18 chapters में मैं थोड़ा अपना खुद का लगा के examples देके I drew parallels from servant leadership, Sikhism, Buddhism, Islam, Christianity and little bit on Vedas, whatever knowledge I have, whatever what I could find on the internet. I did all that research and that was the book, The Gita Way of Life. And trust me, when I tell this, 6 years later, Amazon पे अभी भी ये book बिकता है और आज भी लोग order करते हैं.
0: Wow, sir. Wow.
1: Hundreds of books available on Gita.
0: जी जी जी बिल्कुल. अभी मैं इसी के बारे में बात करूंगी. एक गाना और सुन लें उसके बाद कि किस तरह से अमेजोन बेस्ट सेलर रही ये बुक. एंड अमेजिंग सर, इट्स रियली इंस्पायरिंग आपसे बात करके. देयर इज अ एनर्जी जो फ्लो होती है, और जैसे आपने बताया कि आपकी बुक में एक संगम है ज्ञान का, धर्म का और तीसरी चीज क्या बताया आपने, कर्म का. तो इन्हीं तीनों चीजों को अगर मिला के हम चले, बैलेंस करके चले, तो आई थिंक दैट इज द गीता वे ऑफ लाइफ. एंड यू ब्यूटिफुली रिटन इट. आई एम श्योर आई गेट माई हैंड्स ऑन द बुक, और एक बुक पॉडकास्ट जरूर करूंगी मैं आपके साथ इसके बाद.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
0: बट अभी के लिए हम सुनेंगे आप ही की खूबसूरत आवाज में एक और बेहतरीन गीत, फिल्म अभिमान से मीत ना मिला रे मन का.

0: बहुत ही सुंदर रेंडिशन सर, बहुत ही उमदा गाते हैं आप और बहुत बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। आई होप आपकी सिंगिंग की जर्नी भी इतनी आगे बढ़े जैसे आपकी बाकी फील्ड्स में जर्नी बढ़ी है। अब हमने गीता वे ऑफ लाइफ की जब बात की तो यही मेरा सवाल है कि ये जब बुक ऑफ द ईयर बनी और अमेजोन बेस्ट सेलर बनी, तो ये जो अवार्ड्स थे बुक ऑफ द ईयर 2024 और अमेजोन बेस्ट सेलर बन जाना अपनी पहली किताब के साथ, ये किस तरह के रिकॉग्निशंस थे, कैसा आपको फील हुआ इस अचीवमेंट के बाद, और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सब अचीवमेंट्स कई बार ये ट्रॉफीज, ये बेस्ट सेलर का जो टाइटल टैग, ये सब एक तरफ और जिंदगी एक तरफ, आपके लिए सबसे करीब अचीवमेंट, सबसे करीब अवार्ड क्या है?
1: मेरी पहली किताब थी गीता वे ऑफ लाइफ विच वन द बुक ऑफ द ईयर इन 2024 बाय अ कंपनी कॉल्ड गुरुकुल पब्लिशिंग एंड दे इनवाइटेड मी टू हैदराबाद, सो आई वेंट टू हैदराबाद एंड गॉट द अवार्ड. My second book, which got released in the month of March this year, that is called Be Limitless. It is a general self-help book, and I didn't realize that finally, when the final product came, it had got about 450 pages. आप उसको थोड़ा mini size का महाग्रंथ कह सकते हैं आप, because I wrote it like one lesson per day. I wrote 366 chapters.
0: Wow, 366 chapters. Wow.
1: Yeah, there is no sequence, there is no continuity. You can just put your finger inside the book and take out a page and read a page, reflect on that page. That's all.
0: Wow.
1: And you can move on to the next one. You can read one page a day, every day for 366. That was my idea.
0: Wow.
1: Right. And this book, when it got released, suddenly university mein thodi halchal mach gayi. And my co-author Dr. Harsha. He's a good friend of mine and he works with me in the university in a different department. हम दोनों ने मिलके इसका plan किया था, इसकी sequencing, editing वगैरह, final proof reading हम दोनों ने मिलके किया था, तो we इनका श्रेय दोनों को जाता है. तो he knew a lot of people, I knew a lot of people, and suddenly when it went launched on Amazon, trust me, it went little viral, and suddenly in one self-help category, Amazon pushed that book to number one status. I have a screenshot for that. And you know what is the surprising part, Tanusha ji? That book is available all over the world.
0: Wow.
1: I don't know how. You go to Amazon America bolo, Amazon.com bolo, America, Europe bolo,
0: yes,
1: UK, Canada. Sab jagah ye book milta hai. Aur hum deliver nahi kar rahe hai Bangalore mein baith ke. Wo apne aap ho ja raha hai. I don't know how.
0: Oh my.
1: Okay.
0: Amazing.
1: that is my book number two. Now that brings me to book number three. Which is again in progress and probably by end of this year. Actually, Janmashtami ke din socha tha, wo nahi ho paya.
0: Okay.
1: Maybe end of this year I'll publish it. This is called Conscious Leadership. I have extracted 18 leadership principles from Gita with a lot of practical examples and case studies from Starbucks to Satya Nadella to Mahatma Gandhi to Nelson Mandela and all these things. I've synthesized Simon Sinek. I've synthesized all these things and I'm calling it the Conscious Leadership. This is my third book and that is already in progress. I plan to release it this year. So my goal for the next 5 years would be to finish one book every year.
0: Amazing, sir.
1: So I let the intention out to the universe. Abhi universe ko tatastu bolna hai aur happen karna hai.
0: बिल्कुल बिल्कुल, गॉड विलिंग ये जरूर होगा और हर साल आपकी किताब आए, ये हम सबकी दुआ है आपके लिए, पूरी एसएन रेडियो टीम की, मेरी, और बिल्कुल आनी चाहिए आपकी बुक, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है, इतना एक्सपीरियंस.

0: है, इतनी नॉलेज है, इतना आप पढ़ते हैं, तो ऐसे ही लोग हमें चाहिए जो अपनी किताबें निकालें और हम उन्हें पढ़ सकें, उनसे कुछ ज्ञान ले सकें। और आपकी लाइफ बहुत प्रैक्टिकल रही है, मतलब यू हैव लेड अ वेरी प्रैक्टिकल लाइफ। बहुत लोग यू नो दे डोंट वॉक द टॉक, दे टॉक समथिंग, दे डू समथिंग एंड लाइफ समवेयर ब्लेसेस देम, तो वो एक अलग तरह की लाइफ होती है। मैं उसको गलत नहीं मानती, बट आई थिंक आई ऑलवेज रिस्पेक्ट समबडी हु हैज हैड स्ट्रगल्स इन लाइफ, एंड वो स्ट्रगल से निकल के दे हैव अ स्टोरी टू टेल। सो यू योर्स इज वन सच स्टोरी, एक बहुत पावरफुल, एक बहुत लीडरशिप से लेड, एक बहुत पॉजिटिविटी से लेड, एक बहुत यू नो कॉन्फिडेंस से लेड लाइफ है आपकी, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, विच इज कमेंडेबल। आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा टेक होम है कि अपनी स्पिरिट को अनडॉन्टिंग रखें और पॉजिटिव रहे नो मैटर वॉट। आपसे बात करते करते भी वो पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है, तो इट्स अमेजिंग, कमेंडेबल सर। योर एनर्जीज आर वेरी स्ट्रांग एंड सॉर्टेड। सो इसी से जी, इसी से हम आज का ये सेशन, ये ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशन, नो मैटर हाउ मच आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू, मुझे इसे खत्म, विराम लगाना पड़ेगा इस पे। तो मेरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका हमेशा एक पावरफुल मंत्र है लाइफ का, कि लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट गेम ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग, विच आई लव। आई लव दिस लाइन, इवन आई लिव बाय इट, क्योंकि सिर्फ लर्निंग नहीं होती, रीलर्निंग भी है और सबसे इम्पोर्टेंट अनलर्निंग है। तो अगर जिंदगी में एक चीज आपको अनलर्न करनी हो और एक चीज रीलर्न करनी हो, तो डॉक्टर अरबिंदो वो क्या चीज है जो आप करेंगे?
1: गेम लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट गेम ऑफ लर्निंग अनलर्निंग एंड रीलर्निंग, ये मैं मेरे क्लास में भी बोलता रहता हूँ बच्चों को। एक लाइन बोलता हूँ मैं, चेंज और एल्स यू विल बी चेंज्ड। तो जब ये बच्चों को बोलता हूँ मैं, तुरंत रिएक्शन देखता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, देर विल बी सम जॉस विच ड्रॉप एंड सम आईज गो अप, एंड बच्चों को ऐसे कि भाई मानो किसी ने पीछे से एक सॉलिड मुक्का दिया,
0: करेक्ट
1: बदलो नहीं तो बदल लिए जाओगे। तो
0: करेक्ट,
1: ये आई लिव बाय दैट प्रिंसिपल। व्हाई? सिंपली बिकॉज व्हाट एम आई गोइंग टू अनलर्न इज, देखिए हमारा बॉडी जो है एक हार्डवेयर है, और हमारी माइंड जो है एक सॉफ्टवेयर है,
0: करेक्ट,
1: और हमारा कॉन्शियसनेस जिसको आप बोलते हैं, ये हमारी माइंड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड कॉन्शियसनेस इज अ सॉफ्टवेयर। सब अपने अपनी सॉफ्टवेयर पैदाइश से लेके आते हैं, जैसे कि हर कोई सॉफ्टवेयर को फ्रीक्वेंटली पीरियोडिकली अपडेट अपग्रेड अपडेट अपग्रेड करते रहना है, वैसे ही आपको अपने सॉफ्टवेयर को, मतलब अपने कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करते रहना है,
0: बिल्कुल,
1: वन डे एट ए टाइम। सो व्हाट वुड आई लाइक टू अनलर्न, कि व्हाट एवर नेगेटिव हैपन टुडे, आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड दोज फाइल्स, आई विल डिलीट दोज फाइल्स, आई विल रिसेट माई फाइल्स वेन आई स्लीप, सो टुमारो मॉर्निंग माई सॉफ्टवेयर इज फ्रेश।
0: ट्रू सर,
1: अगले मिनट में चुप रहूंगा, मैं शांति से रहूंगा। एक मिनट से एक घंटा बनेगा, एक घंटे से एक दिन बनेगा, एक दिन से एक हफ्ता बनेगा, एक हफ्ता से एक महीना बनेगा, एक महीने से एक साल बनेगा।
0: करेक्ट।
1: तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट्स जस्ट अ बैड डे नॉट अ बैड लाइफ, वी थिंक अ बैड डे इज अ बैड लाइफ। दैट्स नॉट ट्रू, इट्स जस्ट अ बैड डे। टुमारो द सन कम्स अगेन, टुमारो थैंक गॉड दैट यू वोक अप, बिकॉज मेनी मिलियंस ऑफ पीपल डोंट वेक अप व्हेन दे स्लीप एवरी नाइट।
0: Yes.
1: So be grateful. That's what I like to relearn every day.
0: Oh wow, sir! Beautiful, beautiful, sir! Beautiful. So much, so much to learn from you, and unlearn from the lessons that you've given. It was a enriching experience. बहुत मजा आया आपसे बात करके. बहुत rich experiences हैं आपकी life के. बहुत raw, real, practical experiences हैं. And I'm so glad कि आप teaching की तरफ shift हुए, क्योंकि I think आपके पास बहुत कुछ है share करने के लिए, teach करने के लिए, impart करने के लिए. And I hope your journey goes a very, very long way. And हर साल आप एक किताब लिखें, हमारे साथ share करें, हमारे साथ गाते रहें, गुनगुनाते रहें, हम इसी तरह connected रहें. Thank you so much, Aurobindo sir. It was a pleasure connecting with you.
1: Same here, Tanisha ji. Have a nice day.
2: डॉक्टर औरबिंदो की आज की बातचीत ने एक खूबसूरत बात

याद दिलाई है। फेलियर कहानी का एंड नहीं होता, कभी कभी असली शुरुआत वहीं से होती है। आपकी जर्नी में सेटबैक्स भी रहे, स्ट्रगल्स भी रहे और फिर रीइन्वेंशंस भी रहे, और याद और शायद इसीलिए आपकी कहानी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, हिम्मत देने वाली कहानी है। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सभी सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जिंदगी से सीखते रहिए, खुद को नए सिरे से पाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडवा भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ। और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदल जाता है, और तब

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही ले।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबराएं।

समय है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडवा भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज।

है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडवा भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपनी बातें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। 1992 से लेकर 1993, यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

चांचुरा ने आए चमचा चलमचा कोर्च रैया चूचू चूचा राय भैया चूचू का मुरब्बा भैया चूचू का मुरब्बा टकला टकलू टाक टवोरी टकिया टपकी

सांप सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे से।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा गजल का कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक। गजलें यानी कि कुछ खूबसूरत अल्फाज, कुछ गहरी भावनाएं और दिल को छू जाने वाली धुनें। तो चलिए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ को भूल जाएं और खो जाएं गजलों की इस खूबसूरत दुनिया में हमारी ही रेडियो दोस्त आरती जी के साथ।

0: शीशा गरी का हुनर ना कर जाया। तू अपनी शीशा गरी का हुनर ना कर जाया। मैं आईना हूँ, मुझे टूटने की आदत है। विसाल में भी वही है, विसाल में भी वही है फिराक का आलम, कि उसको नींद मुझे रत जगे की आदत है। नमस्कार, आदाब। 90.8 FM पर रेडियो टांटिया भील और रेडियो SN के साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के हमारे अल्फाज से एहसास तक में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक हाथ में मुल्क की हिफाजत का परचम थामा तो दूसरे हाथ में कला और संगीत की रूहानी मशा। जी हाँ, आज के हमारे बेहद खास मेहमान हैं कर्नल VD सिंह साहब, लखनऊ के पार्क्स ऑर्केस्ट्रा के बेसिस्ट, भारतीय सेना के जांबाज अफसर, ऑल इंडिया रेडियो और TV के ग्रेट आर्टिस्ट, जोधपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट म्यूजिक कंपोजर अवार्ड विजेता और अपने पदार्थ स्टूडियो से टिबेटन जैज फ्यूजन रचने वाले कर्नल साहब का सफर डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी यानी कला का बेमिसाल संगम है। तो फिर बिना किसी देरी के आइए स्वागत करते हैं हम कर्नल साहब का। बहुत बहुत स्वागत है आपका कर्नल साहब अल्फाज से एहसास तक की इस महफिल में। आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए तशरीफ रखिए।
1: थैंक यू आरती फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ एसएन रेडियो का के जिसकी बदौलत मौका मिला आप सभी श्रोताओं के साथ बातचीत करने का। और मैं अपने आप को सिंगुलरली प्रिविलेज मानता हूँ कि आरती रॉय स्वयं मेरा इंटरव्यू ले रही हैं।
0: नो दैट वुड बी टू मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बिना किसी देरी के आइए कर्नल साहब, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपकी लाइफ के तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हमारे दूसरे सब दोस्त भी बेचैन हैं जानने के लिए। तो ये बताइए कर्नल साहब कि लखनऊ की शामें अपनी नफासत के लिए जानी जाती हैं, राइट? और वहीं स्कूल के दिनों में स्पार्क ऑर्केस्ट्रा बैंड से एक बेसिस्ट और वोकलिस्ट के रूप में आपके म्यूजिकल सफर का आगाज हुआ था, जैसा कि आपने बताया। उस दौर में स्टेज पर उतरने और पहला म्यूजिकल एक्सपोजर पाने का वो एक्साइटमेंट कैसा रहा होगा, पहले तो आप ये बताएंगे और साथ साथ ये भी बताइएगा कि लखनऊ की उस कल्चरल एनवायरमेंट ने आपके अंदर इस मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो आप हैं कलाकार को गढ़ने में कितना बड़ा रोल निभाया।
1: जी आरती, मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ लगभग 45 साल पुराना सफर, तो उस टाइम तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह बहुत ज्यादा होते नहीं थे जैसे आजकल होते हैं ना। हर जगह हर गली मोहल्ले में आपको एक ऑर्केस्ट्रा मिल जाएगा। लिमिटेड ऑर्केस्ट्रा होते थे और लखनऊ जैसे शहर में जहाँ पर की कल्चरल एक्टिविटीज आज से नहीं सैकड़ों साल से होती रही है, तो वहाँ पर एक इस किस्म का यानी ऑर्केस्ट्रा बनाना, हम 7 लड़के थे और यानी उसको एक बहुत ही हॉबी के तौर पे शुरू किया और बाद में हम प्रोफेशनल परफॉर्मर्स हो गए थे। वो उत्साह तो जैसा था जैसे कि पहली बार आसमान में पतंग उड़ाते हैं, यानी दिल में धड़कने भी तेज होती है, हाथों में आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं और रोशनी से भरा मंच होता है। तो लखनऊ की जो शाम जो है, जैसे कि सभी को पता है, वो अपनी नफासत और अदब के लिए मशहूर रही है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मेरा स्पार्क्स ऑर्केस्ट्रा था, देखिए नाम ही था स्पार्क्स,
0: वही तो।
1: कुछ ऐसी चीज करो कि इसका स्पार्क्स जो है वो पुरते हुए दिखाई दे। ये इस किस्म का अनुभव था। वैसे मैं आपको बताऊं आरती, के मंच के साथ साथ मेरा जो साथ है वो स्कूल के दिनों से रहा है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां भी मैं इस किस्म के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनमें भाग लेता रहता था। यानी स्टेज प्रोग्राम्स हुए, छोटे मोटे नाटक हुए, मोनो एक्टिंग हुई, ये सारी चीजें मैं करता रहता था। तो इसलिए घबराहट दिल में कम होती थी, यानी जब मेरा ऑर्केस्ट्रा बना। लेकिन एक ये एंग्जाइटी जरूर रहती थी कि वो सामने ऑडियंस बैठी है, 150-200 लोगों की ऑडियंस कम से कम
0: जी।
1: तो वो थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती थी कि भाई हमको बिल्कुल सही एक्यूरेटली बजाना है और हमारा जो हमारी जो कोर कॉम्पिटेंस थी मेरे ऑर्केस्ट्रा की वो थी रेट्रो म्यूजिक।
0: वाओ
1: जी। तो इस तरीके से शुरुआत करी, यानी ट्रांजिशन था ये, या तो स्कूल छोड़ के कॉलेज का ट्रांजिशन, यानी मैं बीएससी कर रहा था, मेरे बाकी साथी भी थे, मेरे से सीनियर भी थे, ओवरऑल हम सब लोग यंग बॉयज थे। और आपके आपका जो दूसरा पार्ट है कि कल्चरल एनवायरमेंट ने किस तरीके से यू नो मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, देखिए ऐसा आती कि मैं जब बहुत छोटा था स्कूल में, 4वीं-5वीं क्लास में मैंने हारमोनिका बजानी शुरू कर दी थी।
0: अच्छा।
1: और जी, और हारमोनिका मेरे पास एक चाइनीज माउथ ऑर्गन होता था, उस पर मैं गाने बजाता था पुरानी फिल्मों के।
0: अरे वाह।
1: इसके साथ ही साथ मुझको परकशन में भी शौक था, तो घर में जो प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते थे उनको उल्टा करके उस पर मैं बजाता था।
0: ओह माय गॉड।
1: गानों के साथ साथ इस तरीके से ये इस तरीके से शुरुआत हुई थी। और जब मैं शायद 10वीं-11वीं क्लास में आया था तब मेरे स्पेनिश गिटार बजाना शुरू किया। एंड ग्रेजुअली यानी इसमें आगे बढ़ते बढ़ते मैं बेस गिटारिस्ट बन गया, बेसिस्ट। बेस गिटार बजाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए गिटार बजाना आना जरूरी है। तो इस तरीके से साथों के साथ मेरी दोस्ती हो गई और माहौल बहुत अच्छा था, एक्सपोजर भी अच्छा मिला और एक बहुआयामी कलाकार का जो निर्माण है।
0: अच्छा।
1: उसके मेरे अंदर वो बनने में लखनऊ की सांस्कृतिक हवा ने काफी कुछ योगदान दिया है। तो मतलब सार यही है कि संगीत का असली जादू जो है वो विविधता में है, और ये उसी विविधता ने मेरे भीतर के कलाकार को एक मल्टी डायमेंशनल रूप दे दिया।
0: क्या बात है, बहुत खूब। लखनऊ के सुर और आपके बचपन का वो जुनून, तभी तो आप इतने अच्छे कलाकार बन पाए। बुनियादी तौर पे आप में सारा कुछ मुझे तो लगता है जेनेटिक ही था, नहीं तो 4-5 साल का बच्चा माउथ ऑर्गन बजाना शुरू कर दे, ये होता नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बताइए कर्नल साहब कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बतौर आप ग्रेड आर्टिस्ट आप सिलेक्ट हुए, ये हर कलाकार का सपना होता है। तो ये बताइए कि सेना की इतनी डिसिप्लिन लाइफ के बीच में रेडियो और टीवी के इन स्टूडियोज तक पहुंचने का ये अनुभव आपके लिए कितना रोमांचक रहा? और फिर इसी अनुशासन से जुड़ा अगला पहलू ये भी है कि एक फौजी अफसर की रिग्रेस मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान रियाज और सुरों के लिए वक्त निकालना, लाइक आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था, ये कैसे किया आपने?
1: जी देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं आरती कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर जो मैं ग्रेडेड आर्टिस्ट था, मैं डी ग्रेड आर्टिस्ट था, और ये फौज ज्वाइन करने के बहुत पहले था। यानी जब मेरा अपना खुद का बैंड था स्पार्क्स ऑर्केस्ट्रा, तो और बल्कि ऑल इंडिया रेडियो पे मेरी पहली प्रस्तुति हुई थी एज ए बाल कलाकार, जब मैं 5वीं या 6वीं क्लास में था
0: जी।
1: और लखनऊ ए आई आर के ऊपर, और जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था तब मैंने वहां पर एग्जाम दिया और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इन दोनों जगहों पर ही ग्रेड आर्टिस्ट बन गया। यानी फौज ज्वाइन करने के पहले 1986 में आई ज्वाइन दी आर्मी,
0: okay.
1: पहले ये सब हो चुका था, लेकिन ये शौक मेरा फौज ज्वाइन करने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। बस यही था कि जब मैं छुट्टी में आता था घर लखनऊ, तो मेरा ज्यादातर टाइम संगीत के साथ ही बीतता था। और इस तरीके से एक तरीके से बैलेंस बना के रखा, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन के लिए तो एक बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए ना, स्टूडियो के अंदर जाकर
0: बिल्कुल
1: गाना बजाना जो भी है
0: जी।
1: तो ये एक अनुशासन की जगह रचनात्मक और अभिव्यक्ति का भी एक जादू था जो कि मुझ पर हमेशा हावी रहा, स्टूडियो का अनुभव दूसरे हो गया ये चीज पे
0: जी।
1: और बाकी जो है सेना ज्वाइन करने के बाद भी ये चीज मेरी चलती रही, ये फिर सीमित हो गई छुट्टियों में।
0: ये बात तो बहुत सही है, मगर आपके ये बात तो माननी पड़ेगी ना कर्नल साहब के आपका डिसिप्लिन जो है वो हर हर हर हर पहलू में जिंदगी के कुछ भी समझने सीखने में अगर आप डिसिप्लिन हैं तो ये सब चीजें पे करती हैं, काम आती हैं। तो फौज की वर्दी में भी रियाज की लगन आपने बनाई रखी, ये वाकई एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है, बहुत खूब। तो इसी नोट पर आइए फिर सुनते हैं दोस्तों हमारे कर्नल साहब की गाई हुई जगजीत सिंह की ये गजल, कौन सी है आपने गाई, आवारा है गलियों में मैं और मेरी तन्हाई।
1: वाह
0: कितनी खूबसूरत गजल है। तो आइए कर्नल साहब हमारे दोस्तों के साथ हम सब मिलके सुनते हैं ये गजल।

0: वाह, बहुत खूब। जगजीत सिंह की जो आवाज थी और आपने जैसे उसको निभाया है, आपकी आवाज का ठहराव सीधे दिल को छू गया करना साहब। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने गाया है। कर्नल साहब, अब जरा बात करते हैं आपके अपने म्यूजिक स्टूडियो और साउंड डिजाइन के बारे में। आपने सिर्फ गाने ही नहीं गाए, बल्कि अपने घर में पदार्थ स्टूडियो बनाकर खुद को एक सेल्फ ट्रेन ऑडियो इंजीनियर और फ्रीलांस कंपोजर के रूप में भी निखारा। एक सिंगर के तौर पर सीधे माइक पर गाना और एक साउंड इंजीनियर के तौर पर बारीक साउंड डिजाइन्स करने के इस ट्रांजिशन को आप कैसे देखते हैं? और फिर ये भी कि इसी स्टूडियो वर्क की बात करें तो टेक्नोलॉजी और सोलफुल आर्टिस्ट्री यानी रूहानी एहसास का बैलेंस आप अपनी धुनों में कैसे बनाते हैं? यानी आप साउंड इंजीनियर भी हैं और आप गाते भी हैं, तो ये सारा तालमेल आप कैसे बिठाते हैं?
1: देखिए, अभी कॉलेज के दिनों में जब जब मेरा अपना ऑर्केस्ट्रा था, स्पार्क्स ऑर्केस्ट्रा, तो हमको AIR और दूरदर्शन के अलावा प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स में भी कॉन्ट्रैक्ट मिला करता था। यानी जो लोग अपनी प्राइवेट सॉन्ग्स गाने की वहां पर स्टूडियो वगैरह हायर करके लेते हैं, तो हमको एज अ म्यूजिशियन वगैरह बुक करते थे। लेकिन जब भी मैं जाता था अभी, तो मुझे एक शौक रहता था कि शीशे के उस पार क्या हो रहा है, यानी कंट्रोल रूम जिसको हम बोलते हैं, और वो जो मेरी जिज्ञासा रहती थी अबाउट साउंड इंजीनियरिंग। मेरे पास कोई भी, मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, ना तो संगीत में है ना ऑडियो इंजीनियरिंग में।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं सेल्फ मेड ऑडियो इंजीनियर और सेल्फ मेड कंप्यूटर।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जी, तो मैं अपने आप को किसी भी लेवल पर नहीं रखता हूँ। बहुत एक से दिग्गज लोग पढ़े हैं और हर रोज मैं कोई ना कोई चीज सीखता रहता हूँ। तो ये जो ट्रांजिशन था मेरा, ये बहुत ही दिलचस्प रहा। देखिए, सिंगर के तौर पर सीधे माइक पे गाने का मतलब है कि आप भावनाओं को सुरों में ढाल रहे हैं, श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर जो आपका ध्यान जो है वो आपके एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति पर होता है, आवाज की ताकत, सुर की शुद्धता, प्रस्तुति की ऊर्जा। लेकिन मैंने 2009-10 के आसपास, उस वक्त मैं दिल्ली में पहुंचे था आर्मी हेडक्वार्टर्स में, उस टाइम पे मैंने घर में एक एक स्टूडियो बनाया, उसका नाम रखा पदार्थ। तो लोगों ने कहा ये यार ये क्या नाम रखा मैंने, पदार्थ। तो देखिए, थोड़ा सा मेरा फिलोसॉफिकल एंगल रहा है जिंदगी में। मैंने कहा भाई, पदार्थ का मतलब होता है सब्सटेंस, और म्यूजिक को भी मैं एक सब्सटेंस मानता हूँ।
0: ओके,
1: तो एक सेल्फ ट्रेन ऑडियो इंजीनियर और फ्रीलांस कंपोजर के रूप में मैंने इस तरीके से काम करना शुरू किया घर में ही, जब जब यानी वीकेंड पे टाइम मिला। तो सरकारी फ्लैट था बड़ा सा, 3 BHK का, उसको एक रूम को मैंने बना दिया पदार्थ स्टूडियो।
0: स्टूडियो,
1: तो बात यहाँ पर सिर्फ गाने पर नहीं रहती थी, बल्कि हर ध्वनि की बारीकी पर, जैसे कि इक्वलाइजेशन, कंप्रेशन, रिवर्ब, स्टीरियो इमेजिंग, ये सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं ऑडियो इंजीनियरिंग की, जो जो कि मैंने एक्चुअली 80s में जब मैं काम करता था प्राइवेट स्टूडियोज में, तो मैं थोड़ा सा टाइम ऑडियो इंजीनियर के साथ बिताता था और मैं कहता था सर मुझे भी आप कुछ काम सिखाइए और मैं इस चीज को, हाँ मैं इस चीज को करूंगा, आपको असिस्ट करूंगा। वो चीजें मुझे काफी इससे मुझे फायदा मिला। और गायक के रूप में तो खैर मैं भावनाओं को सुरों के अंदर डालता था, लेकिन इंजीनियर ग्रुप में मुझे ये देखना पड़ता था कि वो जो एक्सप्रेशन है तकनीकी रूप से साफ और असरदार सुनाई दे। तो ये इस किस्म का बदलाव ये सिखाता रहा है कि संगीत सिर्फ गाया नहीं जाता बल्कि गढ़ा भी जाता है। हर लेयर, हर टेक्निकल टच मिलकर एक संपूर्ण अनुभव बनाते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि गायक होना एक नदी की तरह है, भावनाएं सीधी बहती हैं बिना किसी रोक टोक के, लेकिन साउंड इंजीनियरिंग करना उसका मतलब है उस नदी को बांधकर, नहरों में मोड़कर, हर बूंद को सही दिशा देना है। जब ये दोनों मिलते हैं तो संगीत एक संपूर्ण अनुभव बन जाता है।
0: क्या
1: तो गायक दिलों से सुरों को बहाता है, इंजीनियर उन सुरों को आकार देता है, श्रोताओं तक एक सुंदर रूप में पहुंचाता है। तो इस तरीके से तकनीकी और रूहानी एहसास का एक बैलेंस बनाना मेरे लिए एक तरीके से एक मेडिटेशन रहा है शुरू से, यानी संगीत की साधना। तो टेक्निकल पक्ष मैंने आपको बता दिया, रूहानी एहसास का पक्ष भी है, और इन दोनों के बीच में एक संतुलन बना के
0: जी।
1: तो हर ट्रैक को वैसे देखता हूँ जैसे कि कोई संवाद हो, यानी तकनीक उस संवाद को साफ और सुंदर तरीके से बनाती है और रूहानी इसे एक मीनिंग देता है। अगर दोनों में से कोई भी कमजोर हो जाए तो संगीत अधूरा रह जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात के लिए। आपने जिस तरीके से इसको बयान किया है मैं समझ पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी नॉलेज आपने बहुत वसी किया इसको, इसके बारे में मुझे भी पता चला। तकनीक और दिल का ऐसा संगम हर कंपोजर के बस की बात नहीं होती कर्नल साहब, ये आपकी कड़ी मेहनत को दिखाता है, ऐसे ही हासिल नहीं कर लिया होगा आपने। बहुत सुंदर, बहुत खूब, आपसे बातचीत करके बहुत मुझे भी बहुत नॉलेज मिल रहा है। तो इसी नोट पर अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कर्नल साहब के साल 2020 में जोधपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपकी शॉर्ट फिल्म स्कोर है, स्कोर पिक्चर का नाम है, मतलब आपकी शॉर्ट फिल्म का नाम है ना स्कोर के लिए बेस्ट म्यूजिक कंपोजर अवार्ड से आपको नवाजा गया। जब एक आर्मी ऑफिसर की कंपोजिशन को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऐसा मुकाम मिलता है तो वो लम्हा आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा, और इस रिकग्निशन के बाद एक म्यूजिक कंपोजर के रूप में आपकी सोच और काम करने की अप्रोच, आपकी क्रिएटिव अप्रोच में क्या नया बदलाव आया फिर उसके बाद कर्नल साहब?
1: आरती, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जिस फिल्म के लिए मुझको बेस्ट कंपोजर का ये अवार्ड नवाजा गया था उस फिल्म का नाम था क्वीन, और ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया में बनी थी। मेरे बचपन के मित्र और बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर हैं श्री विवेक कुमार, जो कि मेलबर्न में रहते हैं, तो उन्होंने ये शॉर्ट फिल्म बनाई। हम दोनों ने पांचवी क्लास से लेकर हायर स्टडीज सब साथ साथ करिए लखनऊ में, उसके बाद वो वहां से देश छोड़ के चले गए, फिर ऑस्ट्रेलिया में बस गए। बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, तो उन्होंने जब ये फिल्म बनाई थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई मुझे ये शॉर्ट फिल्म है और उसके लिए मुझे बहुत यूनिक किस्म का म्यूजिक चाहिए। मैंने ये कहा कि मैंने विवेक जी, मेरे पास कोई भी फॉर्मल डिग्री नहीं है इसके बारे में, और किसी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बनाना, तो ये बैकग्राउंड स्कोर जो जिसको बोलते हैं फिल्म का बैकग्राउंड, इसमें ना कोई गाना था ना कुछ था, पर फ्रेम का एक एक्सप्रेशन जो था वो उसको बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत थी। तो इस मैंने बनाया, ये लगभग आधे घंटे की फिल्म थी और कई देशों में इसकी यानी इसका मंचन किया गया और फिल्म का टाइटल था क्वीन। तो एक आर्मी अफसर के और यानी मेरी जो पहचान है वो अनुशासन और जिम्मेदारी से हमेशा जुड़ी रही है, लेकिन जब ये मेरी शॉर्ट फिल्म का तरह शुरू किया, ये बात है 2018 यानी मेरे रिटायरमेंट की बात है ये।
0: ओके, ओके।
1: तो गर्व का एहसास भी है क्योंकि मेरे साथ बहुत से ऐसे फौजी हैं जिन लोगों ने इस चीज को एक अलग से रिकग्निशन दी। उन्होंने कहा कि भाई वाह, कर्नल साहब आपने इस किस्म का भी काम कर दिया। और जो हम सबके सपने होते हैं किसी भी चीज के लिए इसका रिकग्निशन मिले, तो जो पुरस्कार मुझको मिला जोधपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो उस पुरस्कार ने साबित कर दिया कि भाई अनुशासन और जुनून मिलकर किसी भी सपने को हकीकत बना सकते हैं। और संगीत की भी शक्ति है, ये हमेशा याद दिलाता रहता है कि संगीत जो है वो सीमाओं से परे है, तो वो एक आर्मी ऑफिसर को कलाकार भी बना सकता है और धुनों को दुनिया तक पहुंचा सकता है। तो वो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था और बड़े जुनून के साथ उसको किया, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सच प्रोजेक्ट्स इवन मोर।
0: बहुत खूब। अवार्ड्स तो आपकी प्रतिभा पर मोहर लगा देते हैं कर्नल साहब, लेकिन मतलब करने का काम जुनून फिर बढ़ता ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी नोट पर अब आपकी हम दूसरी गजल सुनते हैं, अपने दोस्तों को सुनाते हैं। आपने जो हमें खूबसूरत सी ये गजल मिर्जा गालिब की गाकर भेजी है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो आइए दोस्तों, कर्नल साहब की खूबसूरत सी आवाज में मिर्जा गालिब की ये गजल सुनते हैं।

0: जगह है जहाँ पर जाकर ही अनुभव किया जा सकता है कि वो बहुत ही मिस्टिक किस्म की एक जगह है।
1: ये
0: मुझे शुरू से ही संगीत में और फिलोसफी इन सब में बड़ा ही शौक रहा है। वहाँ जाने के बाद मुझे मौका मिला, मैं लेह में पोस्टेड था लेकिन मैं पूरे लद्दाख में घूमा, तो वहाँ पे अक्सर मैं क्या करता था कि जो वहाँ की मोनास्ट्रीज है जहाँ पर बुद्धिस्ट लामा बैठ के एक्सर प्रेयर करते हैं, और मैं आपको बताऊं आरती के बहुत ही सुखद अनुभव होता है उनका जो तिब्बतन मंत्र का उच्चारण करके जब करते हैं, सिंपल होता है लेकिन वो आपको यानी अंदर से हिला के रख देते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। जी एवरीथिंग इज अबाउट यू नो फिजिक्स ऑफ साउंड, फिजिक्स ऑफ साउंड के ऊपर वो बहुत काम करते हैं और उनकी बड़ी ही डीप उनकी वॉइस होती है जिसको मैंने प्रैक्टिस किया बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करके मैंने उनका जो उसको बोलते हैं थ्रोट सिंगिंग। लेकिन थ्रोट सिंगिंग एक ऐसी चीज होती है अर्थी कि आप एकदम से किसी को बोलो तो शुरू नहीं कर सकता, उसके लिए हमको अपने गले को प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी वो आवाज जो है एपिग्लॉटिस से निकलती हुई बाहर आती है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की चीज होती है जी। और ये प्रथा हजारों साल पुरानी है, मंगोलिया से शुरू हुई थी एक्चुअली। तो तिब्बतन जैज फ्यूजन वाली जो बात आती है वो ऐसे आती है कि जब उनका म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा जो झुकाव रहा है वो वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ रहा है, स्पेशली जैज म्यूजिक की तरफ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो तिब्बतन म्यूजिक है इसको इस प्रकार से पेश किया जाए लोगों को कि लोगों को समझ में आए और लोगों को अच्छा लगे सुनने में, यानी ड्राई ना लगे
1: जी।
0: क्योंकि वहां का जो म्यूजिक है वो बड़ा ही कंजर्वेटिव म्यूजिक है, वो मोनास्ट्री की चार दीवारें से बाहर बहुत कम निकलता है
1: जी।
0: तो मेरी लद्दाख की पोस्टिंग में ये मेरी जिंदगी के अंदर सबसे अच्छा अनुभव हुआ कि उस वो जो मेडिटेटिव साउंड्स थे उनको और वेस्टर्न म्यूजिक को मिक्स करके मैंने एल्बम तैयार की। और 2023 अगस्त में ये रिलीज हुआ लगभग 10 या 12 अलग अलग प्लेटफॉर्म से, नॉट ओनली स्पॉटिफाई और एप्पल, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसको जी इसको लॉन्च किया गया। और ये मेरी मौलिक रचनाएं हैं, यानी ये कोई फिल्मी म्यूजिक नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ, खुद का प्ले किया हुआ। मेरी जी जी जो स्टूडियो में सभी कुछ मैं करता हूँ, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ, तो उनका इस्तेमाल करके मैंने यानी इस चीज को एक जन्म दिया। सो दिस बिकेम वेरी फेमस एक्चुअली। और संगीत तभी जीवित होता है जब वो सीमाओं को तोड़कर आत्मा और तकनीक दोनों को जोड़ दे। देखिए संगीत बहुत से लोगों के लिए मनोरंजन है लेकिन संगीत मेरे लिए एक आत्मरंजन भी है, गिव्स प्लेजर एक अलग किस्म का। तो इस तरीके से जो है
1: जी, आत्मरंजन ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है वाकई, सब लोग नहीं ऐसे समझते। बहुत खूब बहुत खूब आत्मरंजन, मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा ये वर्ड फ्यूजन म्यूजिक में इतना रूहानी सुकून घोल देना कर्नल साहब, ये सबके बस की बात नहीं है। और आप जिस तरीके से इतनी तफसील से इसके बारे में आपने जैसे बताया तो वाकई महसूस हुआ कि वाकई एक बड़ी अद्भुत रूहानी एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने कितना कितनी महारत से आपने इसको अपनाया है अपने अंदर। बहुत खूब।
0: आप इससे पहले कि आपको एक चीज और मैं बता दूं इन एडिशन कि इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यानी मैंने बजाए हैं, अगर हाँ, कोई सुनेगा इस एल्बम को, इसमें 10 इंस्ट्रूमेंटल नंबर हैं। और इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाए उनके यानी तिब्बतन इंस्ट्रूमेंट्स के सैंपल्स का इस्तेमाल किया है मैंने। हाँ, ये सब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है बेसिकली, लेकिन मैंने कीबोर्ड से अपने हाथों से खुद बजाया है। और ये जो जी तो ये तिब्बतन इंस्ट्रूमेंट के सैंपल्स मेरे पास हैं, उनको मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर बजाया। और जी जी
1: मतलब इतनी ऑथेंटिक है वो सारी चीजें, वेरी नाइस
0: जी जी, बिल्कुल मेरा कॉपीराइट है वो।
1: अच्छा आप हमें ये बताइए कि आप लद्दाख म्यूजिकल फेस्टिवल में हर साल आपकी परफॉर्मेंस वहाँ के पहाड़ों और वादियों में गूंजती है, आप हर साल वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं, लद्दाख जैसी जादुई जगह पर जहाँ फ्रीजिंग कंडीशंस के बीच शून्य से नीचे के तापमान के बीच स्टेज पर गाते और बजाते हुए माहौल कितना रूहानी और एनर्जेटिक हो जाता है। और ये भी बताइए कि इसी लाइव परफॉर्मेंस की बात करें अगर तो एक स्टूडियो में

0: बैठ कर रिकॉर्ड करने और लद्दाख की खुलूस भरी फजा में लाइव गाने के बीच में आपको क्या बड़ा फर्क नजर आता है?
1: ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, लद्दाख म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह होता है वो ऐसे टाइम पर होता है जब बाहर के जो टूरिस्ट लोग आके उसको देख सके।
0: जी,
1: मैंने जो 2 साल का अपना फौजी जीवन व्यतीत किया है वहाँ पे, लद्दाख में सर्दियों के टाइम बहुत ठंड होती है, सियाचिन में -55 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, लेह के अंदर -20-25 तक रहता है।
0: जी,
1: ऐसे माहौल में मैं रहा हूँ।
0: जी,
1: और जब वो टूरिस्ट सीजन शुरू होता है मई से लेके अक्टूबर के बीच में, तभी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं क्योंकि बाहर के लोग झेल नहीं पाएंगे वहाँ का एक्सट्रीम वेदर।
0: जी,
1: तो मैंने यानी जब मैं वहाँ पे पोस्टेड था आरती इवन तब भी मैं परफॉर्म करता था वहाँ पे वीकेंड्स पर, यानी मैं उस वक्त फौज में कार्यरत था, तभी मैं परफॉर्म करता था वहाँ पे वीकेंड्स पर। ओपन एयर रेस्टोरेंट है वहाँ पर, ज्यादातर फॉरेनर्स आते हैं वहाँ पर और उनको बहुत अच्छा लगता है हमारा यानी जो इंडियन स्टाइल वगैरह जो होता है वहाँ पे। फॉरेनर्स आते थे, मुझे अच्छे से याद है इजरायली ग्रुप आया था वहाँ पे, उनके साथ मैंने जैम किया था और मैंने इजरायली गाना ही गाया था, हवा नागीला, इट्स अ वेरी फेमस इजरायली नंबर, हिब्रू में गाया हुआ है।
0: Okay.
1: तो मैं अलग अलग लैंग्वेजेस भी मैंने कोशिश करी है सीखने की और उसमें गाने की। तो उस टाइम पे जब हम परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम का जो वेदर होता है वो ठीक ठाक रहता है, मतलब नहीं तो क्या होगा, आप खड़े खड़े जम जाएंगे, बर्फ हो जाएगी आपके पूरा शरीर। तो ये अगस्त सितंबर के आसपास का पीरियड होता है जब हम वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, हालांकि ठंड तो तब भी होती है, लेकिन ये है कि शून्य के नीचे नहीं जाता है तापमान और उससे हमारे परफॉर्मेंस पे असर नहीं आता है।
0: ठीक है।
1: और जी जहाँ तक है एनर्जी और रूहानी सुकून, वो तो ठंड के बावजूद भी जब गाना बजाना शुरू करते हैं तो एक अंदर से खून का जो संचार होता है वो जबरदस्त शुरू हो जाता है और एक अलग ही वॉर्म्थ महसूस होती है। फिर दर्शकों की तालियां, पहाड़ों से जो एको होता है, वो सारी चीजें, वो एक अलग ही अनुभूति होती है। और तो मेरा मतलब अनुभव इस बात का प्रतीक है कि संगीत और प्रकृति जब मिलते हैं तो खाली सुना ही नहीं जाता बल्कि उसको महसूस किया जाता है। और आपका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन के कि लाइव परफॉर्मेंस वर्सेज रिकॉर्डिंग इन अ स्टूडियो, ये दोनों चीज में बड़ा फर्क होता है,
0: बहुत फर्क है।
1: तो देखिए स्टूडियो में तो हर चीज जो है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, नियंत्रित होता है, माइक की दूरी है ना, ध्वनि का संतुलन वगैरह सब। लाइव परफॉर्मेंस गाना वो भी लद्दाख की वादियों में एक अलग ही किस्म के, क्योंकि वहाँ के साउंड इंजीनियर अलग होते, मैं अपने साथ एक साउंड इंजीनियर ले जाता हूँ, हालांकि ओवरऑल कंट्रोल मेरा ही रहता है उस पर।
0: अच्छा।
1: जो मिक्सिंग कंसर्न होता है, लेकिन हाँ क्योंकि मैं स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ तो एक चाहिए कोई ना कोई साथ में, तो एक ट्रेड साउंड इंजीनियर होता है, तो वहाँ की हवाएं भी चलती रहती हैं तो उनसे डिस्टर्बेंस ना पैदा हो, ये वो सारी टेक्निकल चीजें, तो वहाँ के उस माहौल की वजह से शुरू को गहराई मिलती है। फिर वहाँ के जो ऑडियंस है उनकी ऊर्जा और तालियां हर धुन को एक जीवंत बना देती है, और ये आप कह सकते हैं कि प्रकृति की प्रतिध्वनि संगीत को एक आध्यात्मिक रूप दे देती है, मानो कि हर सुर उन घाटियों में ठहर कर ध्यान बन जाता है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि स्टूडियो में संगीत कैद होता है जबकि लाइव परफॉर्मेंस में संगीत मुक्त होकर बहता है। स्टूडियो टेक्निक से परफेक्ट ध्वनि बन जाती है, लेकिन लद्दाख के अंदर भी मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है पदार्थ स्टूडियो, उसमें वहाँ की लाइव रिकॉर्डिंग्स भी हैं, अगर कोई देखना चाहे तो जरूर देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है पदार्थ स्टूडियो।
0: ओके ओके।
1: तो आप देखेंगे उसमें भी यानी मैं वहाँ से कलाकार लेके आता हूँ बॉम्बे से दिल्ली से एज क्रिएटिव डायरेक्टर, और पुरानी पुरानी फिल्मों के तो सारी चीजों को मैं दोबारा फिर से रीअरेंज करता हूँ, लोग गाते हैं और बड़ा मजा आता है। तो आप सोचिए 14-15 हजार फीट से, बल्कि सियाचिन बेस तक मैं इस आर्टिस्ट को ले जा चुका हूँ आरती, 2021 की बात है ये, और उन लोगों ने कहा कि सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें कोई फीस वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि आरती जब बाहर जाते हैं उनको चाहिए होता है ना कुछ, कहने हमको तो मतलब उनको तो वापस जाने की इजाजत ही नहीं मिलती, तो सारा अरेंजमेंट करा के उनको आई मेड देम परफॉर्म एट सियाचिन बेस, वहाँ पे ऑडियंस क्या थी, फौज और हमारी इंडियन एयरफोर्स, तो जितने भी फौजी भाई थे उनको बड़ा अच्छा लगा लाइव म्यूजिक इतने हजार फीट के ऊपर, उनके लिए लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इससे बड़ा दिल में सेटिस्फेक्शन पहुंचता है।
0: सही बात, उनके ही रोमांच हो रहा है इतना। मैं मतलब आई एम फीलिंग लाइक क्या चीज, क्या से मतलब मैं आई कैन विजुलाइज, क्या बात है, क्या बात है, क्या जज्बा है आप में, बहुत खूब। लद्दाख की वादियों में सुरों का गूंजना, और ये वाकई अपने आप में एक स्पिरिचुअल एहसास है, मतलब इतना कनेक्ट हो जाता है बंदा म्यूजिक के साथ और उस डिवाइन के साथ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो आइए फिर इसी नोट पर कर्नल साहब आपकी गाई हुई ये प्रोग्राम की तीसरी गजल सुनते हैं, जो आपने बहुत प्यार से गाकर हमें भेजी है। गम बड़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे दोस्त गुनाहों की तरह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो आइए फिर ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये गजल सुनते हैं।

0: वाकई बहुत खूबसूरत, कितनी खूबसूरत, क्या ठहराव है आपकी आवाज में, और ये गजल को कितने खूबसूरती से आपने निभाया है, बहुत खूबसूरत। कर्नल साहब, संगीत के अलावा भी आपकी पहचान के कई और आयाम हैं, जैसे कि संगीत के अलावा आप टीवी पैनल्स पर नेशनल सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी जैसे संजीदा मुद्दों पर भी एक एक्सपर्ट के रूप में आप विचार रखते हैं। दिमाग के इस एनालिटिकल इंजीनियरिंग साइड और म्यूजिकल यानी क्रिएटिव म्यूजिक साइड के पहलुओं के बीच में आप ये इतना बैलेंस कैसे बनाते हैं, और इन दोनों अलग अलग फील्ड के अनुभवों ने आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को कितना निखारा है?
1: बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया हार्दिक। देखिए, मेरे लिए दिमाग के एनालिटिकल इंजीनियरिंग या टेक्निकल साइड और क्रिएटिव म्यूजिक साइड के बीच में बैलेंस बनाना एक तरीके से दो दुनियाओं का संगम है। एनालिटिकल साइड की अगर बात करते हैं तो मैं नेशनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग विषयों पर टीवी पैनल्स में बोलता हूँ, तो वहां पर तर्क, डेटा और एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ये हिस्सा अनुशासन और लॉजिक पर आधारित है। आप कोई भी चीज लॉजिकल नहीं बोल सकते, हर विचार को तथ्य और विश्लेषण के साथ उसको और मजबूत होना पड़ता है। जहां तक क्रिएटिव साइड की बात है तो संगीत और स्पिरिचुअलिटी में काम करते करते मैं भावनाओं और कल्पनाओं को प्राथमिकता देता हूँ, वहां इम्प्रोवाइजेशन।

0: जीवन के संदर्भ में भी देखने की क्षमता देती है। तो मेरे लिए ये संतुलन या ये बैलेंस इस बात का प्रतीक है कि दिमाग और दिल जब एक साथ काम करते हैं तभी विचार और धुनें ये दोनों असरदार बनते हैं। और आपका जो सेकंड पार्ट है कि दो अलग अलग फील्ड के अनुभव ने ओवरऑल पर्सनैलिटी को किस तरीके से यानी शेप दिया, तो मैं आपको बताऊं कि ये दोनों अलग अलग क्षेत्र फौजी अनुशासन और संगीत या स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी ने मिलकर मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक बहुत अलग तरीके से शेप दिया है, जिसमें ये अनुशासन और दृढ़ता है, उसमें रचनात्मकता और संवेदनशीलता भी है,
1: बिल्कुल
0: उसमें एक बैलेंस है और मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव है, और लीडरशिप और प्रेरणा। इन अनुभवों ने मुझको ये सिखाया कि इंसान सिर्फ एक भूमिका तक ही सीमित नहीं होता है, वो अनुशासन और कला दोनों को जी सकता है और दूसरों को यानी मोटिवेट भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी पर्सनैलिटी सिर्फ एक फौजी ऑफिसर या संगीतकार की ही नहीं रही है, बल्कि इट इज अ काइंड ऑफ अ सिंथेसिस जहाँ अनुशासन रचनात्मकता मिलकर एक संपूर्ण इंसान का रूप करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था जो कि मैंने पूरा डिजाइन किया था, एंड इट वाज ऑन सिंथेसिस, जो कि एक मैंने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वीना फैमिली के लिए किया था, और ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, पॉडकास्ट ऑन सिंथेसिस।
1: बहुत खूबसूरत। मैं एक्चुअली स्पेलबाउंड हो जाती हूँ आपकी बातें सुनते। आप जिस तरीके से समझाते हैं विज्ञान, तकनीक, सुरक्षा और संगीत, आपकी ये मल्टी डायमेंशनल जो प्रतिभा है सच में बहुत इंस्पिरेशनल है कर्नल साहब। मतलब इट्स नॉट इजी टू कैरी ऑल दीज एस्पेक्ट यू नो टुगेदर, और आपने कितनी खूबसूरती से इनको लेकर साथ चले हैं आप, बहुत खूबसूरत। तो आइए अब इसी नोट पर सुनते हैं आपकी गाई हुई ये गजल, अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हूँ मुझे डूब के मर जाने दे। अपने दोस्तों के साथ सुनते हैं ये गजल।

0: बहुत खूबसूरत गजल की मिठास पूरे माहौल में पूरी तरह से घुल चुकी है। अब हम अपनी इस सुहानी महफिल के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आपका मुख्य जॉनर तो जैज, वेस्टर्न, रेट्रो म्यूजिक रहा है, फिर गजल गायकी के इस बेहद संजीदा, मखमली और ठहराव भरे संसार में आपका ये सफर, आपकी ये ट्रांजिशन कैसे शुरू हुई? और फिर मेरा ये भी आपसे पूछना है कि सेना की इतनी डिसिप्लिन जिंदगी से लेकर संगीत के इतने अलग अलग रंगों को जीने के बाद जिंदगी का आपका सबसे बड़ा यानी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है? और जाते जाते रेडियो टांटिया भील और रेडियो एसएन के हमारे सुनने वाले लिसनर्स के लिए आपका क्या खास पैगाम है ये भी बताइएगा।
1: आखिरी क्वेश्चन जो आता है वो बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की। तो देखिए, अनुशासन और रचनात्मकता, इनका संगम मैं कर पाए क्योंकि फौज ने मुझको एक डिसिप्लिन लाई दी, संगीत ने स्वतंत्रता दी विचारों को प्रकट करने की। ये दोनों मिलकर ये सिखाता है कि जीवन हमारा तभी पूर्ण होता है जब कठोरता और लय साथ साथ चले। और 360 डिग्री, आजकल तो ये सारी टर्म्स बड़े कॉमन हो गए, 360 डिग्री जो एक्सपीरियंस है, तो वो अनुभव चाहे युद्ध भूमि का हो या स्टेज का हो, वो हमारे जीवन को समृद्ध करता है
0: जी।
1: कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो किसी ना किसी रूप में हमारी पहचान बढ़ता है
0: जी।
1: कर्म और आनंद का संतुलन, काम को कर्तव्य की तरह करना और कला को आनंद की तरह जीना, ये भी बैलेंस है जो कि जीवन को सार्थक बनाता है। साझेदारी और विरासत, संगीत और सेवा दोनों ही साझा करने के लिए है, तो जो कुछ सीखा उसे समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना ही मेरे लिए असली उपलब्धि है। अब हाँ तो मतलब मेरी बेसिक फिलोसफी यही है कि हर क्षण को एक रचना मानकर चलो
0: जी।
1: कभी वो अनुशासन की धुन होगी तो कभी स्वतंत्रता का सुर होगा, और जब ये मिलेंगे तो जीवन एक संपूर्ण संगीत बनता है। रही बात गलतियों से मेरा रिश्ता, तो ये ऐसा ही है जैसे कि कोई पुराना दोस्त समय के साथ दिल के और करीब आ जाता है। शुरुआत तो मेरी गजलों को समय की शुरुआत तो बचपन से थी, क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और उसी माहौल में पला बड़ा हूँ। लखनऊ की महफिलों में गजलें सुनने का मौका मिलता था, वहाँ की तहजीब, अदब ने गजल को सिर्फ एक संगीत ही नहीं बल्कि एक दिल की जुबान भी बना दिया, क्योंकि गजल इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन होता है
0: जी।
1: और फौजी लाइफ में भी अनुशासन और जिम्मेदारियों के बीच में भी गजलों का एक सुकून था। हमारे ऑफिसर्स मेस के अंदर तमाम फंक्शंस होते रहते थे, जब मैं लेफ्टिनेंट था तब से, और तो उनको पता था कि भाई हमारे बीच में लखनवी बंदा आया हुआ है। और फॉर्चुनेटली मेरा डिक्शन बहुत क्लियर रहा है शुरू से, क्योंकि उर्दू में डिक्शन का एक बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, तो वो भी जरूरी होता है। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा आपके साथ यानी पूरी तरीके से उसके साथ मैं जस्टिस कर लेता था और गहराई नहीं होता। देखिए, जैज और फ्यूजन के साथ प्रयोग करते करते करते मैंने ये महसूस किया कि गजल की नजाकत और उसकी लयबद्धता जो है वो मॉडर्न संगीत से भी बहुत खूबसूरती से जुड़ी जा सकती है। आपने जो कुछ मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है जो मैं इसमें अभी जो बजा रही हूँ, वो मैंने अपने स्टूडियो में ही किया है। तो यही मतलब वो पल था जब गजलें मेरी एक क्रिएटिविटी यात्रा का स्थायी हिस्सा बन गई। आज का नजरिया यह है कि गजल मेरे लिए एक सिर्फ एक विधा ही नहीं है बल्कि जिंदगी का आईना है, उसमें दर्द है, उम्मीद है, इंसानी तजुर्बे की गहराई भी है। और यानी मैं अपनी तरफ से कुछ एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि सफर की झलक है लखनऊ की गलियों से लेकर फौज की वर्दी और फिर दुनिया से संगीत की दुनिया तक। तो अगर उसको मैं समअप करूँ चलते चलते कुछ एक लाइनों में, बहुत ही इजी शब्दों में, तो मैं ये कहूंगा कि लखनऊ की गलियों से सुर उठे थे, फौज की वर्दी में दिल गुनगुनाए थे, जैस की दोनों में दर्द भी समाया, गजल के हर शेर ने मुझको सुकून पहुंचाया, पुरस्कारों की राह में सफर सवरा, हड़ताल में जिंदगी का रंग उतरा, और अब अंबाला की शामों में सुर सजते हैं, गजलें दिल की जुबान बन कर बहते हैं। अनुशासन हमको मजबूत बनाता है, क्रिएटिविटी हमको स्वतंत्रता देती है और आनंद हमें जीवन का असली स्वाद चखा देता है। चलते चलते मेरा संदेश यही है कि भाई अपने जीवन को एक धुन की तरह जीना सीखो, हर सुर को अपनाओ, हर ताल को महसूस करो और हर पल को एक रचना बना दो।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कन्हा साहब, आज अल्फाज से एहसास तक की महफिल में पधार कर आपका ये अनोखा अनुभव आपने हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज कर्नल वीडी सिंह साहब से बात करके ये एहसास और पुख्ता हो गया कि एक सच्चा सैनिक सिर्फ सरहद की हिफाजत ही नहीं करता बल्कि अपनी कला और सुरों से दिल को भी जोड़ता है। आज की इस जांबाज और रूहानी महफिल के नाम अल्लामा इकबाल साहब का ये बुलंद और अमर शेर नजर करती हूँ। निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। यानी निगे बुलंद, जिसकी सोच और नजर हमेशा ऊंची और बुलंद हो। सुखन दिल नवाज, जिसकी बोली और आवाज में दिल को छू लेने वाली मिठास हो। और जहाँ पुरसोज, जिसके दिल में जुनून जज्बा और लगन की आग जलती हो। किसी भी कारवां की रहनुमाई करने वाले सच्चे रहबर और जाबाज इंसान का असल सरमाया ये तीनों चीजें होती हैं। इसी सुंदर ख्याल, बुलंद हौसले और उम्मीद के साथ अब आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय आपसे चाहती है इजाजत। कल फिर मिलूंगी इसी वक्त किसी और नए एहसास के साथ, किसी और नए अल्फाज के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो टांडिया भीड़ और रेडियो SN, और मुस्कुराते रहिए, देश का सम्मान भी कीजिए दोस्तों और अपना खूब ख्याल रखिए। शबा खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे। जय हिंद,
1: जय हिंद।
2: तो दोस्तों, गजलें खत्म हो जाती हैं लेकिन उनके अल्फाज और एहसास हमारे साथ ही रह जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कुछ नई और कुछ दिल के करीब गजलों के साथ। आरती जी फिर से हाजिर होगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: 92.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: હું છે આરજે રાકેશ.
2: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
1: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડ, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. નમસ્કાર કિસાન ભાઈઓ, સ્વાગત છે તમારો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. હું છે આરજે રાકેશ અને રોજની જેમ તમારી વસમાં આજ ફેર કાર્યક્રમ ખેતીવાડી લઈને હાજર થયો છે. અને કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી વસમાં ખેતીવાડી દેખા જોડાયેલા મુદ્દા, ખેતીવાડીની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાતો લઈને રોજ એના જ સમય પર હાજર થતો રહું છે. અને કિસાન ભાઈઓ, આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપું વાતો સાંભળવાના છે કડકનાથ મુરગી પાલનની. એ બધી વાતો આપું વતાડશે કડકનાથ મુરગી પાલનના વિશેષજ્ઞ અને એવા કિસાન ભાઈ ત્યાં કડકનાથ મુરગી પાલન કરીને અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ રહ્યા છે. હાથે હાથ બધી જાણકારી આપું વતાડશે મારો સહયોગી ભાઈ કમતા ડામોર, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ઝાબવાના સહયોગ દેખી. તો કિસાન ભાઈઓ, આજનો કાર્યક્રમ ઘણો મહત્વપૂર્ણ છે. આજના સમય હારું અને કૃષિના ક્ષેત્રમાં સ્ટાર્ટઅપ હારું. તો કિસાન ભાઈઓ, હા વાર ની કરી શરૂઆત કરી આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમની. કડકનાથ મુર્ગે કી એક નસ્લ હૈ જિસે કાલી માસી ભી કહા જાતા હૈ. યે મુર્ગે પૂરી તરહ કાલે હોતે હૈ. કડકનાથ મુર્ગે કા કુલ માંસ ભી કાલે રંગ કા હી હોતા હૈ તથા ઇનકે અંડે સુનહરે રંગ કે હોતે હૈ. ઇનકી ઉત્પત્તિ મધ્ય પ્રદેશ કે ધાર ઓર ઝાબવા જિલે સે હુઈ હૈ. ઇન પક્ષીઓ કો જ્યાદાતર ગરીબો આદિવાસીઓ દ્વારા પાલા જાતા હૈ. इसके स्वास्थ्य से जुड़े फायदों को देखते हुए इसकी मार्केट में मांग अधिक रहती है और इसकी गुणवत्ता के कारण ये काफी महंगा भी बिकता है. हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने भी इन मुर्गों को पाल रखा है और कड़कनाथ मुर्गे से वे कड़क कमाई करते हैं.
3: हमारे साथ में विशेषज्ञ है डॉक्टर A.S. दिवाकर साहब जी और ये प्रबंधक है कड़कनाथ फार्म झाबवा मध्य प्रदेश में. सर जी, ये बताइए कि कड़कनाथ फार्म जैसे इसकी स्थापना कैसे हुई और इनको GI टैग मिला है, वो किस तरह से इसका पालन किसान भाई करते हैं?
4: नमस्कार किसान भाइयों को, मेरा नमस्कार. मैं डॉक्टर A.S. दिवाकर यहाँ प्रबंधक हूँ कड़कनाथ फार्म झाबवा में.
3: जी सर.
4: किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा शासकीय कड़कनाथ फार्म है ये 1985 में प्रारंभ किया गया था.
3: जी जी सर.
4: तो सबसे पहले किसी न किसी माध्यम से ये कड़कनाथ के बारे में जानकारी मिली कि ये कट्ठीवाड़ा के जंगलों में अलीराजपुर झाबुआ उस समय एक था, वहाँ ये पाए जाते थे. हमारे गाँव के जो ग्रामीण अंचल आदिवासी भाई बहन है इसका पालन करते थे और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते थे.
3: जी
4: तो
3: जी.
4: इसकी क्या कुछ विशेषताएं थी जिन जब ये शासन तक पहुंची इसकी विशेष जानकारी तथा ये भी मालूम पड़ा कि ये विलुप्त होने वाला है.
3: जी जी.
4: तो शासन ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, क्यों ना इस प्रजाति का हम संरक्षण किया करके इसकी संख्या बढ़ाई जाए और भविष्य में कभी योजनाएं लागू करेंगे तो योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे.
3: जी सर, ये बताइए कि वैसे तो यहाँ पर देसी मुर्गे मुर्गियाँ पाली जाती है, लेकिन कड़कनाथ और देसी में क्या अंतर है?
4: अंतर तो बहुत कुछ है. आप देख सकते हैं कि जो कड़कनाथ है, कड़कनाथ मुर्गे तीन प्रजाति में पाया जाता है. एक होता है गोल्डन ब्लैक स्ट्रेन, एक होता है पेल्सिन ब्लैक स्ट्रेन, एक होता है आपका जेट ब्लैक स्ट्रेन.
3: जेट ब्लैक.
4: अब ये जो कड़कनाथ है इसके अगर मूल लक्षण देखें, शारीरिक विशेषताएं देखें, तो सभी अंग इसके काले होते हैं.
3: जी.
4: और नॉर्मल जो देसी मुर्गा मुर्गी रहते हैं उसके कई प्रकार के कलर होते हैं, लाल, पीला, हरा, व्हाइट, ये सब देसी होते हैं.
3: जी जी.
4: अब इसमें अगर हम अंतर करके देखें किसान भाइयों कि आखिर कड़कनाथ ऊपर क्यों माना जाता है, कुछ तो इसके विशेष गुण हैं जिसके कारण लोग कड़कनाथ के प्रति आकर्षक होते हैं.
3: जी जी.
4: तो इसका कारण क्या है कि ये काले रंग का होता है.
3: जी जी.
4: अब काला रंग जो होता है, काला रंग नॉर्मली ऐसे ही नहीं आता है.
3: जी जी.
4: ये सब कुदरती होता है.
3: जी सर.
4: तो कुदरती मतलब ये होता है सूर्य की किरणों से.
3: जी.
4: तो सूर्य की किरणें ही इसके काला रंग बनाने में मदद करती है.
3: जी जी.
4: और वो किरणें से क्या मिलता है, इसकी चमड़ी में मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस होता है
3: जी सर,
4: उस मेलानिन पिगमेंट के कारण ये काला होता है, तथा साथ में इसके खाने पीने की जो प्रवृत्ति है
3: जी सर,
4: अगर ये फार्मिंग करते हैं तो वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन अगर हम कुदरती और नेचुरल पद्धति में पालते हैं जंगल में खुले में तो उसके खाना पीना, इसका जो खाने का तरीका है, ये कीड़े मकोड़े खाएगा, मिट्टी खाएगा, हरी पत्ती खाएगा, ऐसे ऐसे चीज खाएगा जिससे कि इसमें लोह तत्व ज्यादा बढ़े
3: जी।
4: तो लोह तत्व बढ़ने के कारण तथा मेलानिन पिगमेंट बढ़ने के कारण ये काला रंग होता है
3: जी।
4: अब अगर दोनों में अंतर करते हैं कि देसी तथा कड़कनाथ की विशेषताएं तथा इसमें अंतर क्या है
3: जी,
4: तो हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोटीन का प्रतिशत रहता है वो करीब 25-26% रहता है, जबकि दूसरे पक्षी जो देसी रहते हैं उनमें करीब 18-20% रहता है, तो हम अंतर देखते हैं 5-6% ज्यादा ही रहता है
3: जी सर।
4: अब देखें कि कोलेस्ट्रॉल
3: जी,
4: जो कि कोलेस्ट्रॉल और फैट ना के बराबर रहता है
3: जी।
4: आजकल का समय है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट फ्री चीजों का उपयोग खाने में करें
3: जी,
4: तो बीमार पेशेंटों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं
3: जी जी।
4: और लिनोइक एसिड एक तत्व और होता है
3: जी,
4: वो भी इसमें मात्र 0.1% होता है। अगर ये चीजें दूसरे पक्षी में ज्यादा रहेंगी
3: जी,
4: तो वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक रहती हैं, लेकिन कड़कनाथ एक जैविक औषधि है
3: जी,
4: इसलिए ये जैविक औषधि के रूप में इसका उपयोग करते हैं
3: जी। सर इसको अधिकतर इसको देखा गया कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जैसे विटामिन B1 रहता है, B2 रहता है, तो सर ये हमारे रोगों के उपचार के लिए भी काफी फायदेमंद होता है।
4: देखिए सर, कड़कनाथ एक तरह से, सबसे पहले तो बता दूं, मिनरल इसमें
3: जी जी,
4: आयरन
3: जी,
4: लोहा
3: जी,
4: लोह तत्व से भरपूर है
3: जी जी।
4: अब ऐसा कोई व्यक्ति या महिला या बच्चे जिनमें खून की कमी है
3: जी जी,
4: अरक्तता बोलते हैं, खून की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, हिंदी में अरक्तता, खून की कमी से होने वाली बीमारी
3: जी सर,
4: तो ऐसे समय में अगर हम कड़कनाथ के मास का सेवन हफ्ते में 2 बार भी करते हैं
3: जी,
4: तो निश्चित है उसकी खून की कमी की दूरी पूर्ति हो जाएगी
3: जी सर।
4: दूसरी विटामिन की बात आती है, तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में, B1, B2, B12, फोलिक एसिड, ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप है
3: जी,
4: भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि ये जैसे किसी में लकवा की बीमारी हो उससे वो भी इसको ठीक कर देगा, किसी में अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी ठीक कर देगा, किसी में माइग्रेन की है वो भी ठीक कर देगा, तथा साथ में अगर इसके अंडे का उपयोग करते हैं तो अगर किसी की किडनी खराब होती है तो हम अंडे खाने से किडनी भी ठीक हो जाती है, किसी में अगर शुगर पेशेंट है अंडे खाने से शुगर पेशेंट भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है
3: जी। सर अधिकतर देखा गया है कि जो फार्मों में किसान भाइयों के यहाँ कड़कनाथ अगर किसान भाई पालना चाहे तो उसे किस तरह से, उसको पालने के लिए उसे कहाँ से इसके चूजे मिलेंगे?
4: किसान भाइयों, बहुत अच्छे प्रश्न किया। हमारा जो मध्य प्रदेश शासन है किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं समय समय पर लाता है।

0: उसकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण जरूर ले लें।
1: जी जी सर।
0: अगर हम प्रशिक्षण ले लेते हैं तो हमको कुछ उसकी जानकारी उसकी मैनेजमेंट के संबंध में प्राप्त हो जाती है।
1: जी जी।
0: तो फिर हमको क्या है, परेशानी नहीं आती, हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा।
1: जी सर।
0: तो सबसे पहले कोशिश करें शासन द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध बड़े आसान तरीके से कराया जाता है।
1: जी जी।
0: और उसके पश्चात हम अगर ट्रेनिंग अच्छी प्राप्त कर लेते हैं
1: जी जी,
0: उसके बाद हम प्लानिंग करें कि हमको कड़कनाथ का पालन किस प्रकार का करना है, छोटी संख्या में करना है कि बड़ी संख्या में करना है, हमारी क्षमता कैसी है, उस क्षमता के ऊपर हम किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट पैसा लगा सकते हैं, कैसे उसमें, क्योंकि जब उसका पालन करेंगे तो निश्चित है उसमें पैसा बहुत खर्च होता है।
1: जी जी।
0: और हम उस पैसे को तीन गुना चार गुना कैसे करें।
1: जी सर।
0: तो एक अच्छे प्रशिक्षण उपरांत ही हम उनका अच्छा पालन कर सकते हैं और अच्छा हम पैसा कमा सकते हैं।
1: हाँ सर, देखा गया है कि अधिकतर कड़कनाथ जैसे छोटे चूजे होते हैं जिसमें प्रकाश की जरूरत होती है और उसको पानी भी समय समय पर देना पड़ता है और बड़े चूजों को भी अलग रखना पड़ता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है सर?
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया किसान भाइयों के लिए। देखिए साहब, जब भी किसी चूजे का जन्म होता है, अंडे से बाहर निकलता है, चूजा करीब 21 दिन में बाहर निकलता है।
1: जी जी।
0: तो बच्चों के विकास के लिए, चूजों के विकास के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है।
1: जी जी सर।
0: और वो गर्मी हम कैसे देते हैं, सबसे पहले उन चूजों को हम एक कमरे में रखते हैं, उस कमरे को बोलते हैं ब्रूडर हाउस।
1: जी सर।
0: मुर्गी पालन में हर उम्र के लिए अलग अलग कमरे होते हैं।
1: जी जी।
0: और सबसे पहले बच्चों का कमरा जो उसको ब्रूडर हाउस बोलते हैं।
1: जी।
0: जब वो 2 महीने के हो जाते हैं, दूसरा उसको शिफ्ट कर देते हैं, उसको ग्रोवर हाउस बोलते हैं।
1: जी।
0: हिंदी में हम उसको पठोर बोलते हैं।
1: जी।
0: जब वो अंडे देने लगे हो जाती हैं तो हम उनको लेयर हाउस में शिफ्ट कर देते हैं, तो लेयर हाउस कहलाता है।
1: जी जी।
0: तो ब्रूडर हाउस जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें हम चूजों का पालन पोषण करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें क्या है निर्भर ये करता है कि वो पैदावारी किस समय हो रही है चूजों की, क्या गर्मी के मौसम में हो रही है, क्या बारिश के मौसम में हो रही है, क्या सर्दी के मौसम में हो रही है।
1: जी।
0: तीनों मौसम में चूजों की देखभाल करने के तरीके अलग अलग है।
1: जी जी।
0: अगर गर्मी का मौसम है जैसे मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, यहाँ देखेंगे कि पहले से ही गर्मी बहुत होती है।
1: जी जी।
0: नॉर्मली चूजे के विकास के लिए 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है
1: तापमान,
0: तो इसमें तो काफी पर्याप्त मात्रा में बाहर का टेम्परेचर रहता है, करीब 42-45 तक पहुंच जाता है और कमरे का टेम्परेचर आराम से 37-38 के आसपास रहता है। तो मेरे ख्याल से ये गर्मी के मौसम में अगर हम चूजा पालते हैं तो ब्रूडिंग प्रकृति के द्वारा ही हो जाती है, प्रकृति की लाइट गर्मी से ही हो जाती है।
1: जी जी।
0: उसमें देखभाल कम करनी पड़ती है।
1: जी जी।
0: लेकिन अगर यही हम बारिश के मौसम में करते हैं तो उसमें देखते हैं कि बरसात हो रही है तो निश्चित है टेम्परेचर गिरेगा।
1: जी जी।
0: तो सर्दी पैदा होगी और मालूम पड़े कि 8 घंटे की सर्दी हो गई, अगले 8 घंटे में थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, तो ये वेरिएशन चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा देखभाल ज्यादा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या है उसमें लाइट जो रहती है बिजली,
1: जी
0: तो 200 वाट का बल्ब यूज करते हैं। अगर हम जैसे 100 बच्चे पालते हैं
1: जी,
0: तो कम से कम 200 वाट के 2 बल्ब उसके ऊपर लगाए जाते हैं, जिससे क्या है उजाला तो मिलता ही है उसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको एक गर्मी भी पैदा करते हैं। और अगर यही हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अगर चूजों का पालन करते हैं तो ऐसी स्थिति में कभी कभार बहुत ज्यादा सर्दी गिरती है, शीत लहर चलती है, तो उस समय चूजों का नुकसान होने की संभावना रहती है।
1: जी जी।
0: तो लेकिन हमको क्या गर्मी 35-37 डिग्री मेंटेन करना है, तो उसमें आजकल हीटर आते हैं और हम हीटर लगा देते हैं।
1: जी जी।
0: तो आजकल हीटर क्या बड़ा ही
1: एक संतुलित मात्रा में जो उसको
0: अच्छे तकनीकी के बनाए जा रहे हैं जो ऑटोमेटिक रहते हैं।
1: जी।
0: वो 37 डिग्री तक जाएंगे, कट हो जाएंगे।
1: जी जी।
0: और नीचे जब वो वापस आएगा 32-33 फिर चालू हो जाएगा,
1: फिर चालू ऑटोमेटिक
0: कट ऑफ होते हैं, तो कमरे का तापमान मेंटेन रखते हैं।
1: जी।
0: जिसके कारण क्या है चूजों में कोई समस्या नहीं होती और उनका गर्मी से विकास होता रहता है।
1: जी जी।
0: तो सर्दियों में थोड़ा अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है।
1: जी जी
0: जी
1: जी सर। हमारे किसान भाई क्या है कि कम मात्रा में अगर पालते हैं तो किसान भाइयों को अधिकतर देखा गया है कि जो पोल्ट्री हाउस में प्रवेश के लिए किसी एक व्यक्ति को जाना पड़ता है, तो इसका क्या कारण है?
0: हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये फर्स्ट स्टेप है पोल्ट्री फार्म को अच्छा चलाने के लिए। अगर हमारी ये शुरुआत अच्छी रहती है, हमारा ये देखभाल अच्छा रहता है, तो इसमें शुरुआत का मतलब ये हो गया बायो

0: सिक्योरिटी
1: जी,
0: तो बायो सिक्योरिटी जो मेजर रहते हैं
1: जी,
0: बगैर उसके मुर्गी फार्म चलाना बड़ा ही मुश्किल है, अन्यथा कोई ना कोई बीमारी बाहर से आएगी
1: जी जी,
0: और वो हमको परेशान करेगी और नुकसान करेगी
1: जी।
0: तो बायो सिक्योरिटी मेजर अपनाना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: अगर हम छोटा पोल्ट्री फार्म हो या बड़ा पोल्ट्री फार्म हो, किसी भी व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें
1: जी जी,
0: उसको बाहर ही रखें।
1: हाँ,
0: मुर्गी के कमरे में अंदर तो कभी भी प्रवेश ना करने दें
1: जी जी।
0: हम अगर वो आप भी हाँ, खुद पालन करते हैं
1: जी जी,
0: आपके भी जूते चप्पल अलग होना चाहिए
1: जी जी।
0: आप बाहर से आते हैं तो बाहर के जूते चप्पल बाहर रखें
1: जी,
0: मुर्गी पालन करने वाले कमरे के जूते चप्पल मुर्गी के कमरे में ही रखें
1: जी जी।
0: जब उसको अंदर काम करेंगे तो आप उसमें उसका उपयोग कर लें
1: जी जी।
0: और कपड़े भी हम समय समय पर बदलते रहें
1: जी जी।
0: हम हर दो दिन में नए कपड़े मतलब धो लें, फिर उनका यूज करें।
1: और बर्तन भी सर पानी भी बदलते?
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: हम डेली प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में उनके बर्तन बाहर निकालें, उनको सर्फ साबुन से बर्तन धोएं अच्छी तरह से
1: जी जी।
0: इससे क्या रहता है, उसमें कोई भी गंदगी कीटाणु वीटाणु सब खत्म हो जाता
1: है।
0: डेली उसको स्वच्छ पानी, स्वच्छ दाना और स्वच्छ बर्तन, अगर हम इसका मापदंड अपनाएंगे तो हमको एक अच्छा मुर्गा मुर्गी तैयार हो
1: तैयार। तो सर जी ये बताइए कि हमारे किसान भाई अगर ज्यादा मात्रा में अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो शासन उन्हें कितना अनुदान दे सकती है?
0: हमारे मध्य प्रदेश शासन की एक 40-25 की स्कीम है
1: जी जी।
0: तो वो तो बहुत छोटी यूनिट है।
1: हाँ सर,
0: लेकिन हम अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं
1: जी जी,
0: तो हम स्वयं का पैसा खर्च करके 200-500 हजार बच्चे हम प्राइवेट लेके उनको पाल सकते हैं। और वो पालने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था प्रशिक्षण रूल है
1: जी जी,
0: कि मुर्गी का शेड कैसे बनना है
1: जी,
0: मुर्गी का दाना कैसे खिलाना है, मुर्गी का वैक्सीनेशन कैसे करना है, मुर्गी का सभी प्रकार का जो मैनेजमेंट देखभाल स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो हम सब सिखाते हैं
1: जी जी।
0: तो अगर आप तरीके से काम करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी।
1: सर जी, अधिकतर देखा गया है कि मीनार है और देसी मुर्गे पालते हैं, इसके अलावा कड़कनाथ जो बिकता है 3 गुनी कीमत में बिकता है, तो किसान भाइयों को इसके लिए और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि कड़कनाथ एक यूनिक नस्ल है
1: जी जी,
0: उसके अलग ही लक्षण है, काले रंग का होता है, तो एक जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है
1: जी जी,
0: आपके झाबुआ जिले में कोई व्यक्ति इंदौर से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, महाराष्ट्र से, तो जिनके रिश्तेदार है मित्र हैं, वो सीधा यही बोलता है कि भाई कड़कनाथ खाऊंगा मैं
1: जी,
0: जी, जी। तो एक अलग ही उसकी मांग रहती है मेहमानों की
1: जी।
0: तो प्राइवेट लोग उसको अच्छा कीमत पर बेचते हैं, करीब मेरे ख्याल से देसी मुर्गा 500 का बिकता होगा, तो ये करीब 1000-1200 रुपए के आसपास तो इसकी दाम रखता है प्राइवेट मार्केट में। और अगर हमारे शासन के कड़कनाथ फार्म से लेना चाहते हैं तो 540 रुपए के जी हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है
1: जी जी,
0: 3600 रुपए उपलब्ध है हमारे यहाँ
1: जी जी।
0: मैं अनुरोध करूंगा कि शासन की रेट पे लें तो ज्यादा फायदा मिलेगा किसान भाइयों को
1: जी जी। तो किसान भाइयों, हमारे सर जी दिवाकर साहब ने बहुत ही अच्छी अहम जानकारी दी, और कड़कनाथ के बारे में किसान भाइयों को और अधिक जानकारी लेना हो सर जी तो आपसे कहाँ संपर्क करेंगे?
0: किसान भाइयों, मैं अपना मोबाइल नंबर आपको नोट करा देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8319050715
1: जी,
0: मेरा नंबर है
1: जी सर।
0: आपको कभी भी मुर्गी पालन के संबंध में प्रशिक्षण लेना हो, पालन करना हो, और किसी प्रकार की कोई मुर्गी पालन के क्षेत्र में कोई समस्या आती है
1: जी जी,
0: कहीं कोई बीमारी आती है, तो मैं जरूर मेरे से सुझाव लें, मैं मदद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका मुर्गी पालन में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो
1: जी जी,
0: सफलता प्राप्त करें
1: जी। तो किसान भाइयों, अभी हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर एस दिवाकर साहब, जो कि प्रबंधक है कड़कनाथ फार्म झाबुआ में, और इन्होंने बहुत अहम जानकारी दी। और किसान भाइयों, हमें लगता है कि आप इन कड़कनाथ की जानकारी सुनकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सर जी जाते जाते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहते हैं?
0: मेरी सलाह यही है कि क्योंकि अपना जो कड़कनाथ है, मैं मुख्य बात तो बताने ही भूल गया आपको।
1: जी जी सर,
0: हमारा कड़कनाथ को हमारा जो केंद्र सरकार है, उन्होंने एक जिला एक उत्पाद एक योजना है।
1: जी जी,
0: जिले में ऐसा कौन सा यूनिक उत्पाद है जिसको जिले का मुख्य उत्पाद बनाया जाए?
1: जी जी,
0: तो हमारा जो कड़कनाथ है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चयन किया गया।
1: जी जी सर,
0: तो हम एक जिला एक उत्पाद से अगर जुड़ते हैं और हम 1500 बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो शासन ने इसकी एक वेबसाइट भी खोल रखी है।
1: जी जी सर,
0: jhabuakadaknath.com।
1: जी सर,
0: आप अपना पर्सनल पालन करें, मुर्गों को तैयार करें।
1: जी जी,
0: और इसमें रजिस्टर्ड पंजीयन करवा लें इसमें।
1: जी जी सर,
0: और आप ऑनलाइन बिक्री भी कर सकते हैं आजकल। आपके पास जितने ऑर्डर आएंगे आप अपना सामान वहाँ भेजना है, आप अच्छी आमदनी प्राप्त करेंगे।
1: जी जी, धन्यवाद किसान भाइयों, हमारे डाक साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और सर जी और हमारे मैं कमता डामोर और हमारे सर जी AS दिवाकर साहब जी को लेते हैं विदा। नमस्कार,
0: धन्यवाद।
2: हूँ से RJ राकेश
3: अने हूँ से RJ कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। તો સાલો કિસાન ભાઈઓ, હાવલે એક નાનો બ્રેક અને અહીં આપણા ઝાબવા જિલ્લામાં ભીલ સમુદાયમાં જબ લાડો પૈણે અને જાન જાય તીનમાં જો ગાવે તું ઘણું મજાનું અને અસલ ગીત હામલીને પાછા ભેળા થા હું કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં જાજુ મતી કહી થા હામલતા રેજો ઝાબવાની આવાજ સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ પર।

0: लेते हैं। बिल्कुल। आप इसके अलावा क्या करते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या?
1: जी जी,
0: इस बारे में बताइए।
1: मैं MBA हूँ ऑपरेशन से, मेन काम मेरा प्रॉपर्टी का है,
0: प्रॉपर्टी में डील करते हैं। और उसके बाद ये आपने,
1: ये मैंने अभी स्टार्टअप किया 8-9 महीने पहले।
0: 8-9 महीने से किया? हाँ जी। आप इतने अच्छे धंधे में, आप क्यों आए मुर्गी पालन में?
1: एक्चुअली है क्या सर, धंधा आदमी हर कोई चाहता है एक्सपेंड करना अपना
0: जी,
1: तो वो तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है।
0: अच्छा,
1: ये साइड बिजनेस के लिए एक बिजनेस और स्टार्ट
0: मतलब समथिंग मोर?
1: हाँ जी, समथिंग मोर
0: जी, मतलब कुछ और कर ले हट।
1: बिल्कुल।
0: प्रेरणा कैसे मिली?
1: एक्चुअली है क्या, आप अगर मेरा बैकग्राउंड पीछे से देखेंगे तो मैं किसान हूँ।
0: अच्छा, कहाँ से हैं?
1: मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ।
0: अमरोहा से?
1: हाँ जी। तो बाप दादा किसानी की है सबने, तो किसान सी से थोड़ा जुड़ाव भी है, लगाव भी है, और हमने गाय भैंस पाली है, मतलब बचपन से ये देखा है चीजों करते हुए, तो एक मन भी था कि कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए। अभी तो ये स्टार्ट फेस है, इसके अलावा गोट फार्मिंग और अदर बर्ड भी रखने का प्लान है इसमें।
0: मतलब अभी आपने कड़कनाथ से शुरुआत की है, आगे आपने गोट फार्मिंग करनी है और पोल्ट्री की दूसरी ब्रीड भी आप रखने का इरादा है?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी।
0: इतने शानदार बर्ड है आपके
1: जी,
0: जो चिकन है,
1: एडल्ट चिकन है। हाँ जी,
0: चिकन पर्पस से आपने ये अलग,
1: चिकन पर्पस से अलग रखे।
0: बेसिकली जो सर्दियां चल रही हैं
1: जी जी,
0: सर्दियों के लिए कोई खास इंतजाम किया?
1: वैसे तो जो एडल्ट बर्ड होता है सर्दी में इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा, मैंने पिछली सर्दी में भी देखा हुआ है इसको,
0: क्योंकि अच्छे खासे
1: बर्ड है। मेन जो दिक्कत रहती है वो बच्चों को रहती है, तो बच्चों के लिए हमने भट्टियां रखी हुई है। अगर हम बच्चे पालते हैं तो हम ये जो स्टार्ट होगा कि लेइंग पे जब आ जाएगा तो वो वाला सेक्शन खाली हो जाएगा,
0: मतलब ब्रूडिंग का भी आपने ऑप्शन रखा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आप इतने दिन से कर रहे हैं, 8-9 महीने हो गए आप
1: जी,
0: कैसा लगा आपको ये काम?
1: बहुत बढ़िया काम है
0: जी।
1: बस मेन काम है मार्केटिंग।
0: अच्छा,
1: अगर आपकी मार्केट नहीं है
0: जी,
1: तो आप कुछ भी नहीं है, फिर तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा। तो
0: यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ आपने
1: ये एक्चुअली है क्या, खाली इसने छोड़ा हुआ है कि जैसे ही वो लेइंग बर्ड स्टार्ट होगा
0: अच्छा,
1: ये सेक्शन बढ़ेगा
0: तो इसमें आ जाएगा,
1: तो इसमें आ जाएगा उतर, फिर बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे।
0: स्पेस ज्यादा चाहिए,
1: स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। हाँ जी,
0: यहाँ पे आपने अंडे की ट्रे रखी हुई है
1: जी,
0: मतलब स्टोर आपने यहाँ,
1: स्टोर यहाँ पे किया हुआ है, रोज 2-4 दिन का माल स्टॉक होता है, क्योंकि दूर जाता है प्रोडक्शन ये।
0: हाँ।
1: जो मार्केटिंग ऑनलाइन होती है वो अलग, यहीं से डिलीवरी जाती है, जो बड़ा स्टॉक होता है वो एक साथ होकर जाता है।
0: क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने ट्रे बांधी हुई है
1: जी, जी
0: मतलब
1: पैकिंग में जाता है,
0: रेडी
1: टू मूव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: कड़कनाथ बहुत अच्छी ब्रीड है, और लेकिन लोग बीच में तैयार करने के बाद बेच नहीं पाए
1: जी,
0: आपने कड़कनाथ ही क्यों चुना?
1: बेसिकली है क्या, सारा गेम मार्केटिंग का था
0: जी,
1: और जिस जगह ये कड़कनाथ स्टार्ट किया वो विलेज स्टाइल में था।
0: अच्छा,
1: और विलेज में इसकी मार्केट नहीं है क्योंकि महंगा बर्ड है
0: जी,
1: अंडा भी महंगा है और चिकन भी महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता
0: जी,
1: इसलिए मैंने नोएडा और दिल्ली के जो पॉश एरिया है उनको मार्केटिंग चुनी है,
0: उनको टारगेट किया
1: और फ्लैट वाले क्लाइंट को टारगेट किया, कोठी वाले क्लाइंट को टारगेट किया है
0: जी,
1: जो अच्छी चीज खाना पसंद करते हैं उनके लिए फिर रेट मायने नहीं करता, वो 1,000 और 2,000 कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए।
0: तो तैयार चिकन आप किस रेट बेचते हैं?
1: तैयार चिकन अगर यहाँ से जाता है ड्रेसिंग होके तो 1200 रुपए का जाता है।
0: डिमांड कैसी है और जो रेवेन्यू आपको आ रहा है वो कैसे आ रहा है?
1: देखिए डिमांड ठीक आने लगी है, क्योंकि सर्दी बढ़ने लगी है तो अब डिमांड और बढ़ रही है, मतलब रोज अब ऑर्डर आ रहे हैं। पहले शुरू में दिक्कत हुई मार्केटिंग, उस लेवल तक स्टार्ट नहीं हुई थी, लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, अब धीरे धीरे काफी लोगों तक हम पहुंच लगे हैं, माउथ टू माउथ पहुंच लगे हैं, लोगों को हम माल दे चुके हैं, उनकी भी दोबारा रिपीट ऑर्डर आने लगे हैं
0: जी,
1: तो अब जाके बेस तैयार होने लगा है माल का।
0: मैंने देखा है जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलते नहीं है
1: जी,
0: और जिन्हें देना है वो वहाँ पहुँच नहीं पाते, कहीं ना कहीं ये मार्केट का ही खेल है।
1: बिल्कुल,

मुकाम रहेशे। कड़कनाथ मांस सेवन थी लाभ। तो किसान साथियों ओरिजिनल कड़कनाथ मांस में भरपूर प्रोटीन रहेशे अने वसा इनमा नानी बराबर रहेशे। इनी हारू इनाने हगला खिलाड़ियों ने खावानी सलाह आली जायसे। कड़कनाथ मांस सेवन थी केवल शरीर नी बढ़ोतरी बल्कि रोग प्रतिरोधकता क्षमता भी इनथी बढ़े से अने अनेक बीमारियों थी इनाने खावा थी वसी सके। किसान साथियों कड़कनाथ मांस नी मांग देह ने अलावा विदेशों में घणो ज्यादा रेवाने कारण एक असल व्यवसाय अने व्यापार युवाओं हारू उपलब्ध थाय से। कड़कनाथ होम्योपैथी चिकित्सा अने तंत्रिका विकार में विशेष औषधि नो काम करे से अने आदिवासी लोग इनाने खून थी पूरा तन अने चीरकालीन गंभीर रोगों ना इलाज भी इनमा या करे से। मनुष्य इनमा इनथी माहनो उपयोग काम उत्तेजक ना रूप में लैंगिक ताकत बढ़ावा हारू भी प्रयोग करे से। आर्थिक अने सामाजिक प्रभाव। तो किसान साथियों कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ने द्वारा गांवों में किसानों ने हाथे बातचीत ना टाइम पर जो जानकारी केंद्र ना विशेषज्ञों ने भेड़ी करी कि इनमें कड़कनाथ में ज्यादा मांग अने कम वृद्धि पर ज्यादातर मृत्यु दर मुख्य रूप थी हामी आवी से। इनी प्रजाति नी विकास अने गति अवरुद्ध कर्या जाय से कि वैज्ञानिक ने द्वारा किसानों ने हाथे विचार विमर्श नी बाद मा एक समान विचारधारा अने मुर्गी पालन ना इच्छुक किसानों नो एक समूह श्री कड़कनाथ समूह बनायो से अने कृषि विज्ञान केंद्र ना सहयोग थी कड़कनाथ प्रजाति ना विकास हारू वैज्ञानिक ने द्वारा कड़कनाथ पालकों ने आहार प्रबंधन जल प्रबंधन टीकाकरण रोग प्रबंधन अने विपणन आदि नी पूरी जानकारी प्रशिक्षण सैद्धांतिक रूप थो वताड़े गए से। कड़कनाथ पालन ने पूरी तकनीकी जानकारी हामजी करी ने किसान स्वेच्छाती हाउ इनो पालन करी रहा से अने कम लागत नी मुर्गी आहार ना प्रयोग भी करवा लाग्या से। आदिवासी किसान भाई इनी समूह थी काफी प्रभावित से अने कड़कनाथ पालन करी ने आत्मनिर्भर बनी रहा से। तीन थी तीना फल स्वरूप इना गांवों थी आदिवासी भाइयों नो पलायन कम थाई रहा से अने एवी तरह थी व्यापार मा भी इन्हें रुचि बढ़ी रही से। वर्ष 2019-20 मा कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ नी तरफ थी कड़कनाथ ने अजोला खवाड़ी ने इन्होंने प्रभाव वैज्ञानिक ने द्वारा देखे जाए रहो से तीहुनो सकारात्मक प्रभाव देखवा मिली रहो से। कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ने द्वारा आर्या परियोजना निकरा परियोजना अने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ना अंतर्गत ग्रामीण युवाओं ने प्रशिक्षण आली ने तीहुन स्वावलंबी बढ़ावानु काम भी करी जाए रहो से। हमने परिस्थितियों अने बाजार आकलन ना आधार पर आवा समय में कड़कनाथ नी बाजार में मांग ज्यादातर बढ़वानी संभावना से अने शिक्षित बेरोजगार युवाओं हारू कड़कनाथ पालन में रोजगार नी भी अपार संभावना नी बनी रही से। तो किसान साथियों कड़कनाथ प्रजाति ना माह नी खास खास विशेषताएं। तो माह नी रचना नमी नमी इनमा 17.5 थी लगाड़ी ने 73.5% तक रहे से अने प्रोटीन में जो मात्रा 21 से लगाड़े 24% रहे से अने वसा 1.94% तक रहे से अने राख 1.1 थी लगाड़ी ने 2.6% तक रहे से। ब्रायलर अने अन्य देसी मुर्गियों की तुलना। तो किसान साथियों विशेषताएं रहेसे इनमें प्रोटीन कड़कनाथ में 24% अने बीजी अन्य कुकड़ियों में 18 થી લગાડીને 20% अने कड़कनाथ में वसा की मात्रा 1.94 થી લગાડીને 2.6% अने अन्य बीजी मुर्गियों में 13 થી લગાડીને 25%। लीनो लीक

0: सर, तो जिनके कारण आज हमको ये प्राकृतिक खेती वापस करना पड़ रही है।
1: जी जी, अभी वर्तमान में जैविक खेती प्राकृतिक खेती बहुत ही आवश्यक है।
0: जी जी सर जी, बताइए कि जैविक खेती करने के लिए कौन कौन से घटकों या कौन कौन की चीजों की किसान भाइयों को आवश्यकता पड़ती है जिनके कारण वो जैविक खेती कर पाता है।
1: जैविक खेती के लिए आवश्यक घटक हैं मुख्य रूप से गोबर और गोमूत्र।
0: जी जी,
1: जिसमें गोबर की खाद, गोमूत्र, गोबर गैस की स्लरी का खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है।
0: जी जी,
1: गोबर खाद के अलावा गोबर व गोमूत्र के उपयोग से तरल जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत जैसे घटक घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ साथ उपज में भी वृद्धि की जा सकती है।
0: जी जी,
1: इसी प्रकार गोमूत्र व वनस्पतियों की पत्तियों से भी कीटनाशक
0: बनाया जाता है,
1: कीटनाशक भी तैयार किया जा सकता है, जैसे कि निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, सप्तपर्णी और दशपर्णी अर्क के प्रयोग से हानिकारक कीटों से फसलों को दूर रखा जा सकता है।
0: जी जी,
1: और इसी प्रकार छाछ व तांबे की मदद से जैविक फफूंदनाशक भी बनाया जा सकता है। कुछ पौधों की पत्तियों व फल फूलों से पौध बढ़वार की टॉनिक भी बनाई जा सकती है।
0: जी जी सर,
1: इसी प्रकार जैव उर्वरक जिसमें कुछ जीवाणु कल्चर होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन व मिट्टी में फिक्स पड़े पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का कार्य भी करते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर आता है, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजेला आदि।
0: जी,
1: इस प्रकार से किसान अनेक तरीके अपनाकर किसान बिना रसायन के या रसायनों का कम उपयोग करके जैविक खेती कर सकता है।
0: जी जी जी सर जी, ये बताइए कि जैविक खेती के क्या क्या फायदे हैं?
1: जी, जैविक खेती से बहुत सारे फायदे हैं। जैविक खेती से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है।
0: जी जी,
1: जैविक खेती से मृदा संरचना में सुधार होता है।
0: जी,
1: मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है।
0: जी,
1: जैविक खेती पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद है।
0: जी,
1: इससे जल, वायु व भूमि प्रदूषण नहीं होता है। जैविक खेती से फसलों में कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जैविक खेती मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदेमंद है।
0: जी जी सर,
1: और जैविक खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है।
0: जी जी,
1: इसमें सामान्य खेती की तुलना में बाजार मूल्य भी अधिक प्राप्त
0: अधिक मिल रहा है।
1: जी
0: जी, तो किसान साथियों, हमारे सर जी ने जैविक खेती के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी। सर जी, जैविक खेती में जो किसान भाई अपने घर पर है ही रह के, मतलब जो बहुत ही जल्दी जो खाद तैयार कर सकते हैं, ऐसे कोई खाद है वो कौन कौन से हैं?
1: जी, जैविक खेती में अपन घर पर ही कुछ खाद ये तैयार कर सकते हैं अपन, जैसे जीवामृत और घन जीवामृत जैसे खाद है जो कम समय में ही तैयार किए जा सकते हैं।
0: जी जी जी सर, ये बताइए कि जीवामृत बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें और कितनी मात्रा में उसका लिया जाना रहता है? सर बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जी, जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले किसान भाई को 200 लीटर के प्लास्टिक ड्रम होना चाहिए।
0: जी जी,
1: जिसमें 180 लीटर पानी डाल लें।
0: जी जी,
1: फिर 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर लें।
0: जी जी,
1: अब इसमें 5 से 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र मिला लें। फिर इसमें 1 से 1.5 किलोग्राम गुड़।
0: जी,
1: 1 से 1.5 किलोग्राम बेसन मिला लेते हैं।
0: जी,
1: फिर इसमें पीपल या कोई भी पेड़ के नीचे की मिट्टी मुट्ठी भर ले ली जाती है और उसको जो 180 लीटर वाला जो ड्रम वाला पानी में मिक्स कर देते हैं।
0: जी जी,
1: है ना, इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया जाता है।
0: जी,
1: और कोई भी लकड़ी का डंडा कोई भी हो उसको घड़ी की सुई की दिशा में,
0: मतलब एक ही दिशा में,
1: जी एक ही दिशा में अच्छे से मिला लेना चाहिए।
0: सर, इसको दिन में कितनी बार मतलब घोल लगाते हैं जो एक ही दिशा?
1: जी, इसको किसी छांव में रखना चाहिए और ऊपर इसमें क्या है कि कोई भी बोरी है, टाट है, उससे ढक देते हैं और रोज सुबह शाम वो लकड़ी के डंडे से 2 से 3 बार घुमाते रहना चाहिए।
0: जी जी,
1: सुबह और शाम के टाइम पे।
0: जी जी,
1: और इसी प्रकार ये 5 से 7 दिनों में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा।
0: जी जी,
1: और इसे तैयार होने के 1 सप्ताह के अंदर इसका उपयोग कर लेना चाहिए।
0: जी जी, तो सर जी बताइए कि एक 200 लीटर के ड्रम में हम जीवामृत बनाते हैं तो वो किसान भाई कितनी जमीन के लिए इसका उपयोग में हो जाता है?
1: ये 200 लीटर जीवामृत अपन तैयार करते हैं।
0: जी जी,
1: ये करीब एक एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है।
0: जी जी,
1: और इसे अलग अलग तरीके से अपन उपयोग कर सकते हैं। एक ये सिंचाई जल के साथ उपयोग कर सकते हैं।
0: जी जी।

0: एकड़ में 200 लीटर, मतलब ये अपन सिंचाई की जो नाली रहती है
1: जी,
0: उसमें कोई भी ये ड्रम है डिब्बा जो भी, उसमें डाल के उसमें नल की टोटी या इस तरीके से लगा देते हैं, और सिंचाई जल के साथ में अपन उस हिसाब से अपन चलने देते हैं जो लगभग 1 एकड़ में हो जाए इस तरीके से।
1: जी
0: तो इसे हर सिंचाई में उपयोग करना चाहिए, हर 20 से 21 दिन में। गेहूं, जैसे गेहूं है,
1: जी
0: 20 से 21 दिन में लगभग में इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है,
1: जी
0: तो हर सिंचाई में इस तरीके से आप ये दे सकते हैं।
1: जी मतलब ड्रिप पानी के माध्यम से।
0: जी,
1: जी
0: पानी के माध्यम से ये क्या
1: जी
0: उसके जड़ क्षेत्र में चला जाता है,
1: जी
0: और जैसे कि इसमें मतलब जीवाणुओं की संख्या, उसमें खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती
1: जी
0: है, और उसमें जो भी सारे सूक्ष्म पोषक तत्व तो और मुख्य पोषक तत्व तो जो भी है उसमें पौधे में मतलब उपयोग क्षमता उसकी बढ़
1: बढ़
0: जाती
1: जाती
0: है।
1: है,
0: जी
1: ताकि रासायनिक बाद में अपने को रासायनिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: जी रासायनिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, और अगर आप जैविक खेती करते हो तो इसी प्रकार धीरे धीरे आप ये करके पूरे जैविक कर सकते हैं। शुरू
1: जी
0: अपन इसमें चाह तो शुरू शुरू में रासायनिक खाद का मतलब एकदम से बंद नहीं कर पाओ,
1: जी
0: तो इसे धीरे धीरे बंद करने
1: जी
0: चाहिए।
1: रासायनिक खाद जैसे मान लो किसी किसान के पास में मतलब 4 बीघा जमीन है, तो धीरे धीरे एक एक बीघा करके सुधार कर लिया जाए।
0: जी इसमें क्या किसान भाई 4 बीघा का खेत है,
1: जी
0: तो इसमें हम इसमें ये है कि उसकी क्षमता के हिसाब से
1: जी
0: मेरे हिसाब से छोटे क्षेत्र से शुरुआत करनी चाहिए किसान भाई को।
1: सर जी, सिंचाई के अलावा जीवामृत को और जो घन जीवामृत है उनकी दूसरे तरीके से जमीन में किस प्रकार से सिंचाई के अलावा इसको दिया जाता है?
0: इसका स्प्रे भी किया जा सकता है, जीवामृत को किसी सूती कपड़े से अच्छे छान लेना चाहिए,
1: जी
0: और इसका प्रयोग 15 लीटर वाले स्प्रेयर पंप में करीब 2 से 2.5 लीटर जीवामृत लेकर उसका छिड़काव डायरेक्ट फसलों पर कर सकते हैं।
1: जी तो सर जी, इससे फसलों से जो जीवामृत से क्या फायदा करेगा जो फसलों में, इसमें जीवाणुओं को मारेगा या खाद को बढ़ावा देगा?
0: जीवामृत में क्या है कि इसमें एक तरह के जीवाणु रहते हैं,
1: जी
0: तो ये मिट्टी में जाकर जीवाणु की संख्या में वृद्धि करेगा।
1: जी जो जैविक जीवाणु है।
0: हाँ, जैविक वाले जो लाभदायक जीवाणु हैं
1: जी
0: और जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करेगा,
1: जी
0: और लाभदायक जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी करेगा,
1: जी
0: और इसमें मुख्य कीट जो है अपने केचुआ आदि जो मुख्य कीट है,
1: हाँ,
0: हाँ, उसकी संख्या भी धीरे धीरे इसमें,
1: बढ़ती जाएगी।
0: हाँ, उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी।
1: जी सर जी, रासायनिक ज्यादा छिड़काव के कारण हमारे केंचुए भी जमीन के अंदर खत्म हो जा रहे हैं, तो जैविक खेती में जो दवाइयां बनाएंगे उससे उसका कोई नुकसान होगा?
0: जैविक खेती में केंचुओं में बढ़ोतरी होती,
1: जी
0: केंचुआ क्या है, केंचुआ एक तरह से किसान का मित्र भी है।
1: जी
0: केंचुआ क्या है, अभी के लगातार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करते धीरे धीरे केंचुए की संख्या नगण्य के बराबर हो गई,
1: जी खत्म
0: बहुत,
1: होने वाला।
0: हाँ, बहुत कम हो गई है।
1: जी
0: हाँ, तो जैसे अपन जैविक खेती शुरुआत करेंगे तो जमीन में धीरे धीरे केंचुए और
1: बढ़ते
0: लाभदायक जीवाणुओं की
1: जाएंगे।
0: संख्या बढ़ती जाएगी। केंचुआ अपना किसान किसान भाई के लिए मित्र इसलिए भी वो है क्योंकि केंचुआ क्या है कि जमीन में जिस रास्ते से गुजरता है उसे मतलब, हाँ, मिट्टी खाता है
1: सही।
0: और उसकी संरचना में सुधार करता है,
1: जी
0: और उससे जो भी बहुत सारे इसमें लाभदायक जो चीजें रहती है सूक्ष्म पोषक तत्व,
1: जी
0: हाँ, जो पौधों को आवश्यकता है उनकी
1: जी
0: संख्या में बढ़ोतरी करता है।
1: जी एक तो मिट्टी को मतलब वो खोखला कर देता है, दूसरी बात है कि उनके द्वारा जो भोजन मिट्टी का जो लेता है उसमें भी उसके एक जैविक के रूप में वो खाद का निर्माण करता है। सर इसके अलावा जो घन जीवामृत बनाते हैं तो किसान भाइयों को कौन कौन सी सामग्री और किस तरह से उसको बनाया जाता है?
0: घन जीवामृत तैयार करने के लिए देसी गाय का

0: एकड़भूमिहरू अनि तिनी सिंचाइनी हाते गर्वाहरू पर्याप्त रहेछ। एक वैज्ञानिक शोधमा न्युपायुगीसेकी तिनथी जीवामृत तयार करवाथी 14 दन्नी बादमा सबथु ज्यादा 7,400 करोड़ जीवाणु बैक्टीरिया पाया गया से। तिनथी तिनी बादमा तिहुनी संख्या घटती अने शुरू थाती जाय से। गोल अने बेषण बेहुई जीवाणु ने बढ़ावामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाड़ी से। गोबर गौमूत्र मिट्टी ना घोल थी जीवाणु की संख्या केवल 3 लाख पाईगी से अने तिनथी बेसन मिलाई गये से अने तिहुनी संख्या बढ़ी ने 25 करोड़ थाईगी से। जेर इना तीनों बेसन तीनों ही मिलाया गया। बेसन अनी जगह पर गोल मिलाई गयो इनी संख्या 220 करोड़ थाईगी। पुन जेर गोल अने बेसन बेहुने मिलाई गयो अने जीवामृतना हागला घटक गोबर गौमूत्र गोल अने बेसन अने मिट्टी मिलावे गई तो इहुनो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आयो अने जीवाणु की संख्या बढ़ी ने 7,400 करोड़ थाई गई अने या अमृत जेर सिंचाई नी हाथे खेतर मा नाख्यो गयो तो भूमि मा जीवाणु की संख्या अविश्वसनीय रूप थी बढ़ी जाय से अने भूमि मा भौतिक रसायन अने जैविक गुणों मा बढ़ोतरी थाय से। तो किसान साथियों जीवामृत नो उपयोग जीवामृत ने महीना मा एक या बे वारी उपयोग ना अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ ना हिसाब थी सिंचाई ना पानी ने हाथे उपयोग करवानो। तीन थी खेती मा चमत्कार था है अने फलों ने पेड़ों ने जो आसपास ने जो बफोर ना टाइम पर 12 वागे सिहला पड़े से अने तीना सिहला ने चिन्हित करीने सुबह या शाम ना हमेशा पेड़ 2 થી 5 લિટર ની દર થી જીવામૃત માં મહિના માં 1 યા 2 વારી નાખું છે અને ઇનતો ઇનો ઉપયોગ કરવાથી સમય પર તીન માં પેડ માં હંમેશા નમી નો રેમ ઘણો જરૂરી છે। તો કિસાન સાથીઓ અર્ધઠોસ જીવામૃત ના બારા માં તમને અને કઈ પ્રકાર ના તમન જીવામૃત ના બારા માં મે તમન ખેતીવાડી ની અસલ જાણકારી હામળાવી। तो किसान साथी एवी खेती वाड़ी नी असल जानकारी हामल बाहर तमो हामलता रे जो रेडियो टंट्याभिल 90.8 FM छाबुआ नी आवाज।
1: हूँ से आरजे राकेश
2: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
1: तमो हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा छाबुआ ना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्याभिल 90.8 FM छाबुआ नी आवाज पर।
0: किसान भाइयों तुम हामळी रसी झाबुआ जिला नो पहलो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्याभिल 90.8 FM झाबुआ नी आवाज। किसान साथियों हूं से आरजे कमता डामोर अने तुम हामळी रसी रेडियो पर कार्यक्रम खेतीवाड़ी। तो किसान साथियों हरीपति नी खातर अने एक उपयोगी जैविक खाद ना बारा मा आज हूं किसान भाइयों तुम जानकारी हामळावा जाय रह्यो छे। तो किसान साथियों खेतीवाड़ी में आपण कई प्रकार ना खरपतवार भी रहे से अने हारा पायडा वाला कई एवा पौधा उगे से अने तीन थी किसान भाई खातर बनावी ने आपड़ी खेती में उपयोग करी सके। तो किसान साथी तीन हारू हरिपति नो खातर नो उपयोग करवा थी हूँ लाभ थाय से अने हरिपति ना खातर हारू उपयोगी जो प्रजातियो से झाड़कानियो अने हरिपति खातर की कम तैयार करवानो अने खातर ना उपयोग नो जो सही तरीको एवी कई प्रकार नी हागली जानकारी हमलावानी तमन हूँ जानकारी बताड़ी रोसे। तो किसान साथियों हरिपति ना खातर ना विभिन्न पेड़ों हर्ब अने झाड़ियों थी हरा पायडा अने डालखानी सटाई भेड़ी करीने तीनी परिभाषित करी जे कि गिवसे की तीन माती हूँ ने जैविक खातर ना रूप मा कई एवं इस्तेमाल तीन थी करे जाय सके से। वन वृक्ष ना पायड़ा अने खातर ना प्रमुख एक एवो स्रोत से जबकि खेतर नी मेड़ बंजर भूमि आदि मा उगवा वाला हर्ब अने झाड़का तीना हारू एक मुख्य स्रोत से। हरिपति ना खातर नो उपयोग करवो विशेष रूप थी पहाड़ी क्षेत्रों मा ज्यादा उपयोगी रहे से। हरिपति नी खातर केम जरूरी से तो किसान साथियों पौधानी बढ़ोतरी हारू अने पोषक तत्वों ना स्रोत ना रूप मा રાસાયણિક ઉર્વરકોનો ઉપયોગ કરવાનું અને મિટ્ટી

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। दोस्तों, आज के कलाकार का मंच है नए टैलेंट्स के लिए, नए गायकों के लिए, नई गायिकाओं के लिए जो अपनी प्रतिभा का बहुत बहुत लुत्फ उठा रहे हैं और आज हमें मौका मिल रहा है उनके गीत सुनने का, उनके संगीत को हमें भी मजे से एंजॉय कर पाए, ये हमें आज मौका मिल रहा है। और आज हमारे साथ जो गायिका है वो है रुबीना दास जी। बाकी रुबीना जी अपने बारे में खुद हमें बताएंगी, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके गीत भी सुनेंगे। रुबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी धन्यवाद। नमस्कार समीर जी, और आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रुबीना, बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन अभी मैं बैंगलोर में अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती हूँ। और मैं अपने बारे में ये बता सकती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ या होममेकर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मैं खुद भी योगा करती हूँ और दूसरों को भी योगा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ।
0: बहुत खूब,
1: ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है।
0: बहुत खूब रुबीना जी। हम सभी जानते हैं दोस्तों, योगा हमारे देश से ही पैदा हुआ और कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा प्रभावशाली है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है हमारे दोस्तों में से ज्यादातर लोग योगा को प्रैक्टिस करते होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू करना चाहिए, और अब चाहें तो रुबीना जी से संपर्क कर सकते हैं। रुबीना जी हमारे बीच में एक बहुत अच्छे टीचर, एक बहुत अच्छे फ्रेंड और अब हमारी फैमिली मेंबर भी हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम को रुबीना जी की ही आवाज में गाए हुए इस बहुत खूबसूरत गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया रूबीनाथ जी, बहुत बढ़िया स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हुए आपसे एक इंपॉर्टेंट, एक मजेदार और बहुत सिग्निफिकेंट सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप मुझे अपने जीवन के कुछ 3 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बता सकती हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो? 3 लोग।
1: 3 लोग
0: जी।
1: ओके, एक सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, जिनसे बहुत पॉजिटिविटी मुझे आई है, मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। अभी तो वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। और दूसरे हैं मेरे माताजी, उनको भी मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, वो भी नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर है। और तीसरे हैं बहुत, जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस अभी अभी हुई हूँ, अभी मतलब कुछ दिनों से, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी।
0: क्या बात है,
1: उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ।
0: तो ऐसी क्या बात है प्रधानमंत्री मोदी साहब में जिससे आपको लगा कि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं?
1: उन पॉजिटिविटी आती है, वो हमारे देश को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत पीछे थे हम। वो पॉजिटिविटी आती है उनको देखने से, उनकी सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये ऐसे लीडर ऐसे ही होने चाहिए।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया बात कही साहब आपने
1: जी। एज अ पर्सन मैं उनको बहुत मान देती हूँ
0: जी। मैं भी वही कह रहा हूँ मैम कि एज अ पर्सनैलिटी, ऐसे एक व्यक्तित्व, जितना पावरफुल इंसान वो दिखाई देता है, बस उसको देख के मजा आ जाता है। इतनी बड़ी उम्र में भी कितनी पावर उनमें रहती है, कितना काम वो करते हैं,
1: बहुत ऊर्जा
0: रहती है उनके पास। वो तमाम जगहों पर जाकर वो काम करते हैं जो इतनी उम्र पर पहुंचकर, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर आदमी नहीं करना चाहता या नहीं झुकना
1: नहीं
0: चाहता, लेकिन वो बहुत प्यारे ढंग से हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत खूब कहा आपने
1: जी जी। उनसे मुझे योगा के लिए भी इंस्पिरेशन उनसे भी ज्यादा मिली है।
0: क्या बात,
1: इसीलिए मैं ज्यादा उनको पसंद करती हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात कही आपने। तो हमारे देश की पुरानी संस्कृति को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रूबीना जी की ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर। रुबीना जी, आपके जीवन के कुछ सबसे सुखद, बहुत ही प्लेजेंट कुछ पल रहे होंगे, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सुखद पल, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था
0: जी,
1: मेरा बेटा जब आया था मेरी गोद में, वो तो सबसे अच्छा सुखद पल होता ही है माँ के लिए।
0: जी जी जी।
1: और जबकि मैं एक बेटी चाहती थी, पहला बच्चा
0: ओके,
1: लेकिन भगवान ने ये मुराद भी मेरी पूरी कर दी। तो मेरी सेकेंड चाइल्ड, जब भी मेरी बेटी हुई है, उस टाइम भी मुझे बहुत ही खुशी मिली।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और दोनों बच्चे मेरे काफी बड़े हो गए हैं, दो में एक माँ के लिए वो बच्चे ही रहेंगे, लेकिन हाँ, वो आज बहुत अच्छा ऑनेस्ट हैं अपने जिंदगी में, और बहुत आगे भी आ चुके हैं। दोनों ही जॉब करते हैं, बैंगलोर में ही रहते हैं, मेरे पास ही रहते हैं।
0: वेरी नाइस।
1: और एंड दे आर वेरी नाइस एंड बहुत मान रखते हैं पेरेंट्स का, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है
0: बहुत खूब।
1: दोनों को पाके मैं बहुत खुश हूँ।
0: अमेजिंग, बहुत खूब रुबीना जी। दोस्तों, आपने सुना, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, कहीं पढ़ी थी मैंने, फिर उसको लेकिन मैंने अपनाने की कोशिश की। देखिए, हम लोग सब एक दूसरे से सीख के ही सीखते हैं, कोई ऊपर से ज्ञान हमारे पास नहीं आ जाता। तो हुआ यूं कि एक मित्र ने मेरे से पूछा कि आपकी माँ कहाँ रहती हैं, तो मैंने उनको बताया वहां रहती हैं, जहां भी रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो माँ मतलब आपके पास रहती हैं। मैंने कहा जी नहीं, माँ मेरे पास नहीं रहती हैं, मैं माँ के पास रहता हूं।
1: पास रहता हूँ
0: मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं माँ से दूर जा सकूं या माँ को रख सकूं, मेरी माँ मुझे अभी भी रखती है।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने, और ये बात मेरे दोनों बच्चे भी यही बोलते हैं, हम अपने माँ बाप के पास रहते हैं।
0: क्या बात है, सो क्यूट, सो क्यूट, दैट इज सो ब्यूटिफुल। दोस्तों सुनिए, कितनी प्यारी बात है ये। चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं रवीना जी की आवाज में, जो मैं उनके दोनों बच्चों को डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं।

0: रुबीना जी, आपके जीवन में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सबक आपने सीखा और आप हमें बताना चाहेंगी कि वो सबक सब लोग सीखें, ऐसा कौन सा सबक होगा?
1: सबक तो जिंदगी तो बहुत सारा सबक हम लोगों को सिखाती है
0: जी।
1: हाँ, जब भी मैं छोटी थी तो मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहती थी। हमेशा मेरे मन में था कि मैं कुछ करूं, लेकिन शादी थोड़ी जल्दी हो गई तो उसके बाद मैं हाउसवाइफ बन के रह गई। फिर बच्चों को बड़ा किया तो, लेकिन मन में था कि मैं कुछ करूं, मेरे अंदर वो वुमेन एम्पावरमेंट का भाव था, लेकिन नहीं कर पाई। जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए, मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी। और योगा, उस टाइम मैं थोड़ी लेटर एज में योगा में योगा को सीखी। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी और मैं उसी में आगे बढ़ती गई। योगा का ट्रेनिंग लिया, इंस्ट्रक्टर बनी और अभी मैं वही चाहती हूँ। सारे लेडीज को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने पैरों के ऊपर खड़े होना सीख लीजिए। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि एक वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। हम कितना भी, हम घर भी संभाल सकते हैं और बाहर भी संभाल सकते हैं। तो ये सबक मैं अपनी जिंदगी से सीखी कि हाँ, हम लेटर एज में भी हम चाहे तो कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, बिल्कुल ठीक कहा रुबीना मैम आपने, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी किताब अभी पीछे कुछ दिनों काफी पॉपुलर हुई थी जिसका नाम है इकीगाई। जैपनीज कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है। उसमें बात यह है कि अगर हमारी जिंदगी का कोई पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है और उसकी तरफ हम चलते रहते हैं, कुछ स्किल डेवलप करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, जैसे रुबीना जी ने योगा सीखा, उसी तरीके से अगर हम कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो गाना गाना ही क्यों ना हो, हमारी जिंदगी को एक उद्देश्य मिल जाता है और जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और जाहिर सी बात है,
1: खूबसूरत हो जाती है। सही में ये आपने सही बोला, वो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है।
0: और जाहिर
1: ये लाइन मुझे बहुत पसंद है।
0: जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है मैम, आपने एम्पावरमेंट की बात की। जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं तो हम अपने अंदर से एम्पावर्ड होते हैं, अपने अंदर से इतने ताकतवर बन जाते हैं कि दूसरे लोग फिर हमारी तरफ सहायता के लिए, हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए देखते हैं। और बस यही तो उद्देश्य है एक मानव जीवन का। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने मैम। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक बहुत ही प्यारा सा गीत रुबीना जी की इस प्रतिभा की तरफ।

0: बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर। चलिए मैम, कुछ पुरानी यादों में चलते हैं। आपकी कोई पुरानी सी याद है जो आपको बड़ी खूबसूरत लगती हो, आपको अक्सर याद आ जाती हो, क्या वो हमें आप बताना चाहेंगे?
1: पुरानी यादें तो किसको पसंद नहीं है, है तो बहुत सारी, खजाने ही हैं।
0: जी
1: हाँ, लेकिन कॉलेज के टाइम के जो दोस्तों के साथ जो हम लोग जो टाइम बिताते हैं वो बहुत ही ज्यादा यादगार बनी रहती है। और ये भी मैं बोल सकती हूँ, एक बहुत अच्छी बात है, जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी मुझे गाना सिखाने के लिए लेके जाती थी और मैं थोड़ा पीछे भागती थी। मुझे और मम्मी को मुझे पता था, वो चाहती थी कि मैं गाना सीखूं, जबकि मैं थोड़ा पीछे भागती थी और मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी गाना सीखने के लिए। जब मैं छुपती थी तो मम्मी क्या करती थी, मेरे टीचर को घर पे बुला लेती थी। तो और क्योंकि मेरी आवाज अच्छी थी तो सारे टीचर्स भी मुझे बहुत पसंद करते थे, वो खुशी खुशी आ भी जाते थे और मैं छुप नहीं पाती थी फिर।
0: वाओ,
1: इस तरह से मम्मी ने मुझे थोड़ा, ये बचपन का कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो अभी मुझे याद आती हैं, तभी मैं मम्मी को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि तभी मुझे गाना थोड़ा बहुत जो सिखाई थी और मैं छुप छुप के ना सीखने की कोशिश करते हुए भी कुछ सीख ली थी, आज इस मुकाम पर हूँ कि थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ।
0: क्या बात है।
1: और ये मेरी हॉबी की तरह भी है, मैं गाना सुनती भी हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। दोस्तों आपने सुना, तो अगला गीत मैं रूबीना जी की माता जी को डेडिकेट करना चाहूंगा, जिन्होंने रूबीना जी को गाने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको गाना सिखाया, उनके लिए हमेशा मोटिवेशनल बनी रही। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अच्छा रुबीना मैम, ये बताइए आपके सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: मेरे सबसे पसंदीदा गायक तो किशोर कुमार जी हैं।
0: ओके।
1: मैं उनके गाने को बहुत एंजॉय करती हूँ, वो जो दिल से गाते हैं। वैसे तो मुझे मुकेश जी, मोहम्मद रफी जी और सारे सिंगर्स पसंद है, लेकिन किशोर कुमार जी का जो अल्हड़पन है गाने में वो मुझे ज्यादा पसंद है। और मैं तो हमेशा लता दी को दिल से बहुत बहुत ज्यादा चाहती हूँ, और लेकिन मैं आशा जी के ज्यादा फैन हूँ।
0: क्या बात है, बहुत खूब। आशा जी की क्यों फैन है आप?
1: आशा जी की भी वही अल्हड़पन।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने,
1: मुझ में भी वही अल्हड़पन है इसीलिए।
0: बहुत खूब।
1: वैसे तो मैं सबको पसंद करती हूँ, गाना तो सबका गाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ उनकी जो जॉयफुलनेस है गाने के लिए, जिस जॉयफुलनेस से वो लोग गाते हैं वो मुझे ज्यादा पसंद है।
0: बहुत खूब कहा मैम आपने, बहुत ही प्यारा टर्म यूज किया, जॉयफुलनेस। आशा जी के गानों में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनकी आवाज की लरज में जो जॉयफुलनेस सुनाई देती है वो बहुत अमेजिंग है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक प्यारा प्यारा सा गीत।

0: रुबीना जी चलिए एक काम करते हैं, आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मैं सच बताऊं, मैं बचपन में जब छोटी थी तो आसमान में उड़ना चाहती थी। तो पंछी बनकर तो नहीं, हाँ उस टाइम मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत मन था।
0: क्या बात है।
1: और मुझे लगता था वो लोग बहुत सुंदर होते हैं और उड़ते भी हैं और डिफरेंट जगह भी जाते हैं।
0: ओके।
1: मुझे डिफरेंट प्लेसेस घूमने का भी बहुत शौक था, तो मुझे लगता था कि अगर मैं एयर होस्टेस बन जाऊं तो एक तो आसमान पे उड़ भी सकती हूं और दूसरे जगह देख भी सकती हूं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात। तो दोस्तों आपने सुना कि रुबीना जी बचपन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी। तो अगला गीत रुबीना जी की उसी चाहत के नाम, जब वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: बहुत बढ़िया। रुबीना जी, बचपन की बात हो रही है, बहुत सारे टीचर्स आपके रहे होंगे, आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: हाँ, वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट टीचर्स थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे मैथ्स टीचर मेरे बहुत फेवरेट थे, और उनकी वजह से मेरा मैथ्स बहुत सुधर गया था और मैं बहुत अच्छा मार्क्स लेके आती थी, और मेरे मैथ्स टीचर भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। फिर जब भी मैं कॉलेज में गई तो मेरे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मुझे बहुत पसंद थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत पसंद किया क्योंकि मेरा अच्छा होता था इकोनॉमिक्स में।
0: ओके।
1: और फिर मैं ये भी जानती हूँ और ये भी मेरा जीवन का फंडा है कि हम बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, सबसे बहुत कुछ सीखते हैं, सभी टीचर हैं एक दूसरे के। तो मैं अपने बच्चों को भी अपना टीचर मानती हूँ, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ।
0: बहुत ही खूबसूरत बात तो, कही आपने।
1: हाँ, लेकिन हाँ, ये दो टीचर, स्कूल के एक मेरे मैथ्स टीचर और कॉलेज के जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे, ये मेरे अभी भी मुझे बहुत पसंद है। दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं बहुत याद करती हूँ दोनों को, और उनके वजह से आज मैं जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो उनको मैं सोचती हूँ उनके वजह से ही हुआ है।
0: बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात है। दोस्तों, चलिए अगला गीत रुबीना जी के ही इन दो टीचर्स को डेडिकेट करते हुए सुनते हैं।

0: बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारी गायकी। तो रुबीना जी, मुझे बताएं ना कि कौन से ऐसे तीन शब्द हैं, कौन से ऐसे तीन वर्ड्स हैं जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं?
1: जी जी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ।
0: ऑलराइट,
1: मैं लाइफ के हर डिसीजन को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करती हूँ। दूसरी चीज है, मैं बहुत आई एम ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो मैं ऑनेस्टी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ।
0: ओके,
1: और तीसरी है, मैं बहुत डिटर्मिंड हूँ। जो चीज मैं सोचती हूँ उसको मैं करके ही रहती हूँ। अगर नहीं कर पाऊंगी तो पहले से बता देती हूँ,
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है,
1: हाँ कोशिश करती हूँ कि वो करके ही रहूं।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात कही है। मुझे आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद आई मैम, जो आप डिटर्मिनेशन की कह रहे हैं। डिटर्मिनेशन वैसे भी किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत ही पावरफुल स्किल होता है। हम इसे डेवलप भी कर सकते हैं और ये हमारे अंदर से इनबिल्ट भी होता है। बहुत खूब
1: जी, थैंक यू।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं रुबीना जी के डिटर्मिनेशन के ऊपर एक प्यारा सा गीत।

0: और रुबीना जी, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए और नए जो गायक आ रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: जी जी जरूर देना चाहूंगी। और प्रोग्राम सुनने वालों को तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आपने मेरा गाना सुना और सराहा, इसके लिए भी दिल से बहुत शुक्रिया है। और जैसे मैं बोली, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरा मोटो है हेल्थ इज वेल्थ। तो आप अपने शरीर को, शरीर के प्रति सजग रहिए एंड आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा अगर आप योगा, प्राणायाम या कोई किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करते रहें। वो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए बहुत अच्छा है। शरीर और मन को बैलेंस करता है योगा। तो मैं तो हमेशा बोलूंगी योगा, क्योंकि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ तो योगा के लिए ही बोलूंगी। लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान दें। गाना गाते रहे जो मन के लिए बहुत ही अच्छा है, और गाते रहे जो आपको शांति भी देती है, मन को शांति भी देती है। लेकिन उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहिए।
0: बड़ी ही प्यारी बात रुबीना जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, हेल्थ जो होती है वो पहली वेल्थ होती है। अगर हमने उसे संभाला तो बाकी की सारी वेल्थ फिर अपने आप पीछे आ ही जाती हैं।
1: आगे
0: बड़ी
1: जाएगी
0: खूबसूरत
1: जरूर।
0: बात कही रुबीना जी आपने। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच।
1: नमस्ते, थैंक यू।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडवा भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।
1: होने होने धीरे धीरे कोई गीत मुझको सुनाए, गीत मन में जगाए।
0: आज के कलाकार प्रोग्राम बेहद स्पेशल है दोस्तों। सांस रोककर, कान खोलकर पूरे प्रोग्राम को सुनिए, बहुत मजा आएगा। आज जो टैलेंट, प्रतिभा, जो गायिका हमारे साथ हैं वो हैं मेधा जी। बाकी जो हमारे प्रोग्राम का सिग्नेचर है, स्टाइल है, वो यही है कि पार्टिसिपेंट या गायिका या टैलेंट अपने बारे में खुद बताते हैं जिससे उनको ज्यादा मौका मिले बात करने का। तो मेधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोगों से बात कीजिए, थोड़ा बताइए ना आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करती हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम मेधा है। मैं बैंगलोर से हूँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बैंगलोर। एक्चुअली आई बिलोंग टू अ लिंग्विस्टिक फैमिली। मम्मी आंध्र प्रदेश से है और पापा महाराष्ट्र से है, तो आई हैव अ मिक्स्ड कल्चर इन द हाउस। सो मैंने कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में अपना सीनियर ग्रेड कंप्लीट किया है और अभी बेसिकली आई एम टीचिंग म्यूजिक टू किड्स। तो ये मेरा अभी मेरा चल रहा है जॉब।
0: बहुत खूब दोस्तों, टाइम एंड अगेन हमने इस बात को कहा है, माना है और तारीफ भी की है और एक्नॉलेज की इस बात पे कि आज तक की डेट में आज के कलाकार हमारे प्रोग्राम में, हमारे रेडियो के प्रोग्राम में 80% से ज़्यादा लोग बैंगलोर से हैं। और ये बात बड़ी ही अमेजिंग है कि कर्नाटका म्यूज़िक एक ऐसा म्यूज़िक की विधा है जो पूरी इंडिया में फेमस है, जो धीरे धीरे, क्या मुझे लगता, पुराने ज़माने से ही शायद सबसे अच्छी कलाओं में से एक रही है। तो जैसा हमने देखा, मेधा जी जो हैं वो कर्नाटक म्यूजिक में थोड़ा सा ट्रेंड भी हैं, थोड़ा या ज्यादा, वो तो अभी हम गीत सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। चलिए पेश करते हैं और शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को मेधा जी के ही गाए हुए इन दो बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ।

0: तो मेधा, वापस आते हैं आपके पास. और आपने बताया कि आप एक लिंग्विस्टिक फैमिली से हैं. आपकी मदर तेलुगु से तेलुगु बोलती हैं, करेक्ट?
1: जी.
0: एंड फादर?
1: फादर इज अ महाराष्ट्रियन, मराठी.
0: वाओ, महाराष्ट्रियन. तो मतलब मम्मा जो हैं वो आंध्रा से हैं कि तेलंगाना से?
1: आंध्र प्रदेश, तिरुपति.
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, अमेजिंग प्लेस. और तुझ और पापा जो हैं वो मुंबई से?
1: नहीं, मतलब पापा औरंगाबाद ऐसे वहां पैदा हुए थे. वो देशस्था ऐसे बोलते हैं, देशस्था मराठा. तो लेकिन दे वर सेटल्ड हियर सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. बैंगलोर में ही सेटल्ड थे. लेकिन उनके ओरिजिन जब देखा जाए तो वो महाराष्ट्रियन थे.
0: ओके. डज दिस मीन आप तीन लैंग्वेजेस तो बोलती ही होंगी, तेलुगु, कन्नड़ एंड मराठी?
1: हाँ, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी ये सब बोलती हूँ. लेकिन तेलुगु एक्चुअली मैंने कभी इंटरेस्ट दिखाया नहीं.
0: आपकी कसम, मुझे बड़ी मतलब ईर्ष्या होती है जो लोग साउथ में रहते हैं, या मतलब आई मीन दे नो सो मैनी लैंग्वेजेस. यार, लैंग्वेज अपने आप में कितनी पावरफुल होती है. आप कितने लोगों से कनेक्ट कर लेते हो, यू नो, तेलुगु, तमिल, मलयालम, देन मराठी, देन हिंदी, देन इंग्लिश, है ना? और अगर आप बंगला बोल लेते हैं तो ओहो मजा ही आ जाए. सो इट इज सो ईजी टू कनेक्ट टू पीपल. तो आपको, व्हाट डू यू से अबाउट इट, जब आप महाराष्ट्रियन से मराठी में बात कर रहे हैं तो कैसे, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, आपका क्या कहना है इस बारे में?
1: जब हम उसी लैंग्वेज के लोगों से जब मिलते हैं, उसी भाषा में बात करते हैं, तो वो एक अलग ही फील होता है. वैसे तो सब लोग इंग्लिश में बात कर लेते हैं आजकल, फिर भी जब हम उसी लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो एक अलग ही वाइब मिलता है. और वो ज्यादा फ्रेंडली लगता है जब बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन में बहुत वो फ्रेंडलीनेस होता है.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी कसम, बिल्कुल सही कहा आपने. बिकॉज मैं कुछ ऐसे माहौल में था, मतलब काम धाम के सिलसिले में मुझे सभी जगह जाना होता था. तो अगर मैं साउथ पहुंचा तो साउथ में मैंने देखा मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में एक वर्ड है जो कॉमन है. तो कहीं पर भी जाओ उस वर्ड को यूज कर दो तो अगला जो भी व्यक्ति वहां का होता है वो थोड़ा सा कनेक्ट तो हो जाता है. दैट इज सरी.
1: सरी?
0: हाँ, सरी मतलब यस.
1: हाँ, यस, या करेक्ट.
0: गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मेरे ख्याल से तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, मलयालम में भी है. थोड़ा सा एक्सेंट बदल जाता होगा, बोलने का तरीका बदल जाता होगा, वरना
1: सरी मींस वी आर अग्रीइंग अपॉन दैट थिंग. ओके,
0: सरी सरी सरी सरी सरी सरी,
1: करेक्ट.
0: दूसरा मैंने देखा, अगर आप कोलकाता चले जाए या वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाए तो वहां बोल दे ठीक आचे. ठीक आचे, ठीक आचे बोलते ही सारे बंगाली एकदम कनेक्ट हो जाते हैं. आपका बहुत सारे काम एकदम प्यार से होने लग जाते हैं और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है. अमेजिंग. सो दोस्तों, मेरा इस बात को करने का पर्पस सिर्फ इतना सही था कि अगर आप मल्टी लिंगुअल हैं, लिंग्विस्टिक हैं, जैसा कि मेधा जी ने कहा, तो यू आर एट एडवांटेज. और भाषा सीखना हमेशा ही बड़ा खूबसूरत होता है. अभी तो हम बात कर रहे हैं संगीत की, आइए सुनते हैं ये गीत जो मेधा ने हमारे लिए तैयार किया.

0: बहुत सुंदर मेरा। अब आप अपने म्यूजिक के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है म्यूजिकल प्रोग्राम है, गाने तो हम सुन ही रहे हैं, आपकी आवाज का टेक्सचर भी हम सुन रहे हैं, लेकिन आपने बता दिया कि आप कर्नाटक म्यूजिक भी सीखा है आपने, बट आपकी पसंद क्या है? पर्सनल पसंद बताइए, दूसरों की पसंद नहीं, मेधा की पसंद बताइए। क्लासिकल, गजल, सूफी, भजन, किस तरह के का म्यूजिक आपको पर्सनली आप पसंद है?
1: मैं तो मतलब एक्चुअली सिंस आई एम अ कर्नाटिक बैकग्राउंड, तो मुझे डिवोशनल गाने बहुत अच्छा लगता है गाने में, कर्नाटिक बेस्ड कॉम्पोजिशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सेमी क्लासिकल भी बहुत पसंद करती हूँ, और हमारे वो कन्नड़ा में वो बोलते हैं भावगीते, मतलब वो इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं, इमोशन बेस्ड, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिल्म सॉन्ग्स तो मुझे हमेशा से वो बहुत, आई हैड अ स्पेशल लाइकिंग फॉर सिंगिंग फिल्म सॉन्ग्स, तो दीज आर माई स्पेशल इंटरेस्ट। कर्नाटिक म्यूजिक मैंने सीनियर ग्रेड तक ही किया है, उसको मतलब वो मेरा बेस है, उस वो इट्स माय सपोर्ट सिस्टम, उसके बिना तो मैं नहीं गा पाती थी। जब एक बार मैंने कर्नाटिक सीखा, मैंने स्टार्ट किया, और व्हेन आई वेंट डीप इनटू दैट, देन आई अंडरस्टूड द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक। सो माय स्पेशल इंटरेस्ट इफ यू आस्क, दीज आर माय इंटरेस्ट।
0: ब्यूटीफुल, यही तो पूछना चाह रहा था मैं कि आपका जो नंबर वन इंटरेस्ट जो मुझे सुनाई दिया वो है भजन, करेक्ट?
1: यस।
0: ब्यूटीफुल, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं कुछ और जानना चाहूंगा मेधा से, तब तक हम लोग इन गीतों का आनंद उठाएं, एंड देन वी शुड कम बैक।

0: बहुत खूब मेधा, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में ही बात करते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कर्नाटक म्यूजिक भजन, तो आज हम लोग डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, ठीक है। हो सकता है हम पुराने लोग हों, पुराने म्यूजिक को पसंद करते आए हों, रेट्रो को, लेकिन आज का डेट आ गया तो व्हाई नॉट टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग दोज ओल्ड फ्लेवर्स इन अ न्यू इरा। तो आज के जो भजन है, बहुत लोगों ने बहुत कोशिशें कर रखी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो आप भजन आपको पसंद है, आपने कभी कोशिश की कि वो आज के टाइम में ढाल के गाएं, कुछ चेंज करें, कुछ नया तड़का, कुछ नया टेक्सचर, कुछ नया स्टाइल? डिड यू एवर ट्राई दैट?
1: Yeah, like devotional, the Carnatic compositions, what I mentioned, the devotional side of it. Like I have always, means there are people making fusion versions of it nowadays. So I always have a special liking for fusion based versions. Even I keep trying those things. I mean, there are many songs we get on, there is an app called Smule, singing app. So you get all these versions there. So I have always tried giving it a different, as you said, tadka. Yeah, I have always tried with new instrumental things and all. So I have always given it a new try. All and right. I also like composing tunes. I mean, there if a song is there, it has a particular tune which has been followed since ages. But still, when I listen to it, if I am not not very much happy with the tune, I try composing a new tune for the same composition. That is also my passion.
0: Oh, yeah. Cool. अचानक पता नहीं क्या हुआ आपको कि मैंने तो आप टोटली इंग्लिश में शिफ्ट हो गई। ये एक नया तलका था क्या? ओके। नहीं, माई पॉइंट इज कि जब आपने सीखा है, क्लासिकल सीखा हुआ है और इन एंड आउट आप म्यूजिक के बारे में जानती हैं, तो अपने आपने बोल ही दिया कि आप कंपोज भी करती हैं, है ना? सो मेरा ये पॉइंट था कि कितनी सारी पुरानी चीजें हैं, उनको हम एक नए फ्लेवर के साथ, एक नए वेशभूषा में पेश कर सकते हैं, है ना? कोई भी आप समझो, कोई पुरानी पोएम हो, कोई पुरानी गजल हो, उसको म्यूजिक में पेरो के कंपोज करके, जैसे मैंने शायद पीछे एक बार आशुतोष राणा जी को सुना यूट्यूब पे ही, कि वो शिव तांडवम को एक अलग तरीके से पेश कर रहे थे गा के।
1: अच्छा।
0: तो वेल दैट वाज ब्यूटीफुल, मतलब एक कुछ नया तो सोचा, उसी तरीके से आपसे पूछ रहा था, नथिंग एल्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है कभी एक ट्राई करके देखिएगा। ओके
1: जी सर,
0: चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्यारे से इन गीतों का आनंद उठाएं मेधा के, और फिर हम वापस आएं।

0: बहुत खूब मेधा, अमेजिंग। चलिए, आपके संगीत के बारे में बात हो गई, आपकी लैंग्वेज के बारे में बात हो गई, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बात हो गई, और अब कुछ आपके बारे में बात कर लेते हैं, आपकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। आपने बताया आप म्यूजिक सिखाती भी हैं, तो एक तरीके से आप टीचर हो गई, फिर आप कंपोजर भी हैं, तो मतलब दिमाग में आपके म्यूजिक चमकता भी रहता है, वो भी बड़ी खूबसूरत बात हो गई। मुझे ये बताओ कि आपके संगीत को इतना प्यारी लेवल पर ले आने के लिए वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया? क्या आप उन लोगों के कुछ लोगों के नाम लेना चाहेंगे? सो आगे के जो गीत हैं हम उन्हीं को डेडिकेट करेंगे।
1: जी बिल्कुल। सबसे पहले इंस्पिरेशंस तो हमेशा पेरेंट्स ही होते हैं, मम्मी और पापा। तो उसके बाद मम्मी एक्चुअली शी बिलीव्ड इन माय टैलेंट, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया कर्नाटक क्लासेस में। तो जो टीचर मुझे मिली शी वाज मोर देन अ फ्रेंड, लाइक लेस टीचर एंड मोर अ फ्रेंड। सो बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस से मुझे सिखाया। शी हैज मोल्डेड मी टू व्हाट आई एम टुडे। शी इज माय बैकबोन। और अभी के प्रेजेंट डेज में मैं कहूँ तो आई हैव माय बेस्टेस्ट फ्रेंड सोजित जी। ही हैज एक्चुअली ब्रॉट मी इनटू द फील्ड ऑफ दिस सिंगिंग फिल्म सॉन्ग्स, बिकॉज आई बिलोंग टू अ कर्नाटिक बैकग्राउंड। सो मुझे कभी आई वाज नॉट वेरी श्योर ऑफ सिंगिंग।